0: पॉडकास्ट टाइम में आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। सो यस, स्टे ट्यून्ड एंड आप बस सुनते रहिए, बहुत सारी बातें होने वाली यहाँ पे वैसे। बट यस, जो चीज में वेदर फोरकास्ट में नहीं बता पाया वो ये है कि हैवी रेन वॉच अनाउंस हो चुकी है आज के दिन, जो कल से होने वाली, आज के दिन अनाउंस हुई है रिगार्डिंग टुमारोज वेदर। बहुत ही ज्यादा बारिश हो सकती है कल, एक्चुअली बहुत ही लाइक सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी बारिश और ऑलमोस्ट पूरे दिन चलने वाली है, 100% बारिश के आसार है। प्लस ये कि हैवी के साथ है, जब नॉर्मल बारिश होती है वो बात अलग है। सो यस, अगर आप प्लानिंग बना रहे हैं कल के लिए तो जस्ट सी अगर इफ यू कैन अवॉइड इट और इफ यू कैन यू नो पोस्टपोन मे बी फॉर डे आफ्टर टुमारो, बट अगेन चेक फॉर संडे वेदर एज वेल। आप बस हमें सुनते रहिए बिकॉज यहाँ पे हम आपको बताते रहते हैं। होम सिक रेमेडीज के लिए टेक्स्ट लाइन खुल चुकी है, आप मुझे टेक्स्ट भेजिए होम सिक रेमेडीज के लिए, कुछ बातें करेंगे उस बारे में, कुछ ऐसी चीज जो आप मिस करते हैं बीइंग इन न्यूजीलैंड स्पेशली इन ऑकलैंड, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं एक बेस्ट मैसेज पिक करूंगा और उसके बाद आगे की बात करेंगे। बट एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत गाना जिसका नाम है, अभी पता पड़ जाएगा।
1: बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। वेल, चलिए होम सिक रेमेडीज के लिए मैसेजेस आए हैं, उनमें से एक मैंने पढ़ा, एक मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। वो है क्यूरा केतन, यस्टरडे आई वेंट टू गेट अ बेसिक हेयर कट इन ऑकलैंड एंड इट कॉस्ट मी $35 फॉर अ साइलेंट 15 मिनट्स ट्रिम वेयर द बार्बर बेयरली सेड टू वर्ड्स। क्या बात है। बैक होम गोइंग टू द लोकल शॉप इज अ प्रॉपर कम्युनिटी इवेंट, यू सिट अराउंड chat about rugby, gossip with the barber like his family and get a relaxing head massage at the end. My friend also told me the same thing and yes, the haircut comes with the endless neighborhood news. Chai and that legendary head crack chumpy for dirt cheap. Here paying $35 for a quiet formal trim feels so transactional and lonely. How do we cope with missing that warm barber shop vibe? मेरे को तो लगता है कि पहली बात तो है ना, सबसे पहले ये तो यहाँ आई डोंट नो अगर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, बाल बहुत लंबे कर दो, इतने लंबे कर दो कि जब भी आप बैक होम जाओ तो वहाँ से करवाओ मस्त। जोक्स अपार्ट, बट यस यार देखो, ऑब्वियसली वो चीज़ अगर करवानी है तो या तो बार्बर से ही दोस्ती कर लो, तो वंस द बार्बर इज़ ऑल्सो यू नो कम्फर्टेबल विद यू, मे बी ही ऑल्सो विल स्टार्ट डूइंग इट, और हो सके तो आप अपने तो ना सेम कल्चर वाले लोगों से बाल कटवाओ तो यू माइट कनेक्टेड एज वेल, यू नो अगर आप डिफरेंट एथनीसिटी वाले से बात करें तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो डिसकनेक्शन तो फील होगा, बिकॉज ऑब्वियसली दे माइट नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड एंड यू ऑल्सो मे नॉट बी एबल टू जस्टिफाई एज वेल। बट नितिन भाई ये जो बात बोली ये काफ़ी पते की, यहाँ पे इतना कुछ नहीं होता। पहली बात तो ये महंगा बहुत है यहाँ पे हेयर कट, बट मैं एक जगह बता सकता हूँ जहाँ पे आप पापा टोटे में करवाता हूँ, वो $25 ही लेता है और वो बात अच्छी करता है, देसी बंदा है, पंजाब से है और काफ़ी अच्छी बातें करता है, वो खुद गाता भी है तो आपके लिए एंटरटेनमेंट भी होगा, फ्री एंटरटेनमेंट, फ्री सिंगर भी मिल जाएगा आपको। $25 में आप जाइए, बाल बाल कटवाइए। पापड़ोटो स्कूल है ना, उसके जस्ट अपोजिट ही है, मैं दुकान का नाम मेरे को याद नहीं है, वहाँ से करवा के देखिए, क्या पता आपको यू नो यू माइट गेट वॉट यू लुकिंग फॉर, राइट। ट्राई करिए और फिर बताना मुझे हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस। ये पापड़ोटो में है, या काश मेरे को याद होता, मेरी याददाश्त भी पता नहीं क्या हो रही है। बट यस, लंच बॉक्स शो में अभी ऑफिस शाउट आउट के लिए आप मुझे मैसेज भेजिए 5599 पे। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का। हम वी गॉट टू गो, आर यू रेडी, कम एंड टेक अ ट्रिप विद मी। Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight HUM 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special HUM boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 pending money. Vacation. HUM boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu. Let's go. Visit flysolomons.com. T's and C's apply. Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
1: If you're at the finish stage of a build, Bunnings Trade is here to help. Shop our wide range of paint and accessories, lighting and final fixtures from leading brands. Call 134 Trade on 0800 134 872 to get a quick quote today at Bunnings Trade.
2: The new Macca's Barbecue Hash Stack Burger.
3: Not new, Greg's made it before.
4: Yeah, Noah's made it.
5: Sam's made it too.
2: Ah, new for us, but you've been adding the hash brown for ages. Macca's Barbecue Hash Stack. T's and C's apply.
4: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
5: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
4: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
5: पर डेवलपमेंट के पैसे
4: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
6: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge 10kg front loader and heat pump dryer, sleek grey set, $11.99. Huge black stainless steel side-by-side fridge freezers, $6.99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
7: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलोगांव में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किवीज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलोगांव। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। वेल, अभी नई खबर, लंच टाइम ऑफिस शार्ट आउट के लिए तो कोई मैसेज आया नहीं है, बट यस अपडेट आपको बता देता हूँ। जो बहुत ही भयानक फ्लड देखने को मिल रहा है, ये आपको पता होगा, फ्रॉम नेपाल तिब्बत वाले बॉर्डर से हुआ है, बट आई एम प्रीटी श्योर बाकी लोगों को पता ही होगा कि क्या रीज़न था। और रीज़न बेसिकली ये था कि ग्लेशियर्स जो है वहाँ पे तिब्बत की तरफ, वो बेसिकली एक अर्थक्वेक आया था काफ़ी टाइम पहले, उस वजह से वो एक हल्का सा जो टुकड़ा था वो फंस गया था और वो गिर चुका था ऑन द वे टू द रिवर, रिवर के बीचों बीच जाके अटक गया था। और उस वजह से जो रिवर आ रही थी उसको रास्ता नहीं मिला और वो वहीं पे रिवर का पानी जो है वो जमा होता गया। सो एक कह सकते हैं नेचुरल लेक बननी वहाँ पे शुरू हो गई। बट जितना प्रेशर लेक का बढ़ता गया, वो पत्थर जो था, जो ग्लेशियर था, वो हैंडल नहीं कर पाया, और वही हैंडल नहीं करने की वजह से वो प्रेशर सारा टूट गया, पत्थर टूट गया और वो एकदम से फ्लड जो है, एकदम से पानी जो है वो झटके से बाहर की तरफ, जो सिविलाइजेशन थी वहाँ पे, जो पब्लिक रह रहे थे, जो भी रास्ते में आया बहता गया और जो भी रास्ते में आया उसे उखाड़ता भी गया। तो ये रीज़न था मेन। काफ़ी लोग बोल रहे थे भूकंप आया था इस वजह से हुआ, या फिर बांध टूटा है। नहीं, बांध कुछ नहीं टूटा है, दिस इज़ वॉट द एक्चुअल रीज़न इज़। बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि 13 महीने पहले ही इसकी वार्निंग मिल चुकी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो काफ़ी लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट से कि क्यों वहां पे जाने दिया गया या फिर क्यों उसके बारे में कुछ नहीं किया गया। बट खैर, इसका जवाब तो, सवाल तो उठेंगे ही, जवाब क्या आता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन कल तक ये सिर्फ 100 था, लेकिन आज अभी बीबीसी की न्यूज की तरफ से आ रहा है कि करीबन 900 से ज्यादा लोग मिसिंग है, उनमें से 389 लोग जो है मरे हुए डिक्लेयर हो चुके हैं, वो मिल चुके हैं, जो 389 लोग मारे गए हैं। ये नंबर इतना बढ़ते जा रहा है, इतना तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, जिसमें से 517 जो है वो फॉरेन सिटीज़न है, वाह, और उसमें से 44 जो है वो नेशनल आर्मी के हैं, नेपाल के खुद माइग्रेंट, जो बचाने गए थे वो भी ना बचे, तो अभी उन्हें भी ढूंढा जा रहा है। बट दिस नंबर इज़ नॉट एंडिंग येट एंड इट्स कीप गोइंग एंड होप कि ज़्यादा ना बढ़े, या फिर सबसे दिक्कत वाली बात ये होगी कि कुछ लोग ज़मीन के अंदर धंसे हुए हैं, इस तरह की मिट्टी आई है और वो ऑब्वियसली अब सूखा भी है, काफ़ी ड्राई एनवायरनमेंट था, तो उस वजह से मिट्टी जो है अब काफ़ी तेज़ी से सूख भी रही है, तो जितना तेज़ी से सूखेगी उतना इट गोना बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

0: वेलकम बैक। वेल कैंटबरी बिग स्नो, आज की हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड में बात कर लेते हैं। 1992 की ये बात है जब कैंटबरी का बिग स्नो 28 अगस्त 1992 को हुआ था। ये रीजन में 30 साल का सबसे हैवी स्नोफॉल था। स्नो 27 अगस्त की इवनिंग से स्टार्ट हुआ और सी लेवल तक भी स्नो गिरने लगी। नेक्स्ट मॉर्निंग कैंटबरी के कई एरियाज में पावर कट्स हो गए, रोड्स और क्राइस्टचर्च एयरपोर्ट क्लोज हो गए, स्कूल्स और कोर्ट्स में भी बंद कर दिए गए, लेकिन हॉस्पिटल आर्मी और रेड क्रॉस की हेल्प से ओपन रहे। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट फार्मर्स और रूरल कम्युनिटीज पर था और उस टाइम लैम्बिंग सीजन चल रही थी और बहुत सारे न्यू बॉर्न लैम्ब्स, शीप्स और ईव्स की डेथ भी हो गई थी और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अराउंड 1 मिलियन शीप जो है वो मर चुकी थी, कॉजिंग फार्मर्स को अप्रॉक्सीमेटली $40 मिलियन का लॉस हुआ था उस टाइम पे। 1992 की बात हो रही है, यानी कि जस्ट कैलकुलेट की आज के टाइम पे वो कितना होता। बट यस, ओवरऑल कैंटबरी का बिग स्नो एक मेजर नेचुरल डिजास्टर था और जिससे पूरे रीजन की डेली लाइफ ऑफ फार्मिंग को काफी सीरियसली अफेक्ट किया गया।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
1: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Al Radio.
1: Streaming on Rover.
2: The all-new Mazda CX-5 is big on the road ahead. With 5 years of Mazda care included, it's big on servicing, big on warranty, big on roadside assistance, and big on peace of mind. Mazda.
3: Zoom, zoom.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
5: It's McHappy season. Get your McHappy cookies from Macca's. Just $3.50. All proceeds go towards keeping families together at Ronald McDonald House Charities. T's and C's apply.
6: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
7: The masalas are ground fresh in-house every single day.
6: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party, table service or buffet for up to 150 guests.
7: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
6: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
8: Reliance Ventilation System.
9: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि drying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
8: Moisture और ventilation का problem लगता है.
9: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
8: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
10: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
11: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800 233 111. Indelible Homes, your building expert. Indelible.
12: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
13: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
14: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz.
15: Playing Bollywood's biggest hits. Hum.
16: Chutney Shots. चटनी शॉट्स के सेगमेंट में आपका स्वागत है. सबसे पहले फूड लवर्स के लिए एक टेस्टी अपडेट. न्यूजीलैंड की बेस्ट आइसक्रीम अनाउंस हो चुकी है और इस बार गार्लिक ब्रेड फ्लेवर विनर नहीं बना. एक स्मॉल गैलेटो शॉप ने न्यूजीलैंड आइसक्रीम के गैलेटो अवार्ड में टॉप ऑनर जीत लिया है. पॉलिटिक्स अपडेट्स. फॉर्मर फाइनेंशियल मार्केट अथॉरिटी चेयर अब न्यूजीलैंड फर्स्ट के कैंडिडेट्स के तौर पर प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन के इलेक्टोरेट से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं. इससे उस इलेक्टोरेट में पॉलिटिकल कंपटीशन और इंटरेस्टिंग हो गया है. वाइकाटो के सुपर गोल्ड कार्ड होल्डर्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है. पीक आवर्स में फ्री बस ट्रैवल की सब्सिडी को कट करने की प्रपोजल सामने आई है. रीजनल काउंसिल का कहना है कि इस स्कीम्स का कॉस्ट अब कंसर्न बन रहा है. नेपाल में सीवियर फ्लडिंग के बीच उसके बाद 5 न्यूजीलैंडर मिसिंग होने की इंफॉर्मेशन मिली है. न्यूजीलैंड ऑफिशियल्स का कहना है कि मिसिंग कीवीज के बारे में कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है. स्पोर्ट्स में ऑल ब्लैक्स के कोच डेवे रेनी ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेकंड टेस्ट के लिए विंग पोजीशंस में एक सरप्राइज चेंज किया है. न्यूजीलैंड ने पहला टेस्ट जीतकर सीरीज में 1-0 की लीड ले रखी है, तो दूसरा मैच भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. और म्यूजिक फैंस के लिए बिग न्यूज, ब्रूनो मार्स न्यूजीलैंड वापस आ रहे हैं. वो 13 मार्च 2027 को ऑकलैंड के ईडन पार्क में वन ऑफ शो करेंगे और उनके साथ टायलर एंड एंडरसन पार्क भी परफॉर्म करेंगे. एक और पॉलिटिक्स में ते पार्टी मौरी ने अपना नया टैक्स प्लान लॉन्च किया है। पार्टी का कहना है कि वेल्थीएस्ट 3% लोग ज्यादा टैक्स पे करेंगे, जबकि ऑलमोस्ट एवरीवन को इनकम के फर्स्ट $30,000 पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
15: लंच बॉक्स विद केतन।
0: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
3: इसके पीछे
15: हम दिल से दिल तक। अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं, एक बॉलीवुड डायलॉग मैं यहाँ पे प्ले करने वाला हूँ जिसका जवाब आप मुझे देंगे कि कौन सी फिल्म का डायलॉग है और किसने ये डायलॉग डिलीवर किया है, किस एक्टर है। मैंने कमेंट सेक्शन में जाके देखा, काफी बढ़िया मिडिल क्लास फैमिली के लिए परफेक्ट डायलॉग बोला है इन्होंने और बड़ी ही तारीफ कर रहे हैं लोग, क्या डाउन टू अर्थ बंदा है एटसेट्रा एटसेट्रा। सो यस, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और यहाँ पे फट से मैं ये चलाता हूँ और आप गेस करिएगा और मुझे बताइएगा। सबसे पहले तो इस म्यूजिक को डाउन कर देते हैं एंड देयर यू गो।
2: साला नौकरी ऐसी हो कि काम पे जाने का मन करे और घर ऐसा हो कि वापस आने का मन करे। साला हमारा दोनों ही नहीं है।
1: क्या डीप डायलॉग बोला यार, मतलब साला घर ऐसा हो वापस आने का मन करे और नौकरी ऐसे हो कि काम पे जाने का मन करे। सो ये बोला है और दोनों इसके पास नहीं है। वैसे यहाँ पे कितने लोग हैं जो ये कनेक्ट रिलेटेबल लगता है, काफ़ी लोग होंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली दे माइट नॉट एडमिट हियर बट काफ़ी लोगों को लगता है कि यहाँ पे आई डोंट नो लाइक बैक इन द होम टाउन एज वेल वो करना पड़ता है जिसका उनका मन नहीं होता है और क्योंकि वो जो करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता है या फिर इट इज़ नॉट देयर येट, उस वजह से उनको करना पड़ता है मजबूरी में। और घर का तो पता नहीं, घर का तो आई डोंट थिंक सो कि सब एग्री करेंगे बट काम के लिए तो आई वुड से दैट मेजॉरिटी जो लोग हैं वो एडमिट करेंगे इस बात से। व्हाट यू थिंक, 5599 इज द नंबर। यस, लेकिन इस डायलॉग कौन सी मूवी का है प्लस कौन से किस एक्टर ने ये डायलॉग बोला है वो भी मुझे बताइए 5599 पे।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
2: We're recruiting for New Zealand's most important jobs. And chances are, you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself. If you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz.
3: 2 PM call out, we're on your way. Heading back to the office? We're on your way there too. Commute to site? Yep, you guessed it. We're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
4: Score more Smeg with Smeg bonus stickers at New World North Island. Get Nature's Fresh Muffin Splits 6-pack, $3.99 each. Or

0: आवाज गूंजेगी।
1: लंच के मंच पे
2: नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स और मेरा नाम केतन है। वैसे यस, आप बने रहिए, इस आर में काफी कुछ लेके आया हूँ आपके लिए, कुछ कॉम्पिटिशन भी लेके आया हूँ, फादर्स डे आने वाला है उसके बारे में भी, एंड प्लस आज रक्षाबंधन भी है। सो यस, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ सारे भाई और बहनों को। और यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाइक बढ़िया वाला फेस्टिवल है ये। लाइक आई रिमेम्बर, ये मेरे को पता साल का सबसे बेस्ट लगता ही है। रीज़न इज, इसमें कुछ भी हो जाए, जब मैं इंडिया में था तो ऑफकोर्स ऑब्वियसली जब बड़े होते थे एंड यू नो बाकी की जो इवेंट्स हो गए तो वो कोशिश करते घर पे मनाए और ये सारी चीज़ें, बट जब ये रक्षाबंधन आता था तो ऑप्शन नहीं होता था, और ऑप्शन नहीं, मतलब मेरे लिए तो किसी को ना नहीं बोल सकते थे उस टाइम पे, बिकॉज मेरे को वैसे भी नानी के यहाँ जाना, मुझे नानी के घर जाना बहुत पसंद था क्योंकि हमारा परिवार जो मेरे मामा और ये सब उनके बच्चे मिला के बहुत बड़े लोग, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं। सो वी यूज़ टू गो अराउंड, वी यूज़ टू प्ले अ लॉट, और वहाँ पे फुल फ्रीडम होता था, बहुत मज़े करते थे, तो इस वजह से काफ़ी क्लोज है मेरे लिए। सो यस, आज का दिन आप बताइए कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और क्या आपने सेलिब्रेशन ऑलरेडी शुरू कर दिया है, आप मुझे टेक्स्ट भेज सकते हैं 5599 पे। बट यस, इस आर में लेटेस्ट खबर के साथ साथ आपको मैं लंच टाइम रेंट लाइन के बारे में बातें भी होगी, और साथ में क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में उसके बारे में बात होगी। सो यस, आप बने रहिए, सुनते रहिए और एंजॉय करिए हमारा शो, लंच बॉक्स शो इट इज।
1: बचाओ क्या,

0: Welcome back. You are listening to Lunchbox. Well, 100 years of resilience, migration and identity. एक नया podcast हमने record किया है. आप सुन सकते हैं हमें 5599 पे text भेजिए drive. आपको link मिल जाएगी audio link जिसमें या फिर unfiltered and Sandy and Rusbe ये भी search कर सकते हैं Roa पे या फिर Spotify पे वहाँ पे भी आ जाएगा. But yes, this is all about how did the Punjabi community help shape the fabric of modern New Zealand over the last century. कैसे उन्होंने help किया है यहाँ पे एक बड़ी सी कम्युनिटी को स्थापित करने में. इस एपिसोड में आप सुनेंगे एक नया वीडियो आया है पंजाब टू Aotearoa. बहुत ही बढ़िया फीडबैक आ रहा है. काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं. और कैसे उस डॉक्यूमेंट्री में हरजोत सिंह जो कि प्रेजेंटर है और गगन संधू जो कि डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया है कि कैसे फर्स्ट पंजाबी केम टू न्यूजीलैंड एंड कैसे उन्होंने यहाँ पे अपना जो इंडियन कम्युनिटीज़ होती है उनको कैसे स्थापित किया. तो यस, ये पॉडकास्ट आपको डेफिनेटली सुनना चाहिए और इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद डेफिनेटली आपका मन करेगा इस वीडियो को देखने का. बट यस, अगर वाइस वर्सा भी करना चाहे तो कर सकते हैं. आप वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पे पंजाब टू Aotearoa एंड देन यू शुड ऑल्सो नो कि इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी और कितना वक्त लगा है और किस तरह से इनको ये आइडिया है और उसको प्रॉपर शेप में लाने में कितना समय और कितने लोगों का हाथ है. ये सारी चीज़ें सुनने के लिए डेफिनेटली आप हमें ड्राइव लिखें और 5599 पे भेज दीजिए ताकि लिंक आप तक पहुंच जाए डायरेक्टली. बट यस, आप जुड़े रहिए बिकॉज लंच टाइम रेंट लाइन के लिए थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी. आप 5599 पे टेक्स्ट भेज सकते हैं लंच टाइम रेंट लाइन का भी इफ़ यू वॉन्ट टू शेयर एनीथिंग विच हैज़ हैपेंड टू यू इन रीसेंट डेज.
1: Lunchbox with Ketan.
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
3: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की.
4: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल.
3: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश.
4: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300. डैड को रेडी करो, खुश करो.
3: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
5: Your vehicle is already out there every day. The question is, what is it saying about your business? With a Speedy Signs rep, your car, van or truck becomes a rolling ad seen by thousands. One upfront investment, years of exposure. Why let that space go to waste when it could be bringing in new inquiries? Turn every trip into brand awareness. Give Speedy Signs a call or visit speedysigns.co.nz to get your vehicle signage sorted and grow your business faster.
6: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
7: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें.
6: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
7: पर डेवलपमेंट के पैसे
6: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
8: 3, 2, 1, rush!
9: Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions, and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
10: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok, one epic trip. 5-star all-inclusive stays, breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
11: proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800 233 111.
12: Indelible Homes, your building expert. Download.

0: Lunchtime Rant Line.
1: वेलकम बैक लंच टाइम रेंट लाइन के सेगमेंट में स्वागत है। नेहा का मैसेज हमने पिक किया है यहाँ पे बात करेंगे उनके मैसेज का जो वो कहती है फ्लैट बुश से। उन्होंने क्या है, आई एम रेंटिंग अबाउट पीपल हु लीव देयर शॉपिंग ट्रॉलीज इन द मिडल ऑफ द कार पार्क। टुडे आई वॉज कैरिंग अ फ्यू हैवी ग्रॉसरी बैग्स एंड हैड टू वॉक अराउंड 3 कार जस्ट टू गेट टू माइन बिकॉज समवन हैड लेफ्ट देयर ट्रॉली राइट इन द मिडल। द ट्रॉली बे वॉज literally a few steps away. I honestly don't understand why people do this. Yeah, actually kafi unsafe bhi hai the way how people do this, kyunki unko lagta hai ki bhai wo apna bahut keemti time jo hai wo bacha rahe hain itna sa nahi karke, yani ki usko trolley ko sahi jagah pahunchane mein pata nahi kitna, literally aapka 5 se 10 second lagne wale hain, but wo bhi wo nahi karte hain. But us case mein baaki ke, kyunki kya hai ki dekho hum rehte New Zealand mein, yahan pe हवा बहुत आती है और उस हवा से डेफिनेटली ट्रॉली इतनी भारी नहीं कि वो हिल नहीं सकती, और जब वो हिलती है वो किसी भी कार को डैमेज कर सकती है, किसी भी कार को। एंड जस्ट इमेजिन कोई बेबी आ रहा है या फिर बच्चा आ रहा है छोटा सा, एंड सडनली ट्रॉली अपने हिसाब से घूम रही है, एंड देन यू नेवर नो, लाइक कुछ भी कॉज हो सकता है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड अगर कोई भी ये कर रहा है, पहले तो मैं तो कहता हूँ कि या तो ये नोटिस बोर्ड पे कहीं लिखा होना चाहिए और या फिर इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज आई हैव ऑल्सो आई माई सेल्फ हैव फेस्ड अ लॉट। मेरी एक कार थी वो बहुत ही गंदी वाली डैमेज है, उसका खर्चा मुझे करीबन आई थिंक व्हाट 500 to 600 dollars ऐसा कुछ मुझे पे करना पड़ा जस्ट टू फिक्स दैट फॉर समथिंग मैंने की ही नहीं है, और किसी और कार से भी नहीं, वो एक ट्रॉली से हुआ। बिकॉज ऑफकोर्स वो रिकॉर्ड हो गया था, और इवन आई कुड सी द पर्सन ऑल्सो हु डिड दैट। तो उसने लिटरली कार की जस्ट वहीं पर पार्क की थी, उसने वहीं रख दी, वहीं के वहीं रख दी, और वहाँ से किस तरह से हवा से मूव हुआ ये सब चीज़ रिकॉर्ड हुई, बट ऑफकोर्स कुछ कर नहीं सकते थे। सो या काफ़ी कंसर्निंग वाली बात तो है, बट अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और अगर आपने सोल्यूशन इसका ढूंढा है तो प्लीज़ बताइए 5599 पे, यहाँ पे बताइए ताकि हम यहाँ पे बता सके नेहा को भी कि वॉट शी कैन डू नेक्स्ट टाइम। मेरे लिए भी सही रहेगा यार, लाइक इवन आई विल हैव एन आइडिया।
0: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: वेलकम बैक। क्वींसटाउन में भी फ्लड की खबर आ रही है। न्यूजीलैंड में एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम की वजह से क्वींसटाउन में हैवी रेन और फ्लडिंग हुई है। लगभग 48 आवर्स की कंटिन्यूस रेन के बाद अराउंड 45 पीपल को ओवरनाइट इवैक्यूएट भी करना पड़ा। सिविल डिफेंस ने अफेक्टेड रेसिडेंट्स के लिए वेलफेयर हब भी सेटअप किया। ड्राइवर्स को फ्लड वाटर से बचने और 1 माइल राउंड अबाउट और जॉर्ज रोड जैसे एरियाज में भी एक्स्ट्रा केयर करने को कहा गया है। कुछ एरियाज में वाटर कंजर्वेशन नोटिस भी लगा गया है। अब क्वींसटाउन में रेन कम हो रही है और वेदर इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन रोड्स और ड्रेनेज जो है उसको नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। एक स्लिप की वजह से स्टेट हाईवे 6 का एक सेक्शन भी क्लोज हो चुका है, बिकॉज वो जो है पूरा पानी फंस चुका है उससे। एंड ऑफकोर्स कुछ टूटे हुए ट्रीज, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी जो लकड़ियाँ हैं वो भी वहाँ पर फंस चुकी है। मीनवाइल वेदर सिस्टम नॉर्थ आइलैंड की तरफ मूव हो रहा है। नॉर्थलैंड, ऑकलैंड, कोरोमंडल और बे ऑफ प्लेंटी में हैवी रेन एक्सपेक्टेड है और रेन वॉच ऑलरेडी इन प्लेस है एंड स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। सो जस्ट कीप एन आई ऑन व्हाट वी अनाउंस हियर। और साथ में ऑफकोर्स ओवरऑल न्यूजीलैंड का कुछ पार्ट्स में फ्लडिंग, हैवी रेन्स और स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से ट्रैवल और डेली लाइफ अफेक्ट हो रही है, जिसे आपको सचमुच ध्यान देने की जरूरत है।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए
3: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है,
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
5: हेलो एवरीबॉडी।
3: 2 शहर, 1 सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
2: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
3: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम। When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800-862-342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
6: You filled the pinata before I sealed it, right?
7: No, you did.
6: Oh, I thought you did.
8: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. Participating North Island stores only. See online for T's and C's.
9: Score big at Rebel with deals for Dad on clothing, footwear, fan gear, equipment and more. Whatever he's into, make Father's Day a winner. Shop epic deals for Dad in store and online now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
10: Reliance Ventilation System.
11: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
10: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
11: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
10: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
12: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
13: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
14: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं, तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.go.nz. That's commonwealthvault.go.nz.
15: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live out your California dreams in LA or San Francisco. Take a relaxing break in stunning Honolulu. Or why not finally take that trip to Asia, Tokyo, Singapore, or Hong Kong? Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम
2: वेलकम बैक. वेल चलिए बात करते हैं एक ऐसे कंपटीशन की जो आपको मौका देगा विनिंग टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वानुआतु विद सोलोमन एयरलाइंस, जहां पे आपको $1,000 और भी दिए जाएंगे टू स्पेंड द मनी. वेल जो टाइम है आप सभी को पता है, सुबह 8 बजे, 11 बजे, 1 बजे दिन के, फिर शाम को 5 बजे के करीब आपको कभी भी इस आर्म के आसपास कभी भी आपको अनाउंसमेंट होगी. एक क्यू चलेगा और क्यू चलते ही आपको जैसे क्यू सुनाई देता है रिगार्डिंग बोर्डिंग, तो आपको फट से रोवा ऐप पे जाना है और वहां पे जो बोर्ड नाउ कोड वर्ड है उसे सबमिट कर देना है. और अगर आप चाहते हैं कि लिंक डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए तो BC लिख के मुझे 5599 पे भेज दीजिए, ताकि जो लिंक है रोवा ऐप की या रोवा वेबसाइट की वो लिंक आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए. पर ये इससे बहुत ही बढ़िया और अनफॉर्गेटेबल एक्सपीरियंस आपको अगर अवेल करना है तो ये काफ़ी बढ़िया मौका है आपके पास. तो जल्दी से एक्टिव रहिएगा और सुनेगा, क्योंकि इस आर ये 1 से 2 के बीच कभी भी आपको सुनाई दे सकता है वो क्यों. And of course, you shouldn't be missing this paradise as well. But yes, thanks to Solomon Airlines, jo flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com. Terms and conditions do apply.
0: Dil se, dil tak. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
3: Ladies and gentlemen, got airplane tickets with your name on them. This is the boarding call for Solomon Airlines flight number HUM 104.2 FM to Vanuatu. Boarding is now in progress. Yeah. Please proceed to Rova and enter board now.
4: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.

0: यू बाई 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना। कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। वेल, एक डायलॉग में फिर से चलाने वाला हूँ बिकॉज कुछ खास मैसेजेस नहीं आए हैं। शायद हो सकता है मिस आउट हो गया हो, किसी ने बोला है कि वॉइस जो है वो क्रैक हो रही थी। सो लेट मी जस्ट रिप्ले इट अगेन एंड आप मुझे 5599 पे भेज दीजिए कि किस एक्टर ने ये डायलॉग डिलीवर किया है और ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है।
2: साला नौकरी ऐसी हो कि काम पे जाने का मन करे और घर ऐसा हो कि वापस आने का मन करे। साला हमारा दोनों ही नहीं है,

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Skinny will do anything to keep prices low and customers happy. Switch to Skinny and get $30 credit on all four weekly plans, $27 and above. $30 credit available to new customers only. In September 4th, T's and C's apply. Get the Skinny!
1: गोवा की गलियों में एक नया बच्चा जन्म ले रहा है टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश मयंक ताला कियारा अडवाणी तारा सुपारिया एंड हुमा कुरैशी
2: हेलो डैडी
1: टॉक्सिक नाउ शोइंग

0: किरण नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम किरण है। वैसे यस, इस आर में भी काफी कुछ बातें होने वाली है। तीन बजे तक मैं यहाँ पे हूँ। सैनी विल बी जॉइनिंग इन द कॉफी ब्रेक राइट आफ्टर दैट एंड रुजमिन उनका साथ देंगे द ड्राइव शो। पर यस, जो बात इस आर में होगी वो एक तो है फादर्स डे का स्पेशल, कि भाई कैसे आप इस कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकते हैं, कैसे एक नहीं दो दो कॉम्पिटिशन में यहाँ पे पार्ट ले सकते हैं। प्लस कृष्ण जन्माष्टमी भी आ रही है, तो कहाँ कितनी बजे होने वाला है प्रोग्राम उसके बारे में भी आप बस कनेक्टेड रहिए हमारे साथ, ट्यून इन रहिए, यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। और यस, कुछ भी नया अपडेट आता है, अभी साउथ आइलैंड में भी क्वींसटाउन में फ्लडिंग का इशू हो रहा है, तो उसके बारे में भी कुछ और अगर अपडेट आता तो उसके बारे में बताऊंगा। एंड यस, वन मोर थिंग, स्पोर्ट्स के बारे में भी अपडेट, कल इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैच हुआ और कैसे इंडिया ड्रॉ के बाद भी ऑलमोस्ट इट इज़ लाइक लॉस्ट फॉर देम। सो यस, उसके बारे में बात होगी थोड़ी देर में।
1: बचाओ क्या,

0: साउथ ऑकलैंड के वॉटल डाउन एरियाज में एक सीरियस डबल होमिसाइड हुआ है। पुलिस को एक हाउस से एक मैन और वुमेन की बॉडीज मिली है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। विटनेस के अकॉर्डिंग इंसिडेंट के टाइम एक कार हाउस के पास आई थी, बाहर हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ और उसके बाद एक गनशॉट और फिर स्वेल गनशॉट सुनाई दिया। पुलिस के पहुंचने से पहले ऑफेंडर जो है सीन से भाग गया था और पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेशन वैसे शुरू कर दी है। उसके कनेक्शन में एक 30 साल ओल्ड मैन से बात की है। दोनों विक्टिम्स के पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी किए गए हैं और पुलिस इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रही है। पुलिस ने कहा है कि इंसिडेंट आइसोलेटेड लग रहा है और पब्लिक के लिए ऑनगोइंग रिस्क नहीं माना जा रहा है। साथ ही वॉटल डाउन्स में पुलिस प्रेजेंस बढ़ा दी गई है। पुलिस ने विटनेसेस से अपील की है कि अगर किसी को भी इस बारे में कुछ भी खबर हो तो आप तुरंत उन्हें कॉल करके या फिर उनके वेबसाइट पर जाके उन्हें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं एज मच एज पॉसिबल।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: मुझे पसंद है लड़का। हाँ।
3: We gotta go. Are you ready?
4: Come and take a trip with me.
5: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. Two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
6: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
7: Let's go.
6: Visit flysolomons.com. T's and C's apply. Father's Day bus aane hi wala hai and Mighty 10 Mega Westgate and Henderson have gifts dad will love. Save on Autoboss accessories, Medallis tools and accessories plus Orbi deals in store. Celebrate dad and save big this Father's Day at Mighty 10 Mega Westgate and Henderson.
8: Bunnings has great value nailed across the store.
9: Get your garden sorted for less with a Moda 15cm charcoal self-watering Oslo pot, only $360. Or Dalton's premium 10-litre indoor plant mix, just $12.88. Head in store or online for even more great value.
10: Bunnings Warehouse. TradeDepot.co.nz.
11: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge 10kg front loader and heat pump dryer, sleek grey set, $11.99. Huge black stainless steel side-by-side fridge freezers, $699. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.

0: या रिप्ले।
1: चलिए अभी आपको मौका देते हैं, क्या सवाल करें फादर्स डे के लिए। जी हाँ, आपको कॉल करना है। जैसे ही आपको मैं सवाल करता हूँ, आपको फट से मुझे कॉल करके बताना है जवाब। वेल यस, सवाल मेरा पता क्या है? क्वर्टी क्या है? क्वर्टी क्या है? आई एम प्रीटी श्योर ये तो पता ही होगा डैड्स को, बट शायद आजकल की जनरेशन को नहीं पता होगा, बट स्टिल आई वांट टू आस्क क्वर्टी क्या है। मैं फटाफट आपको स्पेलिंग भी बता देता हूँ। सो बेसिकली इट इज QWERTY। ये किस चीज से पॉपुलर हुआ था, बेसिकली है क्या चीज, तो ये आपको मुझे कॉल करना है और बताना है। क्या बात है, कॉल भी आ गया। हेलो
2: हेलो,
1: हाय परमिंदर जी, कैसे हैं आप?
2: अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ। सवाल आपने सुना ना,
2: क्वर्टी क्या है?
1: हाँ, ये डैड्स के लिए एक्चुअली।
2: ओह,
1: फादर्स डे आ रहा है ना।
2: तो मेरे वहाँ वो पूछने वाली थी कि सिर्फ डैड ही कर सकते हैं कि अपने डैड के लिए भी कर सकते हैं।
1: नहीं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बट उसके लिए एक अलग कंपटीशन है जहाँ पे आपको बेसिकली फेसबुक पे जाना है और आप अपने डैड का एक सुपर हीरो मॉडल बना सकते हैं यूजिंग AI इफ यू आर कंफर्टेबल। और दूसरा ऑप्शन ये कि आप फिजिकली भी उन्हें रेडी कर सकते हैं फॉर द यू नो टू मेक हिम सुपर हीरो विच दे आर, और उसे आपको हमारे फेसबुक पे जाके अपलोड कर देना है। उसके थ्रू भी आप कॉम्पिटिशन में पार्ट लेके एंड देन यू कैन विन $300 कैश। राइट, बट इफ यू हैव इफ यू आर मैरिड, आपके हस्बैंड होंगे जो इस पे बात कर सकते हैं इफ दे आर टुगेदर राइट नाउ। राइट, नहीं कोई बात नहीं, पर यस चलो एक्चुअली सीन क्या है, मैं अगर आपको पूछ ले, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो असली डैड है ना उसको पता पड़ जाएगा। तो मैं इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहता, बट कुल थैंक यू सो मच, यू हैव अ लवली डे एंड एंजॉय, थैंक यू, बाय। Well, yes, the competition is still on and I'm calling all the dads over here. जल्दी से मुझे फोन करिए, फोन मिलाइए 0800-004-866 पे और बताइए QWERTY क्या होता है, QWERTY ये बेसिकली कहाँ से पॉपुलर हुआ था। सो जल्दी से मुझे फोन लगाइए, फोन लगाइए 0800-004-866 पे कॉल करके, और इसका अगर आपने जवाब दे दिया मुझे तो $500 कैश के कंपटीशन में ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं आप, जो 4 तारीख को बताया जाएगा। बहुत ही बढ़िया मौका है आपके पास यार, फादर्स डे बनाओ, बढ़िया है। अभी तक तो कॉल देखो अभी आया था कॉल, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने नहीं बोला बिकॉज ये डैड्स के लिए है मोस्टली। बट यस, जो ये पूछ रहे कि हम क्यों नहीं पार्ट ले सकते, आप डेफिनेटली पार्ट ले सकते हो। इसी के साथ एक और कंपटीशन है जिसमें पार्ट ले सकते हैं आप, फोन आप 5599 पे। राइट, पहले कॉल उठा लेते हैं फिर आप आगे की इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। हेलो, क्या हाल है, किससे बात हो रही है?
3: बढ़िया, आप सुनो, लोकेश।
1: लोकेश जी, आपकी वॉल्यूम बहुत बहुत बहुत ही ज्यादा कम आ रही है।
3: मेरी वॉल्यूम कम आ रही है?
1: हाँ, तो मेरे को लग रहा है शायद आपने दूर रखा अपना फोन, तो उस वजह से। यस,
3: ओके, परफेक्ट। ये कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड का वो है।
1: राइट, और ये क्या मतलब, कहाँ से पॉपुलर कहाँ से हुआ ये?
3: पॉपुलर कहाँ से हुआ मतलब किस कंट्री से या?
1: नहीं मतलब कौन सा ऐसा डिवाइस था, कीबोर्ड तो था ही लेकिन ये पॉपुलर, बिकॉज देखो कंप्यूटर तो मार्केट में बहुत सालों से, आई थिंक 80s से मार्केट में, बट नो वन न्यू QWERTY, जो वर्ड है ये वर्ड बन गया बेसिकली, है तो अल्फाबेट है, मतलब अल्फाबेट नहीं वर्ड्स, ये कैरेक्टर्स हैं कीबोर्ड पे, दैट इज ट्रू, बट ये एक्चुअली पॉपुलर कहाँ से हुए थे, कौन सी डिवाइस से? मतलब आपको लिटरली वो नहीं बताना है कि वो डिवाइस क्या है, बट आप बता सकते हैं कि किस वजह से पॉपुलर हुआ था। राइट, चलिए आपका नाम तो मैं डाल दूंगा बिकॉज आप 60% सही है। मैं अभी थोड़ी देर में जवाब देता हूँ, उससे पहले दूसरे का फोन उठाते हैं, क्या पता उनको पता आंसर। राइट, क्या नाम बताया आपने अपना?
3: लोकेश।
1: या, थैंक यू लोकेश, यू हैव अ लवली डे, बाय। हेलो
4: किशन भाई, कैसे हो?
1: एकदम बढ़िया, कैसे हैं आप?
4: बढ़िया भाई।
1: किससे बात हो रही है?
4: हाँ, क्रुणाल।
1: क्रुणाल, क्रुणाल भाई बताइए।
4: हाँ, वो एक कीबोर्ड है जो यूज होता था लेटिन स्क्रिप्ट अल्फाबेट्स के लिए।
1: अरे वाह क्या बात है। और डू यू रिमेम्बर कौन सा ये मतलब किस तरह का डिवाइस था ये जहाँ से ज्यादा पॉपुलर हुआ है?
4: नहीं वो तो नहीं पता।
1: चलो कोई बात नहीं, आपका नाम भी वैसे ड्रॉ में शामिल होगा और आपसे जो पहले लोकेश भाई ने भी कॉल किया था उनका नाम भी जा रहा है। लेट मी टेल यू, आपने पहला फोन कब यूज किया?
4: मैंने
1: हाँ जी, पहला फोन किस साल में आपने यूज किया?
4: Maybe I was 18।
1: राइट, अच्छा कितने मतलब कौन सा फोन था जो आपने यूज किया था? उसके जो की पैड्स थे वो किस तरह के थे?
4: नोकिया था वो, एक ही नंबर पे तीन अल्फाबेट।
1: राइट, तो बेसिकली उसके बाद इफ यू रिमेम्बर एक फोन आया था बी से शुरू होता है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बट इट इज मोर मोस्टली लाइक अ बेरीज, अब पता पड़ी गया होगा। तो उसके बाद अगर आपने कीबोर्ड का देखा होगा, यू नो हाउ इट इज एग्जैक्टली लाइक हाउ वी हैव ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड, राइट? तो वहां उन डिवाइसेस से बेसिकली लोग बोलने लगे मुझे क्वर्टी कीपैड वाला फोन चाहिए, बिकॉज उसके साथ साथ और भी फोन्स थे, उन्होंने भी उसको कॉपी करना शुरू कर दिया था। सो या दैट्स द स्टोरी,
4: याद आ गया।
1: राइट, थैंक यू कृणाल भाई आपके भी कॉल के लिए। यू हैव अ लवली डे, आपका नाम भी ड्रॉ में शामिल होता है।
4: थैंक
1: यू, बाय।
0: लंच बॉक्स विद केतन।
5: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
6: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

वेलकम बैक। चलिए स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। क्रिकेट, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, क्यों इंडिया और श्रीलंका के बीच मैच ड्रॉ होने के बावजूद भी एक तरह से हार मानी जा रही है, दैट इंडिया हैव एक्चुअली लॉस्ट, और ये श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी जीत थी। द रीजन इज सिर्फ 4 विकेट बाकी थे और पूरा दिन था इंडिया के पास, बट स्टिल इट कुडंट मेक इट। आखिरी के 4 जो बॉलर थे उन्होंने लिटरली अराउंड 40-50 ओवर्स का गेम खेल लिया है, और उसके बाद भी लास्ट का आखिरी विकेट था वो भी नहीं ले पाई इंडिया इस वजह से। लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट इसलिए भी हो रहा है, लोगों को, लोग खुश इसलिए भी नहीं है बिकॉज काफ़ी कुछ इफेक्ट हो रहा है इन वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो होने वाली है 2027, आई थिंक नेक्स्ट ईयर है या इस साल है, नॉट श्योर एक्चुअली, आई थिंक या फिर 2028 में होगा, आई गेस, या मैं भी कंफर्म करता हूँ। बट यस, इंडिया और श्रीलंका के बीच कोलंबो में ये होने वाला था, हो रहा था मैच। इंडिया ने पहले इनिंग में 503 रन बनाए थे और श्रीलंका को 290 रन पर ऑल आउट कर दिया था। इंडिया के कैप्टन शुभमन गिल ने फॉलो ऑन को इन्फोर्स किया, मतलब श्रीलंका को तुरंत दोबारा बैटिंग करनी पड़ी। गिल का मानना था कि वेदर की वजह से रेन आ सकती थी, इसलिए इंडिया के पास मैच जीतने के लिए लिमिटेड टाइम था। लेकिन श्रीलंका ने ब्रिलियंट कमबैक किया और सोनल दिनुशा ने सेकेंड इनिंग में अनबीटन 133 रन बनाए और अपनी टीम को मैच बचाने में हेल्प की। श्रीलंका ने फाइनली मैच ड्रॉ करवा लिया। गिल ने कहा है कि उन्हें फॉलो ऑन डिसीजन पर रिग्रेट नहीं है क्योंकि इंडिया विन के लिए रिस्क लेना चाहती है, जो लिटरली काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि जब से गंभीर आए हैं तब से भारत बहुत ही गंभीर तरीके से सोच विचार कर रही है और काफ़ी रिस्क ले रही है। रिजल्ट ये है कि काफ़ी मुश्किल हो चुका है। अब इंडिया को 7 में से, आई थिंक आउट ऑफ 7, 6 मैचेस जीतने हैं अगर उनको क्वालिफाई करना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। बट यस, एट द सेम टाइम न्यूजीलैंड कहाँ स्टैंड कर रही है वो भी थोड़ी नज़र डाल देते हैं स्टैंडिंग में। वैसे ऑफकोर्स अभी जो होड़ है टॉप 3 की हो रही है, न्यूजीलैंड नंबर 3 पे है, नॉट वेरी फार फ्रॉम साउथ अफ्रीका, परसेंटेज वाइज सिर्फ 3% पीछे ही है न्यूजीलैंड, जो ऑनेस्टली बताऊं इतना मुश्किल नहीं है। साउथ अफ्रीका ऑन सेकेंड एंड ऑस्ट्रेलिया इज ऑफ कोर्स ऑन फर्स्ट, बांग्लादेश 4th नंबर पर है और इंडिया 5वें नंबर पे है, श्रीलंका 6th नंबर पे है, 7वें पे है इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज 8th पे एंड पाकिस्तान ऑन 9th नंबर।

0: मॉर्निंग्स विद केतन।
1: मुझे पसंद है लड़का। हम
2: एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत ही बढ़िया रहा आज की बातें और आज की इन्फॉर्मेशन जो मैंने प्रोवाइड की है। एंड जस्ट मेक श्योर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं आउट ऑफ ऑकलैंड, वेदर फोरकास्ट भी चेक कर लेना, और विद इन ऑकलैंड भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ओवर द वीकेंड कुछ खास वेदर होगा नहीं जिसमें आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हैं। बहुत ही येलो वार्निंग मिल चुकी है। बट येस, एट द सेम टाइम आई वुड लेट यू नो कि जिस तरह से मैं अपडेट डालता हूँ, आप मेरे सोशल मीडिया को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी कुछ ना कुछ मैं AI से रिलेटेड अपडेट डालनी शुरू करी है, तो इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ओवर देयर आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बट यस, मेक श्योर थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करिए विद द AI, बिकॉज जितनी स्पीड से AI ग्रो कर रहा है, आई डोंट थिंक सो इतने 30 साल या जितने साल का भी हूँ मैं, उतने एक्सपीरियंस में किसी भी चीज़ को इतना तेज़ी से अपग्रेड होते हुए देखा है। तो यस, जितना लेट करोगे उतना पीछे रह जाओगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू, हैप्पी वीकेंड।
0: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: चेतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
3: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
4: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ थे।
3: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
6: हाँ। अच्छा
5: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
6: मिसेस सिंह,
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
9: गोवा की गलियों में एक नया बच्चा जन्म ले रहा है। टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स, स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश, मयंक ताला, कियारा अडवाणी, तारा सुपारिया एंड हुमा कुरैशी।
10: हेलो डैडी।
9: टॉक्सिक नाउ शोइंग इन सिनेमास।
11: इट्स टाइम, आई एम कमिंग।
9: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC।
12: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
13: To infinity and beyond. Be in to win one of 500 exclusive Platinum Buzz Lightyear Ushies at Woolworths. Just boost the offer in the Everyday Rewards app, spend $30 or more and scan to enter. Offer ends 30th of August. T's and C's apply, only at Woolworths.
14: Score big at Rebel with deals for Dad on clothing, footwear, fan gear, equipment and more. Whatever he's into, make Father's Day a winner. Shop epic deals for Dad in store and online now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
15: Get it sorted with cheap ass deals. Give your garden a low maintenance glow up with 10 centimeter ornamental grasses, now $4 each. And brighten up your home with Clio 18 centimeter indoor plant pots, now $15 each. Limited stock. End Sunday at Mitre 10.
3: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
16: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. A scene exam is underway in Auckland's Wattle Downs after police confirmed the victims of a double homicide died of gunshot wounds. Officers are trying to determine whether a 30-year-old man who is in custody for an unrelated offence is involved. The Prime Minister has said sorry for another MSD issue that saw some beneficiaries left out of pocket. It stems from a requirement for people to fill out new forms about their circumstances. RNZ reported that processing delays stopped people completing the forms, and Christopher Luxon has acknowledged this.
17: Our job is to fix it. I apologise for it. I'm sorry that it's happened. But what I'm focused on is always moving forward. And so there's two questions. Get people their money, and two, fix the underlying processes that are causing the issues.
16: Auckland's Remuera Intermediate is among the latest schools having to ask kids to stay home because too many teachers are sick. It had sent a letter to parents saying it couldn't ensure adequate cover for all classes today. Tributes are flowing for acclaimed voice actor Peter Cullen, who has died

0: at the age of 85. He was the man behind Optimus Prime and said the tone was inspired by his military brother.
1: And I read the copy and Larry is just coming out. His voice, the way he talked to me. And it said, "My name is Optimus Prime."
0: To sport, just like the old days for rugby's Ranfurly Shield. Northland is holding the Loggerwood for the first time in 48 years. Tomorrow there is a street parade in downtown Whangarei starting from 11. Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. And in the US, Kiwi golf star Ryan Fox is tied for ninth after the opening round of the PGA Tour Championship in Atlanta. He shot a first round under four, under par 66, to be four off the pace.
2: Sports News.
3: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update. Brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
4: वेदर का हाल आज काफ़ी कमाल, अब क्लाउडी हो रहा है थोड़ा और बारिश हो सकती है शाम को. सो फ्यू शावर्स डेवलपिंग टुवर्ड्स इवनिंग. नॉर्दर्लीज का साथ रहेगा. 5:58 को होगा सनसेट. कल का दिन बहुत ही ग्लूमी सा बारिश भरा होने वाला है. या बारिश के दिन आ गए वापस.
3: द बीट ऑफ बॉलीवुड.
5: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
3: Drive Show with Sandy and Rizbe.
6: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
4: Well, it's Friday and Sandy को अकेले कैसे मैं कॉफी ब्रेक में यहाँ पे शो करने दूंगा यार, हो नहीं सकता.
7: Yeah, very very good afternoon. So Rizbe यहाँ पे अभी से 4 बजे तक dedicated रहने वाला है.
4: We'll see.
7: And 4 बजे के बाद भी Drive Show में साथ देने वाला
4: है. We will see how you behave, Sandy. Just depends on how you behave. अगर 3:30 से 4 के बीच आप मेरे को नहीं सुनते हो तो समझ जाना कि Sandy is not being a good girl.
7: ऐसा कुछ नहीं है रुजबे.
4: ऐसा कुछ नहीं है. नहीं
7: तो आप यहाँ पे मैसेज करके बताओ, do you want to listen to Rizbe today till 4 PM or not?
4: अगर listeners पे छोड़ दिया तो वो तो 4 से 6-7 भी मेरे को नहीं सुनना चाहेंगे.
7: ऐसा भी नहीं है.
4: ऐसे उनके ऊपर इतना ऑप्शन मत दो भाई. मेरा मॉर्गेज मैं भरने वाला हूँ, वो थोड़ी भरने वाले. सही है कि नहीं है?
7: बोलो केतन. सही है
4: केतन.
7: वो सब सर हिला रहे हैं कि भाई अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा.
4: केतन बस रुका है चिप्स के लिए भाई.
7: वो कह रहे हैं कि जल्दी बात खत्म करो.
4: मालिक कितना खर्चा हो गया, थोड़ा चिप्स भी. अच्छा
7: सो बताओ केतन, क्या प्लान है तुम्हारा वीकेंड का? कुछ ऐसा खास प्लान है?
8: देखो Saturday, Sunday, Sunday को तो मेरा जो सफायर गाना है उसका एक रील रिकॉर्ड हो रही है. सो दैट गोना बी अमेजिंग.
7: रील रिकॉर्ड हो रही है?
4: क्या बात है,
7: क्या
4: बात है. कौन रिकॉर्ड कर रहा है?
8: रिकॉर्ड तो मैं कर रहा हूँ, बट एक नया बंदा आया, डांसर बहुत बढ़िया है, नेपाल का है.
4: अच्छा,
8: बहुत ही बढ़िया डांसर है. आई थिंक, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन वन ऑफ द डांस ऑफ श्रुति चड्ढा रिसेंटली डाला था, तो उसमें एक क्या मूव्स है. लाइक आई डोंट थिंक सो, ऑकलैंड में मैंने इतना स्मूथ डांस किसी का, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जितना मैंने देखा है
7: जितना तुमने देखा है
8: उसमें, आई डोंट थिंक सो मैंने इससे बेटर किसी डांसर को देखा. लाइक मेल मेल
4: मेल मेल डांसर. हाँ. में अच्छा,
8: फीमेल में तो बहुत है, फीमेल तो बहुत है.
4: ये देखो कैसे कवर कर रहा है अपना क्लाइंटल. बोलते हैं क्लाइंटल को सिक्योर रखना, फीमेल में बहुत है,
7: फीमेल में बहुत
4: है, बट मेल में इससे जैसा मैंने नहीं देखा है. वेरी गुड.
8: ये क्या कवर होता है?
7: मैं ये कहना चाहती हूँ केतन,
8: मेरे को पता, ये सीखना है रुजबे से. मतलब जो चीज नहीं भी है वो भी बोल, नहीं तूने ये सोचा है वो सीखना है मेरे को.
7: मैं क्या कह रही हूँ कि पॉइंट ये है कि आई नो कि रुजबे अच्छा सिंगर नहीं है, वी ऑल नो दिस, बट वो कुछ अच्छा डांसर है.
4: नहीं नहीं मैं नहीं हूँ इतना, मैं नहीं हूँ डांसर भी.
7: तुम डांसर तो अच्छे हो, मैंने देखा है.
8: इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज रुजबे का डांस कभी देखा ही नहीं मैंने प्रॉपरली.
7: क्या बात कर रहे हो,
8: नहीं देखा?
7: वो अच्छा डांसर है.
8: वो ऐसे रील्स में देखा दिवाली वाला किसी के रिकॉर्ड, तो उसमें ऑब्वियसली मैं कैसे जज करूं यार.
4: पॉइंट है.
7: नहीं वो तो मैं ऑनेस्टली कैसे देखो, ऑनेस्ट हो सकती हूं. वैसे सिंगल तुम अच्छे नहीं हो, बट डांसर अच्छे हो.
8: हां नहीं वो तो
4: मेरे को लगता है कि मैं ना सिंगर अच्छा हूं ना मैं डांसर अच्छा हूं, मैं नौटंकी बहुत बढ़िया हूं. आप मेरे से नौटंकी करवा लो, मैं नौटंकी बहुत अच्छी कर सकता हूं.
8: यू आर गुड एंटरटेनर.
4: Yeah, you could call it also.
8: देखा ये इसको बोलते हैं कि ना appreciate करना.
7: So how is the Friday going, Rizbe?
4: Friday is going great. Much better now.
8: Much better now.
4: Yeah. So anyway, तो हाँ तो reel हो रही है, shoot हो रही है सफ़ायर की. और क्या हो रहा है फिर?
8: और कल देखते हैं ऑकलैंड वॉर मेमोरियल देखता हूँ, मॉम डैड को ले जाना वहाँ पे.
4: अच्छा मॉम डैड यहाँ पे.
8: हाँ
4: how is it going यार, मॉम डैड एंड वाइफ एक घर में.
7: ऐसा नहीं पूछना था, बट
4: ये क्यों पूछा?
7: Already it's good.
4: Because I have also been in that scenario.
8: अच्छा.
4: And I know it's not good, it's great.
8: नहीं यार मतलब मेरी स्टोरी तो ये है कि खुशबू इज एक्चुअली स्पेंडिंग मतलब मैं खुशबू रही है लेकिन मैं नहीं रहा हूँ उस टाइम पे
4: राइट
8: अर्ली जब शादी नहीं तो ये बेसिकली दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हम चारों एक साथ है चारों में अब तो पांच है पांच का भी है
4: दैट्स राइट
8: तो अभी ऑप्शन नहीं है
4: इतना भी सच नहीं बोलना था
8: नहीं ऑप्शन नहीं ऐसे टू अवॉइड एनीवन
7: मतलब
8: यहाँ पे क्या है ये जो वाक्य जो मैं बोल रहा हूँ दिस इज आई डोंट नीड टू टेल बट आई थिंक मेजोरिटी पीपल विल अंडरस्टैंड वो कहते हैं ना वो क्या डालोगे गोलमाल का तुम्हारे पछवाड़े में कभी किल घुसा है तो मेरा दर्द नहीं समझ सकते
7: अगर आप केतन का दर्द समझ सकते हैं तो प्लीज
4: ये बंदा
7: कोई टिप देना चाहेंगे
4: ये बंदा गुड से लेकर पिछवाड़े में खील घुसने तक चला गया ये इन मैटर ऑफ
7: 60 सेकंड्स
8: यार देखो हमारा काम है एंटरटेन करना
4: वो ये एंटरटेनमेंट के लिए ये सब बोलते हैं
8: ये ऐसा थोड़ा ना सच मुझे हां वो मैं हमारे में बहुत बहुत बढ़िया यार मतलब मेरे से ज्यादा प्यार वो घर में वही कर रहे हैं एक दूसरे को
7: ओके या
4: इसी नोट पे मुझे लगता है कि एपी ढिलो का ये गाना बहुत ही बढ़िया फिट होगा पता है आपको कौन सा ये गाना क्या वीकेंड गाना है ये वी डोंट प्रमोट कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल जस्ट लेटिंग यू नो बट एपी ढिलो ने गाया है श्रेया घोषाल के साथ तो कैसे नहीं बजा पाएंगे हम
7: थोड़ी

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz.
10: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
11: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
12: Farmers has the best gifts for dad, with great grooming products, skincare and the latest fragrance, and casual styling from top to toe. There's coffee machines, cocktail makers and barbecue sets too, plus Lego sets for grown-ups. Farmers has the best gifts for dad.
13: Kiwi kids are active kids, creative kids, sporty kids. Are you a Weet-Bix kid?

0: सैंडी यार ये कब चेंज करोगे आप यार, ये बहुत गलत, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ यार ये चीज को।
1: क्या चीज?
0: कि उसको पर्सनल चीज सवाल मत पूछो, वो बहुत गुस्सा हो जाती है। मैं नहीं सुन पा रहा हूँ ये यार, ये ऐसे गलत गलत क्यों, ये कौन बनाया ये?
1: सचिन
0: यार, सचिन बहुत गलत चीजें बना रहा है यार।
1: कॉल एंड आस्क हिम,
0: आई थिंक आई शुड कॉल हिम।
1: या उसको बोलो कि ऐसे क्यों भाई,
0: सचिन को ऑनर नहीं कॉल कर सकते हम।
1: तुम उसको बोलो कि मैं तो पूछता ही नहीं हूँ
0: सचिन को,
1: गुस्सा कैसे होगी वो।
0: नहीं, मेरे को तो सारी पर्सनल चीजें पता है सैंडी की। मैं तो ऑनर भी बात करता हूँ ना सैंडी की, कितनी पर्सनल, जैसे कि सैंडी को, सैंडी का अभी लेटेस्ट पेट है जो अभी एक साल का होने वाला है बहुत जल्दी।
1: हाँ यार, सितंबर में।
0: सितंबर में ना?
1: हाँ।
0: तो फिर कितनी पर्सनल बात है ये तो। पेट इज वेरी पर्सनल चीज ना।
1: वेरी पर्सनल।
0: फिर उसके, उसका नाम भी बताओगे आप कि नहीं?
1: हाँ बताओ।
0: माइल्स।
1: हाँ बोला हुआ है ये।
0: बोला है ना?
1: हाँ।
0: तो फिर सब कुछ तो बोला है ना, ये बदलना पड़ेगा ये। सचिन आपको जानता नहीं है, ये सचिन पहले वाला,
1: सचिन आता नहीं है ना।
0: हाँ,
1: इसको पता ही नहीं है।
0: ओए, उसके जहन में पहले वाली सैंडी है, लेकिन सैंडी बदल गई है अभी पिछले 4 साल से। सैंडी बहुत ही बदल गई है।
1: अच्छा,
0: हेंस प्रूव्ड।
1: आई डोंट नो।
0: ओके, एनीवे, क्रिस्टोफर लक्सन बहुत अपसेट है, और वो अपसेट इसलिए है क्योंकि एयर न्यूजीलैंड का लॉस हो गया है। एयर न्यूजीलैंड ने 336 मिलियन प्री टैक्स लॉस फॉर 2026 फाइनेंशियल ईयर इन्होंने नोट किया है, और प्रिटी पुअर परफॉर्मेंस ऐसा कहा है प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने।
1: एयर न्यूजीलैंड की, एयर न्यूजीलैंड के बारे में,
0: एयर न्यूजीलैंड के बारे में लॉस हुआ है ना उनका।
1: लॉस हुआ है, उन्होंने काफी फ्लाइट्स भी कट की थी अभी रिसेंटली, एंड काफी चीजें की थी।
0: वही समझ में नहीं आ रहा, एक जगह पे वुलवर्थ ने प्रॉफिट किया तो उसके ऊपर भी थोड़ा प्रॉब्लम था। अब एयर न्यूजीलैंड लॉस कर रही है तो उसके ऊपर भी अभी प्रॉब्लम है, बट ये रियलिटी है ना, न्यूजीलैंड के बिजनेसेस लॉस में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन जो भी है सब प्रॉफिट में जा रहे हैं।
1: एक्चुअली में
0: वंडर व्हाई।
1: एनीवे, आज वैसे विनर का नाम भी अनाउंस होने वाला है रुजबे, रक्षाबंधन कंपटीशन में, सोशल मीडिया कंपटीशन में किसने जीता है ये विनर का नाम आज अनाउंस होगा। एक विनर का नाम तो सुबह अनाउंस हो चुका है जिन्होंने ऑनियर कंपटीशन में प्राइज जीता है। सोशल मीडिया पे जिन्होंने जीता है इसकी अनाउंसमेंट आज ड्राइव शो में होने वाली है 4 बजे के बाद
0: आपको पता चलेगा कौन जीता है रक्षाबंधन का, जो सेकंड विनर जो रहा है रक्षाबंधन कंपटीशन में।
1: आज रक्षाबंधन है वैसे, एंड अगर आज अपने भाई या बहन के लिए कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे 5599 पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके आप शाउट आउट देना चाहते हैं, कुछ उनके बारे में बात करना चाहते हैं,
0: विश करना चाहते हैं अगर किसी को,
1: या विश करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर इट, यू कैन कॉल ओवर हेयर। आप उनके लिए मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं या फिर उनको सरप्राइज दे सकते हैं। इफ यू वांट अस टू कॉल योर भाई या बहन, वो भी हम कर सकते हैं।
0: हम इंटरनेशनल कॉल भी कर सकते हैं यहाँ से।
1: यस, अलाउड है।
0: मैं तो बोल रहा हूँ आजकल कोई खुद कॉल नहीं करते ना, मतलब वो व्हाट्सएप वीडियो, व्हाट्सएप कॉल होने लग गए ना। नहीं तो पहले तो ये अच्छा स्ट्रेटेजी था कि तुम तुम्हारा खर्चा मत करो तो हमें बोलो, हम कॉल करते
1: हैं। या सो इफ यू वांट टू गिव देम अ सरप्राइज तो आप हमें बोल सकते हैं यहाँ पे, गो फॉर इट एंड वी विल कॉल देम एंड डू अ सरप्राइज।
0: या एंड ऑल्सो आप हमें बताइए आप कैसे सेलिब्रेट करते हो रक्षाबंधन, लाइक व्हाट्स योर रक्षाबंधन रिचुअल, ये आप हमें यहाँ पे कॉल करके बता सकते हो 0800।
1: मतलब मेरे साथ तो बहुत ही फनी हुआ रात को, मैंने पूरा प्रिपेयर करके, क्योंकि मेरा भाई सुबह सुबह बहुत जल्दी अर्ली जाता है काम पे, तो मैं सब कुछ प्रिपेयर करके रख लिया कि सुबह सुबह उठ के पहले उसको राखी बांध देनी है। एंड वो उठा भी, सब बातें वगैरह हुई, ठीक है, सब बातें इधर उधर की हो रही है, माइल्स के साथ भी पूरी फन मस्ती चल रही है, वो चला गया, मतलब बाहर चला गया, उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, मुझे एकदम से याद आया कि ओ नो, उसको कॉल किया तो गया कि नहीं गया। कहता नहीं, अभी ड्राइव में पे हूँ, मैं वापस आ। फिर उसको राखी बांधी, या
0: क्या बात है। और क्या गिफ्ट मिला फिर?
1: मेरे घर में थोड़ा उल्टा चलता है।
0: ओ, आप ही गिफ्ट देते हो?
1: मैं देती हूँ गिफ्ट,
0: सच्ची में?
1: हाँ, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, वो बचपन से उल्टा चल रहा है, तो ही वो करता है, लेकिन वो देर बाद करता है, राखी वाले दिन नहीं करता है वो। तो रक्षाबंधन वाले दिन इज द ऑलवेज द ट्रेंड इज कि आई गिव हिम अ गिफ्ट।
0: क्या गिफ्ट दिया आपने फिर?
1: सो अभी तो मैंने उसको मार्शमेलो ही खिला दिए। अभी देना है गिफ्ट यार, वीकेंड आ रहा है ना, आई विल गिव हिम।
0: अच्छा,
1: या टाइम नहीं मिला मुझे भी।
0: इट्स ओके, वी अंडरस्टैंड सैंडी, मॉर्गेज वी अंडरस्टैंड। तो इट्स ओके, क्या प्लान है? लेकिन गिफ्ट क्या है?
1: आई ऑलरेडी गिव हिम लास्ट टाइम PS5।
0: हां, PS5 दिया था आपने?
1: 5 इयर्स।
0: ओह, एक्चुअली दैट्स राइट।
1: मैं 5 साल के लिए सॉर्टेड हूं अभी,
0: जब तक नया वर्जन नहीं आता ना उसका।
1: एक्जेक्टली। हां,
0: तो क्या प्लान है फिर देने का, कुछ प्लान है कि नहीं?
1: नो, नथिंग, अभी कुछ प्लान नहीं है। विल जस्ट गो समवेयर एंड सी, कुछ ऐसा हुआ, मे बी सम गेम या समथिंग, कुछ ऐसे।
0: हां, कोई गेम उठा सकते हो।
1: या दैट विल बी प्रीटी गुड,
0: बट अभी मेरे को नहीं लगता उसको गेम की भी जरूरत है ना, क्योंकि अभी उसके पास लाइव गेम है वहाँ पे आपका जो पेट वो उसका एक्चुअली पेट है ना,
1: ये उसका पेट है.
0: So yeah, I think the gift is that you take care of the pet when he's not around.
1: I do that, Rusbe.
0: वही तो gift है ना उनका.
1: Yeah.
0: वही बोल रहा हूँ मैं. Get him GTA 6, ऐसा बोल रहे हैं. Gift him GTA 6. आया नहीं ना अब तक GTA 6. ये
1: GTA 6.
0: GTA 6 कब आ रहा है?
1: नहीं पता मुझे.
0: क्योंकि मेरे को ना Netflix पे वो दिख रहा है कि GTA Extended कुछ तो भी आ रहा, release होने वाला है Friday को. Release. वो क्या है? वो मेरे को कोई please explain करो यार call करके. Oh, you can pre-order, Sandy.
1: वो क्या बात है?
0: You can pre-order GTA 6. That will be the world best gift for him. और फिर मैं आके खेलूंगा. मैं आपके भाई के साथ थोड़ी दोस्ती बनाता हूँ.
1: Yeah, I think.
0: Yeah. Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

यू बाई 0800 रचना. इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.

0: preparation for Sunday's game against Tasman as the Taniwha put the log of wood on the line for the first time since 1978. Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. And in Boston, Dame Lydia Ko is 8 shots off the lead after the opening round of the latest LPGA tournament.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
3: काफी ग्लूमी क्लाउडी हो गया है बाहर, बारिश भी हो रही है शायद कुछ कुछ जगहों पर. 2 layers of clothing is recommended. Feels like 17 though, it's quite warm out there. Overnight temperature is going to be as low as 13 degrees. कल पूरा रेनी ग्लूमी डे रहने वाला है. इंडोर के लिए बढ़िया सा दिन है कल.
1: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe.
2: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
4: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
3: 4:02 on the 20th of August. Happy Raksha Bandhan Day. जो जो आज celebrate कर रहे हैं, आपको ढेर सारी बधाई आज के दिन की. Hope आपके siblings के साथ आपको ये मौका, मतलब ये जो festival है, celebrate करने को मिले. और नहीं भी तो आज time spend कीजिए, उनसे बात कीजिए, call कीजिए, phone लगाइए उन्हें.
5: Yes, उन्हें call कीजिए, message कर सकते हैं उन्हें.
3: Drive show के बाद लेकिन.
5: या ड्राइव शो के बाद, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ड्राइव शो से उनको कॉल हो तो आप यहाँ पे हमें उनका जो नंबर है ये भेज सकते हैं एंड हम उनको आपके बिहाफ पे कॉल करेंगे.
3: ये तो मजा ही आ जाएगा यार, अगर आप यहाँ पे भेजते हो ना आपके सिबलिंग का फोन नंबर. देखो जहाँ पे भी होंगे, देखो टाइम जोन ये परफेक्ट रहेगा मुझे लग रहा है 4 के बाद का.
5: या
3: इंडिया में भी सुबह हो जाती है ये टाइम पे. अगर आप फीजी में, तो फीजी में तो सेम ही टाइम जोन है ना.
5: सेम टाइम जोन है.
3: नंबर भेजिए यार, हम कॉल लगा के आपके बिहाफ पे हम उनको विश करेंगे,
5: उनको सरप्राइज देंगे आज.
3: हाँ, और आपको भी कॉन्फ्रेंस पे रखेंगे.
5: या एंड रक्षाबंधन पे अगर कोई गाना आप सुनना चाहते हैं जो अपने भाई या बहन को आप डेडिकेट करना चाहते हैं तो आज वो भी आप मैसेज कीजिए.
3: बहुत टाइम से हमने ये किया नहीं ना ऐसे, हम लोग प्रैंक कॉल्स तो नहीं लेकिन ऐसे कॉल्स करते थे जहाँ पे हम लोग कुछ और ही बलता बोलते थे, फिर लोग वो गाली देने से पहले हम बोलते थे भेंडर गई. एक्चुअली आज वो सेगमेंट करते हैं, भेंडर गई.
5: आज रुजबे इस मूड में है किसी को प्रैंक करने के लिए. तो कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए यहाँ पे जिसका
3: जिसके साथ आपको भेंडर गई
5: करना है. यू कैन कॉल एंड मैसेज ओवर हियर. एनीवे, सो आज विनर का जो नाम अनाउंसमेंट होने वाला है, आई विल करेक्ट. सोशल मीडिया कंपटीशन का विनर ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है सुबह.
3: हमारे लिसनर ज्यादा अटेंटिव है.
5: yes,
3: हमारी टीम से
5: ज्यादा. तो एंड ऑन एयर जो कॉम्पिटिशन हुआ था उसके 2 विनर्स का नाम आज अभी थोड़ी देर में अनाउंस होने वाला है, इसी आवर में अनाउंस होने वाला है.
3: $250 जो जीते हैं उनका नाम अभी अनाउंस होगा थोड़ी देर में, लेकिन अभी के लिए लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल ट्रैक.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight HUM 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special HUM boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: HUM boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। Kashish Premium Basmati Rice. Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
4: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
5: Join the Tribe!
4: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
5: join the Tribe!
6: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercentre, Cavendish Drive, Manukau.
7: When India comes to town, Ayodhya Rova ka feel hi kuch alag ho jata hai. Cricket Nation ke pre-sale mein shamil ho. NZC.nz pe aur apne tickets sabse pehle book karo. Kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps vs India.
8: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलुकाओ में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलुकाओ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
9: Discover the magic at Go Bananas Childcare, where your children will learn in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, this is always you. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. So, don't wait. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
10: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe.
11: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
12: सुपर से ऊपर शो में अब मौका आ गया है हम आज पहले विनर का नाम अनाउंस करें जो रक्षाबंधन कंपटीशन में $250 अपने नाम कर रहे हैं आज सैंडी आर यू रेडी
13: यस एकदम रेडी तो बताओ नाम कॉल भी करने वाले हो या सिर्फ नाम बोलोगे
12: कॉल लगाओ चलो ठीक है कॉल लगा देते हैं अगर आप बोलते हो कॉल लगा देते हम जो हमारे आज के विनर है $250 इनके नाम होने वाले हैं तो देखते हैं ये हमारा फ़ोन उठाते हैं कि नहीं उठाते

0: जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था रक्षाबंधन कंपटीशन में. आई थिंक ये कब इन्होंने किया था, इन्होंने 24 अगस्त को पार्टिसिपेट.
1: हेलो
0: हेलो हाय, क्या ईशु बात कर रहे हैं?
1: हाँ जी.
0: ईशु कैसे हो आप?
1: बढ़िया जी, कौन बोल रहे?
0: रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई आपको.
1: थैंक यू जी.
0: बियंका जी ने आपके लिए स्पेशल विशेस भेजी है आज.
1: अच्छा जी, फ्रॉम हम
0: जी जी.
2: अरे
0: हाँ, ऐसे कैसे आपने पहचाना बियंका के नाम पे?
1: मैं उसको भावना बोलता हूँ.
0: अच्छा, भावना बोलते, तो बियंका क्यों लिखा है यहाँ पे?
1: हाँ, बिकॉज उसका यहाँ का नाम है.
2: ओ, मतलब ये उनको भावना बोलते हैं, बट बियंका वैसे उनका ऑफिशियल नेम है, तो ऑफिशियली तो
0: यहाँ पे पकड़ा गया मैं यार. एनीवे, कांग्रेचुलेशंस, हमने आपको कॉल इसलिए किया है.
1: हेलो,
0: बोलने को कि आप एक बहुत अच्छे भाई है कि आपने आपकी बहन के लिए यहाँ पे
2: और आपने गिफ्ट दे दिया क्या?
1: अभी जाने वाला हूँ.
0: अभी जाने वाले हो आप, क्या क्या गिफ्ट दे रहे हो?
1: बहन, मेरी वाइफ ने लिया.
0: अच्छा, वाइफ ने लिया है.
1: हाँ जी.
0: क्या यार,
2: नाइस. सो अच्छा, जाने वाले हो अभी उनको देने के लिए.
0: तो बताओ तो सैंडी, फिर अभी क्यों कॉल किया हमने इन्हें?
2: या आपको हमने इसलिए कॉल किया बिकॉज हम आपको कांग्रेचुलेशंस कहना चाहते हैं.
0: वो तो कह दिया हमने ऑलरेडी सैंडी, अभी आप बताओ यार.
2: बिकॉज़ यू आर वन ऑफ द विनर, $250 कैश आपने जीता है.
0: $250 आपके नाम हो गए. आपका जो रक्षाबंधन है और भी बेहतर हो अभी. एंड हैव अ गुड वन.
2: थैंक यू सो मच. एंड आपको वीकडेज में कॉन्टेक्ट किया जाएगा हाउ टू क्लेम दिस मनी. आपको मैसेज आएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच ईशु, कांग्रेचुलेशंस, बाय.
1: Bye-bye.
0: Bye. अच्छा, तो ये हमारे पहले विनर थे.
2: सेकंड विनर को अभी कॉल करना है कि तुम्हें थोड़ा रुक के करना है?
0: सेकंड विनर को थोड़े टाइम में करेंगे ना, पहले अभी हम गाना सुनेंगे बॉलीवुड मोस्ट वांटेड में. आवर अपन 2 का ये टाइटल ट्रैक है. बट या कांग्रेचुलेशंस, अगर जिन जिनों भी यहाँ पे परफॉर्मेंस अपना पार्टिसिपेट भी किया है ना,
2: थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग.
0: उनको भी थैंक यू बोलते हैं हम, क्योंकि आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, ये बहुत बड़ी बात है. अनफॉर्चुनेटली 2 ही लोग जीते ये बार, बट कोई बात नहीं, और भी कॉम्पिटिशन हो रहे हैं हमारे जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे कि फादर्स डे कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो हैपनिंग, जिसमें नेक्स्ट फ्राइडे को विनर अनाउंस करेंगे हम.
2: और इसका कंपटीशन भी ओपन अप हो जाएगा आपके लिए आज 5 बजे के बाद.
3: Bollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
5: मैं लाऊं अपना A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: सिद्धार्थ मल्होत्रा, एश किंग एंड उनके साथियों की आवाज में सुन रहे थे आप ये सॉलिड गाना बंदूक मेरी ले ला।
1: And now is the time to call the second winner, Ruzbe.
0: नहीं अभी नहीं यार, इतने जल्दी थोड़ी सैंडी,
1: अभी नहीं
0: थोड़ा टाइम लेंगे यार, अभी तो पहले विनर का सबने ऐसा अंडरस्टैंड किया है।
1: तो मैं आपको तब तक एक और कंपटीशन के बारे में बता देती हूँ, हम बोर्डिंग कॉल के बारे में। यू कैन विन रिटर्न टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वन आर टू विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी आपके नाम हो सकती है। नाउ हियर इज हाउ टू एंटर, बहुत ईजी है। आपके लिए स्पेशल बोर्डिंग कॉल प्ले होगी बिटवीन 8 AM टू 9 AM, बिटवीन 11 AM टू 12 PM, बिटवीन 1 PM टू 2 PM एंड बिटवीन 5 PM टू 6 PM। सो आज भी वो बोर्डिंग कॉल आपके लिए प्ले होगी, जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि इट इज़ टाइम टू बोर्ड नाउ, रोवा ऐप पे जाके बोर्ड नाउ लिखो एंड सबमिट करो, ताकि आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो, जहाँ पे रिटर्न टिकट्स टू वन टू विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी आप जी सके। सो आपको करना क्या है, सुनते रहना है। 5 बजे के बाद ये प्ले होगा, जैसे प्ले होगा आपके पास 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर होगा रोवा पे जाके, वहाँ पे सर्च में आपको हम बोर्डिंग कॉल ये सर्च करना है, आर्टिकल आपके सामने आएगा, वहाँ पे 5 PM के आगे बोर्ड नाउ लिखना है और सबमिट करना है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना है कंपटीशन पेज लिंक, तो आप BC लिख के भेजिए 5599 पर, आपको अभी कंपटीशन पेज लिंक हम भेज देंगे। हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनाटू। विजिट flysolomons.com, टर्म्स एंड कंडीशंस वैसे हमारी वेबसाइट पे है hum.rova.nz पे। तो यह सुनते रहेगा, ये बोर्डिंग कॉल आपके लिए आज 5 बजे के बाद कभी भी प्ले हो सकती है
0: जी। और थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि सेकंड विनर जो है हमारे रक्षाबंधन कंपटीशन के $250 ये किसके नाम हुए हैं, बस थोड़ी देर में आपको बताएंगे।
2: The Drive Show with Sandy and Ruzbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Phuket-Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Phuket-Koi.
3: 80s ke retro gaane.

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. अभी आप सोच रहे होंगे कि straight from the heart में ये गाना कैसे आप सुन रहे हैं? देखो, because at the end of the day, काफी लोगों के लिए पैसा भी है straight from the heart. मतलब they love money.
1: Yeah.
0: तो हम उनको भी cater करते हैं. हम बहुत ही inclusive radio station है, Sandy.
1: Yeah.
0: So it is not just for people who love people. It's also for people who love money.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: पैसे से तो पूरी दुनिया है ना.
0: पैसे से तो पूरी दुनिया चलती है. तो इसलिए
1: गुड कवर अप.
0: बढ़िया किया ना. लेकिन
1: बहुत अच्छा.
0: आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय सेल्फ.
1: नाउ इज द टाइम टू अनाउंस द सेकंड विनर. एक्चुअली कॉल द सेकंड विनर ऑफ रक्षाबंधन कंपटीशन जो आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया कॉल करके. तो या अगर आपके फोन पे अभी प्राइवेट नंबर से कॉल आता है या फिर क्या कहते हो तुम उसको,
0: पार्वती नाम्बियार.
1: या पार्वती नाम्बियार के नंबर से कॉल आ रहा है तो
0: निकाल दे.
1: अरे यार, आपने तो ये नंबर ही ब्लॉक करके रखा है. होता है कईयों के फोन में.
0: हम सैंडी पैसा
1: कॉल बैक
0: नहीं, आंसर द कॉल. अरे वो एआई है उनका, वो है, बोल रहा है.
2: Please stay on the line.
0: देखो अभी उठाएंगे वो फोन. अगर पैसा इनको प्यारा है तो
1: ये नया सिस्टम आ चुका है ना आजकल फोन में.
0: सबके पास
1: पहले आपको मैसेज देना पड़ता है कि आप कौन हो.
3: हेलो
0: जी. हाय.
3: हाय,
0: कैसे हो आप?
3: ठीक हो रुद्र?
0: अरे बढ़िया. अश्विन पहचान लिया आपने?
3: अरे कहने भाई.
1: अच्छा ये बताओ अश्विन कि जब ऐसे आपका जैसे नंबर पे कॉल किया, उन्होंने बोला कि आप मैसेज दो फिर हाँ आपको कनेक्ट करेंगे,
0: क्या मैसेज आया आपको?
3: वो मैंने मैसेज नहीं देखा भाई.
0: नहीं देखा?
3: उठा लिया
0: ऐसे उठा लिया
3: ना, बिकॉज़ मैं सीधा फोन उठा लिया, मैसेज देखा ही नहीं.
0: तो काय को फिर उसको काम पे लगाया?
1: हाँ वही ना, इतना अच्छा मैसेज दिया आपके लिए हमने,
3: देखा ही नहीं भाई.
0: देखा ही नहीं, चलो ठीक है. आपको पता है हमने आपको क्यों कॉल किया?
3: नहीं.
0: रक्षाबंधन विश करने के लिए.
1: हैप्पी रक्षाबंधन.
0: कैसे हो आप?
3: ओह थैंक यू भाई.
0: हाँ
3: आप तो
1: या
0: आपकी चार बहन है ना?
3: जी हाँ जी हाँ.
0: क्या नाम है उन चार बहनों का आपके?
3: एक के सरस्वती है, एक के मुनिकांता है, एक के संगीता है और एक के सुनीता है.
0: अरे क्या बात है, सारे एस हैं
3: जी.
0: सब एस एस
1: एस से शुरू हो रहे हैं.
3: हाँ सब एक ऑस्ट्रेलिया में और फिजी में.
0: अरे क्या बात है.
1: नाइस. तो कैसे आपने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया?
3: मेरा वो बोला अभी रक्षाबंधन बोला भेजा, अभी तक मुझे मिला नहीं. मेरा बहन को भेजा, अभी तक मिला ही नहीं मुझे. मैं मेलबॉक्स को देखा तो मिला ही नहीं है.
0: अरे तो आपने भेजा वो भी नहीं उनको मिला है, और उन्होंने जो भेजा आपको नहीं मिला है?
3: नहीं नहीं मैंने भेजा, मैं भेजा ही नहीं उनके.
0: ओ आप भेजा ही नहीं उनको?
3: ना वो बोलता मैं भेजता हूँ तुम्हें रक्षाबंधन. मैं बोला अच्छा ठीक हो, तो मुझे मिला ही नहीं.
0: अरे आपको मिला ही नहीं वो? अच्छा
1: तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं आप?
0: ठीक है, अभी आपको भेजने का आपका भेजने का टाइम आ गया अभी बहनों के लिए.
3: मेरा रिश्तेदार कोई जा रहा है ना, तो मैं सोचा रहा उसके हाथ में भेजा दूंगा, तो इसलिए मैं नहीं
0: भेजाऊँ. चलो बढ़िया है, अभी आप अच्छे से भेज पाओगे क्योंकि आप जीत गए हो यहाँ पे $250 कैश.
1: कांग्रेचुलेशंस अश्विन.
3: ओह थैंक यू. अच्छा रोजी भाई, एक मैं जब ड्रो में आया था मैं एक बात सोचा था.
0: हाँ,
3: मैं आज बता दूं आपको.
0: हाँ, हाँ,
3: मैंने ओला स्टोरी बताया जो बहन से मेरा से कैसे वो मुझसे इतना प्यार करते थे ना, मैं चीज था बेटा. मैं पहला दिन सोचा अगर मैं जीत जाऊँ तो जितना पैसा मैं सब उसकी वही को दे दूंगा और मैं वही करूंगा.
0: वो वैसे वही करना था.
3: नहीं मैं वही सोच रहा था ना, अगर मैं अगर
1: कोई रख भी लेता ना ऐसा भी होता है.
0: नहीं नहीं आपके बहन के हक का है ये, लेकिन आपको चार में डिवाइड करना पड़ेगा. चार बहन है ना आपकी?
3: नहीं कोई बात नहीं, मैं अपनी जेब से दे दूंगा फिर तो मिल जाएगा.
1: सही है.
0: चलो ठीक है. चलो बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस यार अश्विन.
1: कांग्रेचुलेशंस.
3: ओह थैंक यू.
0: ठीक है,
3: थैंक यू.
0: हैव अ वंडरफुल रक्षाबंधन और होप आपको जल्दी से मिल जाए आपका पार्सल जो पेंडिंग है अभी.
3: Oh, thank you so much.
0: Yeah.
1: Thank you, Ashwin.
0: Thank you.
1: Take
0: care.
1: Bye.
0: Bye.
3: Okay. Okay. Bye. Bye.

यू बाई 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल आज काफ़ी ग्लूमी एंड क्लाउडी एंड रेनी होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं यार, वी डिजर्व इट. नॉर्थ ईस्ट का साथ रहेगा. वीकेंड पे भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होने वाली है. 5:58 को आज होगा सनसेट इफ द सन इज आउट येट, बट टू लेयर्स ऑफ क्लोथिंग इज रिकमेंडेड फॉर टुनाइट.
2: The Drive Show with Sandy and Ruzbe, brought to you by Bedzoras, Manuko and Pukekohe, where sleepyhead comes.

0: National Value, Beds R Us, Manukau and Pukekohe.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge. Ow!
4: 5:02, Power Drive at 5. Good evening. Hi, Sandy.
5: Hi, Rizbe. A very, very good evening to you. Over the weekend, वैसे बहुत कुछ हो रहा है. By the way, the lotto का top prize to hit $60 million.
4: है?
5: Yeah.
4: क्या बोल रहे हो?
5: Yeah, lotto top prize to hit. ऐसा मैंने अभी पढ़ा है. But it's never been harder to win. September 13 से Lotto's Powerball is changing.
4: Oh.
5: Prediction of thousands more weekly winners. So, you know, mathematician ने जो calculate किया है, with the top possible jackpot $60 million.
4: तो फिर अभी खरीदने का point नहीं है मतलब कल के लिए. 23 मिलियन है ना अभी.
5: 23 मिलियन है क्या? ओके. ओ, किसी का 20 नहीं निकला.
4: नहीं निकला.
5: ओके.
4: इसलिए तो हमारा एक नहीं मिला ना अपने को. नहीं, हमारे यहाँ पे हमारे
5: बहुत लोगों ने बोला कि हाँ, मिलेगा हमें.
4: अगर वो जीते तो हमें एक एक देंगे वो.
5: या
4: मिलियन देंगे कि रख के देंगे नहीं पता, लेकिन हाँ एक एक देने वाले थे.
5: आई नो, मिड सितंबर से ये चेंजेस भी हो रही है. अभी
4: 23 हो गया है. 23 पता नहीं, मेरे को नहीं लगता फिर अगर अभी ये अनाउंसमेंट अभी आई है तो 23 ज्यादा लोग लेंगे तो इस मिलियन के लिए टिकट.
5: तो और भी ज्यादा चांसेस है जीतने के ना.
4: हाँ, वो भी है.
5: किसी के तो चांस बढ़ जाएंगे जीतने के.
4: 23 मिलियन
5: कम एंट्रीज होंगे तो चांसेस आर मोर.
4: आप बहुत गलत कर रहे हो सैंडी. यू शुड नॉट प्रमोट लॉटो एंड ऑल ऑन रेडियो.
5: आई एम नॉट प्रमोटिंग, आई एम जस्ट सेइंग द न्यूज कि या गैम्बलिंग इज नॉट गुड इन एनी वे.
4: और ये आपका सही है ना, मतलब खुद तो कभी खरीदती नहीं हो टिकट, लेकिन लोगों के शेयर में से आप शेयर ले लोगे.
5: मैंने खरीदी है, बहुत कम खरीदी है.
4: हाँ, जीते नहीं ना अब तक, इसलिए यहाँ पे हो ना.
5: अगर तुम जीत जाओ $60 million, एग्जाम्पल जो है भी नहीं अभी तक. अभी है नहीं, कभी तो जैकपॉट होगा ना. ये पॉसिबल हो सकता है इसी साल में.
4: सही बोल रहा हूँ.
5: $60 million का जैकपॉट अगर तुम्हारा लग गया, क्या करोगे?
4: कुछ नहीं. BAU, business as usual.
5: Business as usual मतलब कि इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन तुम कंटेन कैसे रखोगे
4: यार. मेरे को लगता है कि पैसा जरूरी है खुशी के लिए, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अगर पैसा ही हो गया रीजन तुम्हारे खुशी का, तो फिर तुम ज्यादा दूर नहीं जाओगे.
5: जिसके पास मिलियन आ जाता है उसको वो बात अलग है.
4: वो मेरे पास नहीं आया अब तक, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं.
5: Exactly.
4: जिसके पास आया है वो अगर हमें यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि तुमको कैसा फील होता है तो तुम बोलो करो यार. हाय.
6: हाय. हेलो. हाय.
4: बोलिए भाई. जी भाई, आपको रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा कम करना पड़ेगा बात करने से पहले, ना तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा.
6: ना एकदम कम कर दिया.
4: हाँ, ओके,
5: परफेक्ट. हाँ, बताइए.
6: अगर जैसे कल कोई जीत जाता है तो आपका 13 सितंबर से 5 मिलियन से शुरू होगा, वो मिलियन से नहीं शुरू होगा.
4: तो इसलिए 60 मिलियन तक चला जाएगा वो.
6: हाँ, 1 मिलियन ऊपर जाएगा. पहले 4 मिलियन आता था फिर विकनर.
4: 2 मिलियन से भी शुरू होता था ना पहले तो. नहीं
6: ना, नहीं नहीं नहीं.
4: अच्छा,
6: 2 मिलियन से लोटो शुरू होता है.
4: पावरबॉल है. हाँ, सही है, सही है. जस्ट शोज कितना हमको नॉलेज है ये सब चीज को लेकर. आप करते हो ना, आप हर हफ्ते पार्टिसिपेट करते हो?
6: नहीं, मैं लेता हूँ एवरी वीक. ट्राई तो लगना, ट्राई लगता है उस तरह से. नहीं घुमाता है.
4: आप शेयर करोगे क्या अगर आपको 23 मिलियन मिल लग गया अभी, तो आप हमें देंगे, दोगे क्या 1 मिलियन?
6: पहले तो जितना सोचे उतना भर दो ना.
4: अच्छा.
5: पहले अपना काम तो कर ले वो. पहले ही हमें मिलेगा क्या?
6: जहाँ जहाँ डोनेट करना है डोनेट कर दो ना.
4: कहाँ कहाँ डोनेट करोगे आप?
6: ज्यादा करके ब्लाइंड सोसाइटी, डिसेबल चिल्ड्रन.
4: राइट राइट. अगर आपके मन में ऐसा होता है ना कि आपको टॉकिंग सोसाइटी के लिए डोनेट करना है, तो सैंडी और रुज़बे को याद रखें, हम बहुत बात करते हैं.
6: रेडियो स्टेशन के विजय वर्मा के भी खुद देंगे ना.
4: विजय वर्मा को भी देंगे. सही है.
5: ये देखो आप, तुम्हारा नाम उसके भी बाद है अभी. रुज़बे रुक जाओ ना, उनकी लिस्ट अभी बहुत लंबी है.
4: अरे बट कोशिश करना तो मेरा कर्तव्य है ना. मैं कोशिश ही नहीं करूंगा.
6: राजा हरिश्चंद्र के नाम सुने थे?
4: राजा हरिश्चंद्र वो है अभी भी?
6: हरिश्चंद्र.
4: अच्छा.
6: नहीं, राजा हरिश्चंद्र वाज़ द बिगेस्ट डोनर.
5: डोनेशन. या
6: करण के बाद में राजा हरिश्चंद्र होता है यार, कैसे है ना।
4: हाँ, राजा हरिश्चंद्र ऐसे हमेशा बोलते हैं ना कि ये तो बड़ा राजा हरिश्चंद्र निकला। मेरे को बचपन से लोग बोलते थे कि तू तो बड़ा राजा हरिश्चंद्र है, पर मैं तो मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही हूँ मैं तो। अगर आप हाँ देखो, अपना केस हमेशा हमें आगे रखना चाहिए जय भाई, क्या बोलते हो? सही बोल रहे हो ना?
6: ओके जी, आ गया घर पे।
4: अच्छा, हो गया घर पे आ गए।
6: बोलो
5: थैंक यू। ओके बाय,
4: थैंक यू जय भाई,
5: पहुंच गया मैं।
4: थैंक यू यार कॉल करने के लिए।
5: इन्होंने भी वही किया जो मैक्सिमम लोग ड्राइविंग टाइम करते हैं, फोन करते किसी से बात करते फिर कहते चलो आ गए घर बाय।
4: हाँ यार, कितनी बार ऐसे होता है ना।
5: एग्जैक्टली इन्होंने वो किया अभी।
4: कितना यूज्ड फील होता है ना फिर हमें। हाय, आपका भी स्वागत है।
7: हाय, कैसे हो दोनों?
4: आप कैसे हो?
7: ठीक हूँ। प्रे करो तुम दोनों के मुझे मिल जाए। लो
4: कितना मिलेगा हमको?
7: तुमको क्या, मैं खरीद लूंगी ना वो रेडियो स्टेशन।
5: मुझे लगा कि काम तो मैं खरीद लूंगी।
4: खरीद लोगे हमें?
5: ऐसा साउंड हुआ।
4: हम जिस हिसाब से हम यहाँ पे
5: तुम्हें
4: अभी
5: बेकाम होगी। नहीं,
7: नहीं, हम जिस तुम्हें ही चाहती हूं।
4: हम जिस हिसाब से मांग रहे पैसे, मेरे को लग रहा है हम खुद ही हमको खुद को बेच रहे हैं यहाँ पे।
5: फिर वो बोलेगी ये बोलो ये गाओ सब
4: नाच
5: नाच भी।
7: मैं बोलूंगी ये बात करो नाच दन्नो नाच बसंती।
5: धनो को नचाओ तुम। हाँ
7: बसंती नाच, मैं ऐसे बोलूंगी रोज फोन करके।
4: नाइस,
7: वो भी बोरुस देखो, नॉट सैंडी।
5: अच्छा, मुझे नहीं बोलो
7: सैंडी तू, वो हंटर ले हाथ में और
5: क्या थे नाज। हम तुम्हें लगता है अभी प्रे करेंगे कि तुम लोटो जीतो।
4: आप तो करोगे ना, क्योंकि आपके हाथ में हंटर है। मैं दुआ करूंगा।
7: नहीं नहीं, मेरा हंटर मैं इसको दे दूंगी ना, सैंडी को। मैं तो पैसे फेंकूंगी ऐसे करके।
4: वही वही। हाँ
5: सही है, सही है, सही जा रही हो थे नाज।
7: मूवी में दिखाते हिंदी विलन बन के आऊंगी, पान मुंह में लेके और फिर ऐसे ऐसे पैसे फेंकूंगी मैं
4: आपको। एक्चुअली मालूम है कि आई डोंट माइंड, एज लॉन्ग एज आप अच्छे पैसे फेंक रहे हो मेरे को।
5: क्या यार,
7: पिल्लर पिल्लर फेंकूंगी कॉइन।
4: या बिकॉज मैं
5: अभी अभी किसी की आईज में ऐसा इज्जत बन रही होगी और तुमने साथ ही बोला I don't mind.
4: No, no. Because at the end of the day, हम लोग अभी बात कर रहे थे तीन बजे के आसपास। मैं खुद को एंटरटेनर कंसिडर करता हूँ एंड दैट इज पार्ट ऑफ, अगर मेरे को आपको एंटरटेन करने के लिए अगर पैसे मिल रहे हैं वाई नॉट ना, एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं।
7: तो मिलेगा, अगर मैं तुम्हें 1 million शेयर करूंगी तो कल से मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देगी ना।
4: गुड पॉइंट,
7: वो भी मुश्किल है ना।
4: नहीं नहीं, आप वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे से साइन करवा लेना कि हाँ स्टेशन खरीद लो आप, बेस्ट है ये। मैं को
5: सही है, ये आइडिया अच्छा है।
4: हाँ
7: है ना,
4: तो 60 million के लिए रुकना पड़ेगा उसके लिए, मेरे को लग रहा है।
7: नहीं मैं वो हम असम वाला पार्ट खरीदूंगी ना, पूरा थोड़ी वो तुम्हारा वो पूरा स्टेशन नहीं खरीदूंगी, खाली हम एफएम के शेयर।
4: आपको हम सस्ता लग रहा है क्या?
5: हाँ, क्या लगता है तुम्हें देना?
4: हम गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि स्टेशन सस्ता है।
5: हाँ।
4: हम ही गरीब है।
5: पैकेज डील है ये।
7: खरीदूंगी तो शेयर होल्डर हो जाऊंगी ना मैं भी। आई विल बी द पार्ट ऑफ द रेडियो स्टेशन जो बड़ा तुम लोग का, क्या नाम है उसका, आई फॉरगॉट,
5: मीडिया वर्ल्ड।
7: हां मीडिया वर्ल्ड की मैं एक पार्ट बन जाऊंगी ना।
4: आज आप डिनर में कुछ नहीं खाओगे ना? क्योंकि ख्याली पुलाव तो पका लिया आपने भाई।
5: It's called manifestation, Rizvi.
4: Nice, nice. Okay. Tanaz, thanks so much for your call.
7: Okay, thank you. Bye.
5: Thank you. Bye.
4: Bye. तो सैंडी और तनाज के ऊपर ये गाना सोनू निगम ने गाया है, एंजॉय कीजिए ऑन हम। If you are wondering, ये सैंडी और तनाज के ऊपर क्यों फीचर्ड है, क्योंकि गाने का टाइटल है दो दीवाने शहर में।

0: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Accurate traffic.
2: Milwaukee pack-out redemptions.
3: Light rain overnight for Auckland, a low of 13. On the northern, it's heavy in both directions around Oniwa Road. The northwestern is slow from Waterview to Te Atatū. On the southern, heavy northbound from East Tamaki Road to Green Lane and heading south from Newmarket to Mount Wellington. All lanes open again now on the southwestern heading north, but it's slow from Cavendish Drive to Mangere Bridge after that crash earlier on.
2: Don't miss the Milwaukee pack-out redemption offers. Available until the end of August. T's and C's apply.
4: Kya baat hai? उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए। Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए।
5: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
6: Please use your imagination for the following ad.
7: If I won Powerball, I'd book my family a trip to... And I'd stay right here with my new...
6: Imagine winning $23 million this Saturday. Play in store or online.
8: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
0: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe.
9: Power Drive at 5.
10: Brought to you by Focus Kitchens, quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
11: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Power Drive at 5. Aapke liye jaari hai abhi. And aaj humne already $500 giveaway kiye hai.
12: Yes.
11: दो विनर्स
12: आज हमने यहाँ पे अनाउंस किए फॉर रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू विनर अश्विन एंड ईशु
11: एंड नाउ इज द चांस
12: एंड कोमल
11: एंड कोमल एज वेल. सोशल मीडिया पे उन्होंने जीता. अब आपको मौका मिल रहा है टू पार्टिसिपेट टू विन अनदर $500 फादर्स डे कॉम्पिटिशन में. सो फादर्स इन द हाउस मेक सम नॉइज एंड गिव अस अ कॉल ओवर 0800-004-866 इस नंबर पे.
12: दो कॉम्पिटिशन है आपके लिए, एक सोशल मीडिया पे, एक ऑन एयर. अभी कॉल कीजिए आप यहाँ पे 0800-00 हम पर. सवाल कुछ पूछे जाएंगे आजकल की लैंग्वेज के, स्लैंग्स के, देखते हैं कि आपको कितना पता है. एंड बाय द टाइम आप नंबर डायल कर रहे हैं, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे हमने डैड्स AI अपग्रेड ये चैलेंज भी शुरू किया है. सो AI जनरेटेड एक फ़ोटो हमने डैड की डाली है, उन्हें एज अ सुपर हीरो दिखाया है वहाँ पे, डूइंग मल्टीपल जॉब्स. सो अगर यू नो आप अपने डैड की फ़ोटो वहाँ पे पोस्ट करना चाहते हैं, उनको एक AI जनरेटेड सुपर हीरो फ़ोटो में कन्वर्ट कीजिए एंड पोस्ट द फोटो इन द कमेंट सेक्शन उस कॉम्पिटिशन पोस्ट में. एंड टैग योर डैड अगर वो सोशल मीडिया पे है एंड गेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू लाइक योर डैड्स फोटो एंड द कॉम्पिटिशन पोस्ट एज वेल. सो जितनी भी एंट्रीज हैं हु मेट द ऑल रिक्वायरमेंट्स जो कि आपको कैप्शन में डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे पोस्ट में सबका सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. यू आर इन द ड्रॉ टू विन $300 कैश. विनर की अनाउंसमेंट नेक्स्ट फ्राइडे को होने वाली है 4 सितंबर को. टर्म्स एंड कंडीशन हमारे सोशल मीडिया पे है एंड ऑल्सो ऑन hum.rover.nz.
11: तो अभी आप यहाँ पे कॉल कीजिए. फादर्स नीड टू कॉल क्योंकि $500 आपके नाम यहाँ पे हो सकते हैं एंड यू ऑल्सो गेट अ चांस टू फ्लॉन्ट योर जेन अल्फा जेन जी जो भी यू नो दैट नॉलेज. क्योंकि हम आपको ना ऐसे नए टर्म्स कुछ तो भी ऐसे पूछेंगे और फिर आपको बताना है कि उन टर्म्स का एक्चुअली में मतलब है क्या. देखो अगर आपको आंसर नहीं भी पता तो भी हम आपका नाम ड्रॉ में शामिल कर देते बिकॉज वी आर नाइस दैट वे एंड वी वॉन्ट यू टू विन. एंड प्लस आपको इससे फिर थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा ना कि इसका एक्चुअली में मतलब है क्या.
12: या बाय द वे रुज़बे, जो कल न्यूज़ हमने पढ़ी थी ना साउथ ऑकलैंड की, टू पीपल जिनकी दो लोगों की बॉडी मिली थी, सो दे वर शॉट. या न्यूज़ आई है अगर आपने मिस आउट की है. सो मैन इन कस्टडी स्पीकिंग विद पुलिस आफ्टर टू पीपल वर फाउंड डेड इस इन अ सस्पेक्टेड डबल होमिसाइड. एक्चुअली में साउथ ऑकलैंड में ये इंसिडेंट हुआ था, कल दोपहर को ये इंसिडेंट हुआ था एंड दैट्स अ रीज़न कि स्कूल्स को लॉकडाउन किया गया था बिकॉज उस समय पर कन्फ्यूजन बहुत थी कि स्कूल्स को लॉकडाउन क्यों कर दिया.
11: रिस्क हो गया था ना.
12: रिस्क हो गया था एग्जैक्टली. सो दैट और क्या होता है कि यहाँ पे पुलिस काफ़ी इन्फॉर्मेशन काफ़ी देर तक रिवील नहीं करती है टू मीडिया एंड टू एवरीवन अराउंड जब तक ज़रूरत नहीं होती.
11: यू नो एक्चुअली काफ़ी ऑफिसर्स में अभी आजकल देखो फायर ड्रिल तो होता ही है ना. लेकिन दूसरी एक और चीज़ अभी जो होती है प्रैक्टिस वो होती है लॉकडाउन. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके बाहर कुछ ऐसी हो गई चीज़ें और आपको ऑफिस लॉकडाउन करना पड़े आपका, तो उसके भी काफ़ी ड्रिल्स होते हैं, उसके भी काफ़ी प्रैक्टिस होती है. तो आपने अगर आप आपके ऑफिस में यू नो इफ यू आर इन चार्ज सो यू शुड आल्सो चेक आउट एटलीस्ट कि क्या क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, कैसे उसको फॉलो करना होता है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब जानना. एंड हैविंग सेड दैट हम जब घर में रहते हैं तो हमें भी ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए.
12: आई थिंक फैमिली मेम्बर्स के साथ ये कन्वर्सेशन कई बार करनी चाहिए कि कैसे होता है, स्पेशली अगर आपके घर में एल्डरलीज एंड बच्चे हैं
11: तो क्या करना चाहिए, कैसे लॉक करना चाहिए सारी चीज़ें. एंड विद दैट कुछ सप्लाईज घर में भी होने चाहिए, मतलब हमेशा सम थिंग्स लाइक योर यू नो व्हाट इज इट कॉल्ड, वो एक होता था ना हम लोग बोलते थे योर किट.
12: एक किट होती है जो वैसे अर्थक्वेक के टाइम के लिए वो बनी होती है,
11: कोई भी नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे,
12: जिसमें कुछ कैन फूड होता है, नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स उसमें होती है.
11: एक रेडियो होता है उसमें, बैटरी वाला रेडियो होता है, टॉर्च होता है,
12: टॉर्च बैटरीज होती है उसमें, एंड देन कुछ कैन फूड उसमें होता है,
11: पावर बैंक रख सकते हो आप चार्ज्ड.
12: या सो ऐसी चीज़ें होती है जो कि रेगुलरली, जैसे अपने घर पे आप फायर अलार्म चेक करते हो ना, वैसे ही रेगुलरली आपको ये किट हमेशा चेक करनी चाहिए.
13: Hollywood's most wanted. गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ. मैं लाऊं अपना A game.
14: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Selling the Pat Turners.
1: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. साथ ही $2,000 की हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेज पर पाइए फ्री गोल्ड कॉइन प्लस हैव ओल्ड गोल्ड ऑफ 18 कैरेट और मोर तो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कीजिए हरी विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट बॉटनी टाउन सेंटर ऑकलैंड
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के
3: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercenter, Cavendish Drive, Manukau.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
6: Are you ready to go home?
7: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe.
8: Let's go.
9: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZ PMI, your

0: Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: It's time for throwback. वैसे throwback से पहले Sandy, what is happening on in trendmakers today? आज 6 बजे से 7 बजे के बीच.
2: Trendmakers में आज हम आपके साथ आज की शाम सेलिब्रेट करने वाले हैं.
1: क्या बात है यार Sandy, मैंने पिछले फ्राइडे, आप नहीं थे ना पिछले फ्राइडे?
2: नहीं.
1: पिछले थर्सडे फ्राइडे नहीं थे आप थे कि थर्सडे नहीं थे?
2: मैं मंडे को नहीं थी.
1: ये मंडे को नहीं थे?
2: या, ये मंडे को नहीं थी.
1: और मंडे को मैंने बजाए थे सावन टाइप के गाने.
2: या,
1: ना
2: या.
1: अभी आज शाम वाले गाने
2: सावन से शुरू किया और शाम पे एंड कर रहे हैं.
1: क्या बात है यार.
2: सो आज शाम को डेडिकेट कुछ गाने हैं और आज ना आप एक ऐसा मिक्स सुनने वाले हैं, आपको मजा आएगा सुन के, बिकॉज दिस विल बी अ नॉन स्टॉप काइंड ऑफ इवनिंग सनसेट मिक्स. इट्स अ सनसेट मिक्स ऑफ 30 मिनट्स बिटवीन 6 to 7. सो कुछ शाम के गाने हैं और वो जो सनसेट मिक्स है उसमें कुछ ऐसे गाने हैं जो कि आपको मजा आएगा सनसेट के टाइम, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, यू गोना जस्ट एंजॉय दी सॉन्ग्स.
1: दैट्स राइट. तो आज बेसिकली अगर हम कहें तो आज हम सुनील शेट्टी को शाउट आउट दे रहे हैं.
2: कैसे?
1: अरे शाम रे.
2: It was a good one though.
1: Yeah, अच्छा था ये.
2: After a long time, it was a good one.
1: After a long time, excuse me.
2: Yeah, man.
1: अच्छा.
2: But yeah, साथ ही साथ अपने podcast के बारे में भी आपको याद दिला दे. We have recorded a very nice और बहुत ही insightful episode एक हमने record किया है about a documentary. So यहाँ पे हमारी community के कुछ लोग जैसे 100 years ago, more than 100 years I will say ago, जब यहाँ पे पहुँचे New Zealand में आए.
1: 1860 ना.
2: 1840s. Yeah, उस समय पर जब वो यहाँ पे आए, वो कैसे सेटल हुए यहाँ पे. यू नो न्यूजीलैंड के बारे में अगर आपने कुछ साल पहले ही आपको रियलाइज हुआ कि यहाँ पे भी जा सकते हैं, बट इमेजिन कितने साल पहले किसी को रियलाइजेशन थी कि वो यहाँ पे आ सकते हैं. लेकिन यहाँ पे आने का कारण क्या हुआ था, क्यों आए थे, कैसे सेटल हुए यहाँ पे, कैसे उन्होंने माओरी कल्चर को एक्सेप्ट किया और इंक्लूसिव हुए, इतने इंक्लूसिव हो गए कि यहाँ का न्यूजीलैंड का एक टाउन है जो कि इंडियन वेडिंग के लिए बंद कर दिया जाता है. इंडियन वेडिंग बारात निकलती है, बैंड बाजा बारात जो होती है ना, 150 साल पहले ऐसा हुआ था न्यूजीलैंड में गाइस, कि बारात निकलती है और टाउन को बंद कर दिया जाता है टू सेलिब्रेट इट. सो ये वही न्यूजीलैंड के बारे में यहाँ पे जो हम रह रहे हैं.
1: ऑल्सो एक स्टेडियम है, एक स्टेडियम, एक स्टैंड है जो नाम जो एक इंडियन के नाम पे है.
2: इंडियन के नाम है यार. एक फार्म का नाम हिंदू फार्म है, ये तो मुझे नहीं पता.
1: हिंदू फार्म भी है. यस
2: यार, आई हैड नो आइडिया कि उस समय पर जो आए थे उन्होंने एक फार्म बनाया था
1: डॉक्यूमेंट्री
2: हिंदुस्तान के नाम पे. हिंदू फार्म बनाया था.
1: एक डॉक्यूमेंट्री है जो है पंजाब टू आओतेरवा, अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, बहुत ही बढ़िया ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है.
2: लेकिन हमारे पॉडकास्ट में इन्होंने ना वो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने कैसे बनाई है वो सब कुछ उन्होंने शेयर किया है. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है अबाउट सम पीपल हु वांटेड टू गो बैक बट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट गो बैक उस समय पर. एंड और उनकी जो फैमिलीज है अभी लाइक मिक्स फैमिलीज है, देर वॉज दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो उन्होंने पॉडकास्ट में बताई है, जहाँ पे दे टॉक्ड अबाउट दिस फैमिली, जहाँ पे एक ही वो बंदा था जो कि पंजाब से आया, बाद में माओरी कल्चर में उसकी शादी हुई, बाकी सब यू नो आगे जनरेशन यहीं की है.
1: और उन्होंने लास्ट नेम सिंह रखा है अभी भी.
2: लास्ट नेम सबका सिंह है अभी तक.
1: तो वो माओरी है लेकिन उनका लास्ट नेम सिंह है.
2: Yeah.
1: So, you know, there are such interesting stories in the documentary and also some, behind the scenes gupshup in the podcast.
2: Yeah.
1: So, I think it is so.
2: Or, us documentary se what we take away wo bahut important hai.
1: Ji. So, definitely you should check it out and do give us your feedback. Aapko kaisa laga? Ye hume zarur aap batayega. But, abhi ke liye throwback mein aapko hum sunane wale hai Shah Rukh Khan ki movie ka ye gana. Chalte chalte, is movie ka ye gana hai. Udit Narayan ne gaya hai along with Alka Yagnik.

0: ऐसे शाम है, सुहाना मौसम है, जो भी है यू नो, ऐसे टाइप के गाने आपको सुनाएंगे. आप बताइए कि ऐसे शाम के जब गाने आते हैं, इवनिंग्स जब ऐसे गाने आते हैं, सो आपके जहन में कौन से गाने आते हैं? आप यहाँ पे हमें मैसेज करके बता सकते हो.
1: तो मैसेज कीजिए 5599 इज अ नंबर जहाँ पे इवनिंग के समय पर कैसे गाने आपके जहन में आते हैं, यू नो, इवनिंग को रिलेटेड, सनसेट को रिलेटेड, तो क्या गाने आपके माइंड में आते हैं? 5599 इज अ नंबर जहाँ पे मैसेज करके आप यहाँ पे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं.
0: जी वैसे शुरुआत करना चाहते हैं ये बहुत ही लवली गाने के साथ, बिकॉज आई थिंक जब भी हम शाम की बात करें और शानदार की बात करें
1: तो ये गाना बनता है.
0: तो ये गाना बनता है क्योंकि गाने का टाइटल ही है ना. अमित त्रिवेदी ने गाया इस गाने को, एक बहुत ही सॉलिड ये गाना है.
1: म्यूजिक बहुत सही है इसका.
0: आई जस्ट लव दिस म्यूजिक. सो यस, यू गॉट इट राइट. बोनस पॉइंट्स फॉर गेसिंग द सॉन्ग नेम. इट्स शाम शानदार.
2: सर झुक

0: आज आप तशरीफ ले गए, मुलाकात हो गई आपसे।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
3: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
2: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
3: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
4: To get the best value from your mechanic, bringing it into Midas stops a lot of confusing thoughts like, should you ask AI first? Offer a contra deal?
5: You don't need your toilets cleaned, do you?
4: Find a cheaper mechanic in Invercargill? Pretend you know what they're talking about?
6: Pretty sure the carbonara's playing up.
4: Pray, plead, sob, beg, bargain. So save the mental gymnastics and bring it into Midas for straight answers and mates rates prices. Midas, for peace of mind motoring.
7: At Bunnings, give Dad the gift of the whole warehouse this Father's Day. Whatever type of dad he is, from tool dad to barbecue dad, he'll find something he really wants with our wide range. Gift cards built for Dad at Bunnings. Available in-store and online. Bunnings
8: Warehouse. When winter comes, colds and flu follow, and NZ Blood needs blood and plasma donors more than ever. So if you're well enough, please book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
9: Elite Bathroomware help you create a bathroom you'll love.
10: With a huge range of vanities, tapware, showers and baths, Elite Bathroomware makes it easy to compare, choose and customise.
9: The team's there to help with plenty of options to suit your bathroom space, your style and your budget.
10: For quality that fits the way you live, browse online or visit the spectacular Allens Road East Tamaki showroom. It's worth the visit.
9: Elite Bathroomware.
10: A reflection of you.
11: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
12: मुझे भी।
11: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
13: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe.
14: You're listening to Trendmakers. आज शाम भरे गाने आपको हम सुना रहे हैं और अभी जो नेक्स्ट गाना आपको सुनाने वाले हैं ये मोहम्मद फैज ने गाया हुआ गाना है। मोहम्मद फैज एक्चुअली हमारे सुपर सिटी में आके गए एक बार और बहुत लोगों ने पसंद किया उन्हें।
15: बहुत ही अच्छा शो उन्होंने किया था, पहला शो उन्होंने किया था यहाँ पे, लेकिन बहुत ही अच्छा शो था। साथ ही साथ इस हम आपके साथ रिकमेंडेशंस भी शेयर करते हैं ओवर द वीकेंड।
14: क्या फ्राइडे ऑलरेडी? सैंडी, दिस वीक इज फ्लोन बाय यार,
15: वेरी फास्ट,
14: समझ ही नहीं आया कि कब फ्राइडे आ गया। और क्या है प्लान, क्या है वीकेंड का, कुछ है क्या प्लान? ये बार वीकेंड बहुत ठंडा है यार।
15: ऐसा क्या
14: मतलब ठंडा, मतलब नॉट ठंडा एज इन बट बारिश वारिश है ना?
15: हाँ वही मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा बहुत ज्यादा है क्या बारिश?
14: बारिश है मतलब दिखा रहा तो है फोरकास्ट।
15: मेरे को लगता है कि अभी हम यूज्ड टू हो चुके हैं, अगर हमें कुछ प्लानिंग करनी होती है वो एनीवे प्लान अबाउट इट।
14: दैट्स राइट।
15: सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं नेटफ्लिक्स पे भी एंड बाकी OTT प्लेटफॉर्म पे भी जो आप जाके देख सकते हैं। मैंने एक मूवी देखी है, अगर आपको ओल्ड क्लासिक्स देखने का कभी मज़ा आता है, डेड अगेन इस मूवी का नाम है, जहाँ पे एक लेडी जो है वो उसकी याददाश्त नहीं है और वो एक सपना बार बार ले रही है जिसे वो डरती है। तो उसके पास एक इन्वेस्टिगेटर आता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है एंड ही फॉल्स फॉर हर एज वेल।
14: अच्छा।
15: एंड इट्स अ क्लासिक मूवी, तो आप जरूर, 90s की मूवी है ये, हॉलीवुड की 1991 की मूवी है। एंड देन एक वो नहीं होता जो हिप्नोटाइज करते हैं, तो वो बंदा आता है एंड उसको हिप्नोटाइज करके उसका पास जाने की कोशिश करता है एंड वहां से थ्रिलर शुरू होता है मूवी में.
14: ओह नो.
15: या सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. डेड अगेन इस मूवी का नाम है. सो कभी टाइम मिले ये भी आप देख सकते हैं. आई विल ऑल्सो तुमने एक और मूवी आई है यार मेरे को लगता है नॉट मुसाफिर कैफे कॉकटेल 2 तो मैंने देखी है. आई कैन रिकमेंड. It's a one-time good watch.
14: मैं ऑपरेशन सफेद सागर देख रहा हूँ अभी.
15: ओह या कैसी है वो?
14: बहुत सही है यार.
15: या उसकी मैंने काफी तारीफ सुनी है.
14: लंबे लंबे एपिसोड है. एंड में राजू श्रीवास्तव को लोग वो देते मतलब एक्नॉलेज करते हैं. एंड मैंने कहीं तो भी देखा था कोई रील या कुछ देखा था कि व्हाई यू नो राजू श्रीवास्तव गेट्स एक्नॉलेज्ड एट द एंड ऑफ एवरी एपिसोड. तो मेरे को पता नहीं उसका रीजन क्या है बट या इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग.
15: ओके मे बी हो सकता है कुछ उन्होंने डायलॉग्स लिखे हो या कुछ ऐसा.
14: नहीं राजू श्रीवास्तव यार वो
15: ओके द कॉमेडियन. ओके ओके
14: बट मे बी
15: समथिंग रिलेटेड टू हिम.
14: पता नहीं देखना पड़ेगा वो डिटेल में. अगर आपको पता है रीजन तो जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ यहाँ पे ड्राइव कीवर्ड के साथ. बट या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउ दैट शो गोज. एंड एक और मूवी है जो नेटफ्लिक्स पे भी है आई थिंक वॉर. वो एक डॉग के बारे में.
15: वॉर
14: हाँ पुरानी मूवी है वो.
15: ओके
14: एक और नई मूवी भी आ रही है
15: डॉग. सेवन डॉग्स भी है ना.
14: सेवन डॉग्स ने एक ये है ना डॉग के बारे में कि ये डॉग होता है. यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ दो मूवीज में क्योंकि एक मूवी का ट्रेलर भी हमने देखा है. मतलब एक नई मूवी आ रही है जिसमें वो वॉर डॉग होता है जो अब इस हीरो के साथ घूमता है हर जगह.
15: ओके
14: एंड वो उनके बीच में एडवेंचर. बट वो नई मूवी है. वो नई मूवी न्यू मूवी आने वाली है बट एक पुरानी मूवी भी ऐसी है. तो डॉग्स के अराउंड मैं मूवीज देखने वाला हूँ इस वीकेंड.
15: ओह वाओ इंटरेस्टिंग. सो आल्सो मेघना गुलजार का एक अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है दायरा इस मूवी का नाम है जिसमें करीना कपूर को हम देखने वाले हैं.
14: वाओ
15: या सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग.
14: सो लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग इन बॉलीवुड. और भी अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे. एंजॉय कीजिए अभी के लिए ये मोहम्मद फैज की आवाज में ब्यूटीफुल सॉन्ग.

0: Ian Rusbay, brought to you by Beds R Us Monaco and Phuket, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Phuket.
1: We gotta go. Are you ready?
2: Come and take a trip with me.
3: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight HUM 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special HUM boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
0: HUM boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
4: Let's go.
0: Visit flysolomons.com. T's and C's apply. HUM. Accurate traffic.
4: Need a mortgage? Get Buddy.
5: Light rain overnight for Auckland, a low of 13. On the northern, it's snow southbound through Constellation Drive to Sunny Nook and from Esmond Road to the Harbour Bridge. On the northwestern, all clear now. The southern is a bit slow heading north still from Highbrook Drive to Green Lane. And the southwestern is slow northbound from Puhinui Road to Mangere Bridge after that earlier crash.
4: For expert mortgage advice without the stress, start with Buddy. Call 0800 Buddy M.
6: सुनो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी
7: हाँ मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें
6: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉलिसी बात कीजिए मेरे दोस्त ने भी की थी अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए अब रेंट भी आ रहा है
7: पर डेवलपमेंट के पैसे
6: आपको नहीं लगाने NZPMI सब संभाल लेगा NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800 4NZPMI
8: At Bunnings, we've got Father's Day sorted. Jumbuck 3-piece barbecue tool set, only $10.20. Trojan 33-piece keyring compact toolkit, just $45.98. Make Dad's Day at Bunnings.
9: Bunnings Warehouse.
8: Lowest prices are just the beginning.
10: At Spotlight, save a massive 20 to 50% off store-wide, including Manchester Home Decor, Fabric Craft, Knitting Yarn, Party Curtains and Blinds. Yes, that's 20 to 50% off store-wide. Sale on now. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full-price products. Excludes clearance. See website for details.
3: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं. पिछले 28 सालों से Asian Family Services New Zealand में Asian communities को उनकी भाषा में mental health, addiction, gambling और social support provide करता आ रहा है. अब शुरू हो रहा है Reach In, Reach Out. एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट
11: Mike here from Novus Glass. At Novus, we can handle your insurance claim. So what does that actually mean? It means one phone call to your local branch. It means that as a preferred supplier to insurance companies, we know the process. It means getting on with the rest of your day whilst we sort your insurance and your vehicle. Plus, every time you choose Novus, you're helping plant native trees. So as soon as you notice it, Novus it. Just contact your local Novus Glass branch direct.
12: Show us your crack.
13: Ah, Novus!
14: बूढ़ा हो गया हूँ माते घर ढूंढते ढूंढते
15: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा
16: अब हमारा क्या होगा
17: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना फालतू की बातों से बचना
15: तो क्या करें
3: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
0: Drive Show with Sandy and Rusbay, brought to you by Beds R Us Monaco and Phuket, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Phuket.
18: Let's go! 3, 2, 1.
19: Trend makers.
20: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. वैसे अभी हम आपको जो track सुनाने वाले हैं, ये बहुत ही beautiful vibe में आपको ले जाएगा. बहुत रेयरली ऐसा होता है कि 6-7 के बीच आप लगातार नॉन स्टॉप सिर्फ म्यूजिक सुन रहे हैं.
9: बट वी आर गिविंग यू अ टेस्ट कि फ्राइडे मिक्सेस एंड सैटरडे मिक्सेस आपके लिए कैसे होते हैं. जैसे कल हमने आपको बताया संडे नाइट कैसे होता है
20: जी.
9: आज हम आपको थोड़ा टेस्ट दे रहे हैं कि यू नो हमारे फ्राइडे नाइट्स एंड सैटरडे नाइट्स में कैसे मिक्सेस आप सुन सकते हैं. सो अपने घर में जब आप गेट टुगेदर करते हैं, पार्टीज करते हैं, तो आप कभी भी सैटरडे नाइट फ्राइडे नाइट ट्यून इन कर सकते हैं सो दैट ये मिक्सेस आपके लिए प्ले हो रहे हैं. सो इसी के साथ साथ कम्युनिटी में बहुत कुछ हो रहा है. रुजबे रामकृष्ण मंदिर जो है वो इनवाइट कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए 29 अगस्त से फ्राइडे 4 सितंबर तक. वहाँ पे शाम को इवन दिव्या शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव जो है ये कल से फ्राइडे 4 सितंबर तक सेलिब्रेट किया जाएगा.
20: ये कृष्ण जन्माष्टमी आ गया यार, मतलब ये तो वो होता है ना दहीहंडी, आपको पता है?
9: या मुझे पता है
20: वो ऊपर से चढ़ यार यहाँ पे अगर कोई कर रहा है ये चीज तो बताइए यार. वो बचपन से हाइट का बहुत डर था.
9: तुमने देखा है क्या?
20: मैंने देखा बहुत है.
9: ओके.
20: मैंने देखा बहुत है और मैं बहुत बहुत ऐसे फैसिनेट होता था वो देखने के लिए भी. तो मुझे बहुत पसंद है वो. तो यहाँ पे अगर कोई कर रहा है बट यहाँ पे मुझे नहीं पता हेल्थ एंड सेफ्टी अलाउ करता भी होगा कि नहीं.
9: हाँ, वो भी चक्कर आ जाता है ना न्यूज़ीलैंड.
20: अगर
9: में
20: आपको नहीं पता मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ तो हेलो ब्रदर मूवी देखिए. हेलो ब्रदर मूवी में उसको दिखाया है, दही अंडी को
9: दिखाया. वो चांदी की डाल
20: सोने का मोर, सोने का मोर ताक चाक ताक करे. क्या
9: पता नहीं, मोर समथिंग मोर.
20: हाँ, वो मेरे को भी एग्जैक्टली टर्म नहीं पता कौन सा मोर, लेकिन मोर है. बट एनीवे विद दैट सैंडी और क्या कहना चाहोगे वीकेंड के पहले?
9: या यही बता रही हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन ढेर जगह हो रही है तो आप भी इसका हिस्सा जरूर बन सकते हैं.
20: हनुमान मंदिर में भी हो रहा है सेलिब्रेशन.
9: या वहाँ पे भी हो रहा है. सनातन संगम संस्था भी इसकी सेलिब्रेशन कर रही है तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं. वुमेन केयर ट्रस्ट बिल्डिंग में वो करते हैं तो वहाँ पे आप जा सकते हैं.
20: अरे क्या बात है. तो चलो इसी बात पे अभी हम
9: आपको बाय बाय कहते हैं. आपसे मुलाकात होगी अब हमारी सोमवार को. मंडे को मुलाकात होगी 3 बजे कॉफी ब्रेक में. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड या अ वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू यू.
20: हैप्पी रक्षाबंधन. एंजॉय एंड हैव अ सेफ एंड अ वेरी वंडरफुल वीकेंड. बाय
9: बाय.

Sandy and Rizvi, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन

0: मेरे को देख के हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना मैं?
1: तू क्यों अच्छा लगेगा?
0: तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रही थी?
1: मैं तुझे देख नहीं रही थी, इसलिए तू कौरा बौरा हो रहा था ना।

में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
2: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
1: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
2: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
1: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
3: Craving ho rahi hai us thick aur creamy dahi ki jaise ghar par milti thi, to milwate hain aapko Kashish natural yogurt se, jiska har spoon hai ekdam delightful, 100% vegetarian, gelatin and gluten free, perfect hai smoothies banane ke liye, tangy dips banane ke liye, paneer ya chicken marinade karne ke liye ya bas seedha tab se khane ke liye, kyunki ye hai naturally delicious, always desi, available now at your favorite Indian supermarket across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish natural yogurt. Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein, plus free dental examinations for new and existing patients, free wins and ACC codes, or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
1: Winger Motors are your home of Cherry, jahan nahi

0: beat of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: We gotta go. Are you ready? Come and take a trip with me.
3: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
4: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
5: Let's go.
4: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ. बोली बस मेरा फोकस है.
7: हाँ. अच्छा
6: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
7: मिसेस सिंह.
5: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.in.
8: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
9: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया. मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया.
8: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
10: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
11: सो यू एंड द बॉयज हैव दैट माइल्डली इनअप्रोप्रिएट एक्चुअली वेरी इनअप्रोप्रिएट ग्रुप चैट. Maybe it's time to balance it out with a more appropriate group, like Blood Buddies, a group that donates blood and plasma together. This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever. Yours could save lots of lives. No joke, it gives you that warm feeling inside. And you get free biscuits. The boys love biscuits. Get your Blood Buddies together and book now at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge 10 kg front loader and heat pump dryer, sleek grey set, $11.99. Huge black stainless steel side by side fridge freezers, $6.99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. Trade Depot.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: Very acceleration. That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स।
2: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स।
2: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
3: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
3: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
2: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
4: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम। Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cash back or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
6: Hi, Kevin Eater here, TradeStaff. Everyone knows that TradeStaff have lots of jobs working outdoors on roading contracts and building sites. But in winter, working outside can be cold and wet. We also have heaps of inside jobs. TradeStaff has work available now in warehouses, factories and workshops. So for work inside this winter, 0508 40 40 40 or tradestaff.co.nz.
7: TradeStaff, industrial employment solution. TradeStaff.
8: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.

दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
0: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura J Crew.
4: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है. हाँ, अच्छा बताओ तुम्हारा फोकस साडा कुछ नहीं.
5: मिसेस सिंह,
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
0: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz. Playing Bollywood's biggest hits. Budget gaane.

0: Night Flight on Hum.
1: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
2: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
1: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
2: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
1: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
3: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
4: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
5: Join the Tribe!
4: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
5: join the Tribe!
6: चॉइस आपकी है एट विंगर मोटर्स। सेलेक्टेड नए ओमुडा और जेकू मॉडल्स पर पाइए

0: Flight on Hum.
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: बुरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m. Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
6: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
7: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner, sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities, all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
8: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाउ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है
4: हाँ. अच्छा
3: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
4: मिसेस सिंह
5: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने
1: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281 3050 और विजिट फोकस किचन.co.in.
6: Playing Bollywood's biggest hits.

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, BFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स।
2: सोना संसार पापा टोयोटा के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
3: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
2: सोना संसार पापा टोयोटा, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोयोटा।
4: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोयोटा। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
5: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
6: डिस्कवर द मैजिक एट गो बनानास चाइल्ड केयर, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे। विद 21 ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड हैमिल्टन, ये हमेशा आपके पास है। गो बनानास चाइल्ड केयर ब्रिंग्स यू अ क्रेजी ऑफर विद 6 months कम्प्लीटली फ्री एंड द फॉलोइंग 6 months 50% ऑफ ऑन फीस फॉर ऑल एजेस। ऑफर एंड्स 30th September, लिमिटेड स्पेसेस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। तो देर मत कीजिए, कॉल 0800 46 26 26 26 टुडे। टर्म्स एंड कंडीशंस supply.
7: Proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
8: Indelible Homes, your building expert.
9: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.

0: Saturday Breakfast on Hum. You're listening to Avineet.
1: Kia ora, bula, salam, namaste, sat sri akal. A very good morning. Main hu abhi aapke saath mein aur aa gaya hu jabki aaj hai Saturday, Shaniwar, 29th of August. Aise mein abhi se lekar 12 tak aapka saath dete rahenge. Lekin jabki it's just 1 minute after 6 aapka saath de raha hu aur raaste mein hain aap safar kar rahe hain ya fir aap videsh mein hame sun rahe hain Rova ke zariye. Welcome to the show. Aapka khaas swagat karte hain. Aaj ka jo din hai aapke liye bilkul ekdam successful rahe. Aap jis bhi काम के लिए निकले हो घर से अभी सुबह सुबह आपके लिए बिल्कुल अच्छा दिन गुजरे यही आपके लिए विश करते हैं और ऐसे में 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं आपका खास स्वागत करते हैं सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो में अभी का साथ है ढेर सारी बातें हैं आपके साथ में करने को और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स में क्या कुछ है आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है वेदर पर भी एक नज़र देखेंगे ये सभी कुछ आपके साथ में बस होता ही रहेगा क्योंकि ढेर सारी बातें लेकर आए हैं ढेर सारा प्यार लेकर आए हैं आपके साथ में बांटना है 5599 ये जो नंबर है यहाँ पर आप अपने मैसेज हमारे पास में भेज सकते हैं साथ में 0800004866 पर आप सुबह सुबह कॉल करके बातें भी कर सकते हैं ये सभी कुछ आपके साथ में रहेगा और हर एक नई सुबह की शुरुआत बिल्कुल एक नए मुसाफिर की तरह होना चाहिए ताकि आप भी अपने जो सफ़र में हैं निकल पड़े हैं एक नई तरीके से एक नए अंदाज से लाइफ को देखें

सरडे ब्रेकफास्ट शो है अभी के साथ में 104.2 एफएम साथ में रोवा पर, जबकि आज है 29 अगस्त। तो ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी जो उत्सव है इसकी भी शुरुआत आज से हो रही है, इसकी भी शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं। और इसके साथ में आपको बता दें आज का जो मौसम है कैसा रहेगा, खासकर ओकलैंड सीबीडी में बिल्कुल भीगा भीगा सा मौसम रहेगा, क्लाउड्स रहेंगे आपके इर्द गिर्द आज पूरे दिन भर, बस यही फोरकास्ट है। फ्यू शावर्स हो सकते हैं जो बाद में चलकर हेवी रेनफॉल भी हो सकती है। इसके साथ में कहीं ना कहीं आपको राहत शाम को जाकर मिलेगी। और जबकि मैं पूरे के पूरे नॉर्थ आइलैंड में देख रहा था तो इसी तरह का जो वेदर है अनुमान लगाया गया है। काफ़ी सेंटर्स टाउन्स एंड सिटीज़ में बिल्कुल क्लाउडी मौसम रहेगा और बारिश होगी, खासकर ओकलैंड सीबीडी में। आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर दिन भर का आप 16 डिग्रीज तक महसूस करोगे। इसके साथ में सुबह की जो पहली किरण है इसी आवर पर 8:46 AM रहेगी इसके साथ में, और सनसेट 8:59 PM। तो जी हाँ, आपने भी कुछ प्लान किया है तो अपने डे को अकॉर्डिंगली प्लान कीजिएगा, क्योंकि इट्स फोरकास्टेड कि वेदर आज बिल्कुल बादलों से घिरे रहेंगे और साथ में इधर उधर बारिश भी हो सकती है, इसके पूरे के पूरे चांस है।

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूं अभी आपके साथ में। 6:20 हो रहे हैं। ऐसे में अगर जो समाचार की ओर देखें तो न्यूज़ में आपको बता दें, जो थर्सडे को जो वेटल डाउन्स में डबल होमोसाइड हुए थे, यहां पर अभी तक पुलिस का कहना है कि कोई ऐसी एविडेंस सामने नहीं आई है जिससे ये कह सके कि ये एक गैंग रिलेटेड इंसिडेंट है। और इस पर जो और इंक्वायरीज है, जानकारी है, ये इसे फाइंड आउट करने के लिए पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इसके साथ में एक और एक न्यूज़ जो सामने आ रही है और आपके साथ में शेयर कर ले कि एक प्रपोज बिल है जिसे तैयार किया जा रहा है, जहां पर अंडर 16 को न्यूजीलैंड में सोशल मीडिया से बैन कर सके। तो गवर्नमेंट ने एक प्रपोज बिल तैयार किया है और इस पर शायद आगे चलकर पार्लियामेंट में और भी बातें होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। लेकिन अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है कि ये यही है कि अंडर 16 को लेकर एक बिल तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, इनको बैन किया जाए सोशल मीडिया यूज़ करने से। और एक पार्ट ऑफ द बिल ये है कि कहीं ना कहीं सेक्शन 38 ये कहती है कि एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जहां पर लोगों को, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ये डायरेक्टिव दिया जा सकता है कि जितने भी लोग हैं उनको किसी एक सोशल मीडिया साइट से कोई भी एक्सेस उनको प्रोवाइड ना किया जाए। इन द सर्कमस्टांसेस कि कहीं पर अगर जो सोशल मीडिया साइट है वो न्यूजीलैंड के कानून को लेकर अपने प्लेटफॉर्म पर चेंजेस नहीं लाती है, तो यहाँ पर ये डायरेक्टिव दिया जाएगा सोशल जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स है कि ये एक्सेस को ब्लॉक करें। तो ये सभी कुछ बातें होंगी आने वाले दिनों पर, जिस पर और भी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए गुड मॉर्निंग अभी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग आपको भी क्वीन, आपने मैसेज कर दिया है एंड आपकी सुबह हो गई है। तो अगर जो आप भी जाग गए हैं और हमारा साथ दे रहे हैं तो 5599 पर आपके जो गुड मॉर्निंग के मैसेजेस है आप हमारे पास में भेज सकते हैं, ताकि भाई हमें भी पता लगे कि आप भी जागे हुए हैं और हमें आप सुन रहे हैं। आप हमारा साथ दे रहे हैं, यू आर कंपनिंग मी, जैसे कि मैं आपका साथ दे रहा हूँ।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड,
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
3: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
4: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
5: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
4: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
5: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
4: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
6: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
7: हेलो एवरीबॉडी।
3: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
8: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
3: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्वे, ओनली ऑन हम।
9: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
10: Indelible Homes, your building expert.
11: Say goodbye to winter.
12: Goodbye.
11: And hello to spring.
12: Hello.
11: This weekend at Risco's, with new season savings store-wide and half-price Manchester and electrical deals. Say goodbye winter.
12: Goodbye.
11: Hello spring.
12: Hello.
11: With fresh savings at Risco's, see online for T's and C's.
13: You filled the pinata before I sealed it, right?
14: No, you did.
13: Oh, I thought you did.
15: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. Participating North Island stores only. See online for T's and C's.
16: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
17: गोवा की गलियों में एक नया बच्चा जन्म ले रहा है। टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स, स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश, मयंक ताला, कियारा अडवाणी, तारा सुपारिया एंड हुमा कुरैशी।
18: हेलो डैडी।
17: टॉक्सिक now showing in cinemas.
12: It's time. I'm coming!
17: Distribution partner, Forum Films, rating TBC.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: That's right, यह सैटरडे ब्रेकफास्ट मॉर्निंग शो मैं हूँ आपके साथ में जबकि 29th ऑफ अगस्त है ऐसे में साथ देते रहेंगे आपका और वीकेंड है और लोग कई जगह पर जागे हुए हैं और निकल पड़े हैं कहीं अलग टाउन में आपको जाना है या फिर आपको अपने नौकरी पर जाना है तो आपका खास स्वागत करते हैं और अगर जो आपने मिस आउट कर दिया है जो फ्लैश फ्लडिंग नेपाल में हुए जो लेटेस्ट नंबर सामने आए हैं इट्स अ वरिंग 1924 पीपल आर मिसिंग इन नेपाल जहाँ पर जो रेस्क्यू मिशन है जारी है और इसके साथ साथ में आपको ये भी याद होगा कि इनमें से कुछ 5 न्यूजीलैंडर्स हैं जो अभी तक अनअकाउंटेड फॉर है तो यही प्रयास करेंगे कि जो लोग यहाँ पर पीड़ित हैं इनको जल्द से जल्द राहत मिल सके और जो मिसिंग लोग हैं ये भी जल्द से जल्द हमें मिल सके
0: The beat of Bollywood.
3: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो लेकर हाजिर हूँ मैं, अभी आपका साथ दे रहा हूँ, जबकि आज है 29th of August। तो ऐसे में कुछ लोग हैं जो बहुत ही खुशियों के साथ में कृष्ण जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करेंगे। तो आपके लिए खास कम्युनिटी मैसेज मैं आपको बता दूँ कहाँ कहाँ पर आप जाकर इस सेलिब्रेशन में भाग ले सकते हैं। दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट ये सेलिब्रेट करेगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव को आज 29th August से लेकर फ्राइडे 4th September तक एट द केव, जो कि सिचुएटेड है 5x57 कैवेंडिश ड्राइव मेनेकाओं में, बिल्कुल वेयर हाउस के ऑपोजिट। और हर इवनिंग 7:30 PM से जो प्रोग्राम है यहाँ पर स्टार्ट होगी। इसके साथ में रामकृष्ण मंदिर 25 Onslow Ave मेनेकाओ ये आपको इन्वाइट कर रहा है कि आप भी सेलिब्रेशन में आकर भाग ले, जो आज से शुरू हो रही है। सैटरडे 29th August से लेकर फ्राइडे 4th September तक यहाँ पर प्रोग्राम्स रहेंगी और यहाँ पर भी जो कथा है 7:30 PM से स्टार्ट होगी। और इस पर और भी जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन, बस थोड़ी देर में आपके साथ में बांटेंगे कि कौन कौन सी और जगह है जहाँ पर इस कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। मैं हूँ अभी आपके साथ में, हमारी आवाज़ आप तक आ रही है। 5599 इज़ द नंबर जहाँ पर आपके मैसेजेस आने चाहिए।

0: हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम.
2: That's right, ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो हम पर अभी के साथ में. और अगर जो आप अपना जन्मदिन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर आपके फैमिली में किसी की जन्मदिन है तो इसके बारे में आप हमारे पास में अपना जो मैसेज है भेज सकते हैं. और इसके अलावा आपकी शादी की सालगिरह है तो इसका भी जो खुशियां, इनकी जो खुशियां हैं ये भी आप अपने हैप्पी मोमेंट्स हमारे साथ में हम पर शेयर कर सकते हैं. बस 5599 पर मैसेज करिए और यहाँ से आपकी खुशियों में हम भी शामिल होते रहेंगे.

हम पर सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो लेकर मैं हूं अभी आपके साथ में, और जबकि 9 मिनट बाकी है 7 बजने में, ऐसे में जो आखिरी गाना है इस आवर का आपको सुनवाते हैं, और आपके जो गुड मॉर्निंग मैसेजेस है ना, ये आने बंद हो गए हैं। कोई बात नहीं, एक ही मैसेज आया है पहले आवर में, आई एम क्वाइट श्योर आप हमें सुन रहे हैं। 5599 पर अभी सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बड़े प्यार से ही लिख कर आप भेजने वाले हो।

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: We gotta go. Are you ready?
2: Come and take a trip with me.
3: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special Hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
4: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
5: Let's go.
4: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
6: What happens to your business once the sun goes down? If your signage fades into the dark, so do your opportunities. Speedy Signs designs illuminated signs and LED lettering that keep your brand visible long after closing time. When customers can see you clearly, they are more likely to stop, call, or come back. Stay bright, stay visible. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz.
7: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
8: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
9: अब हमारा क्या होगा?
10: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना।
8: तो क्या करें?
11: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
12: Proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
13: Indelible Homes, your building expert.
14: Playing Bollywood's biggest hits.
0: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
14: Saturday Breakfast on Hum.
0: You're listening to Avineet.
15: That's right, मैं हूँ अवि, keeping you company, जबकि हमारे स्टूडियोज में ठीक 7 बज रहे हैं सुबह के। ऐसे में a very good morning to you, आपका जो दिन है बिल्कुल बेहतर रहे आपके लिए, and may you conquer all that you set out to do so। तो ऐसे में जो दिन है आपके लिए बिल्कुल बढ़िया रहे, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं, एंड वीकेंड इज़ फाइनली हियर, जिसके लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं 5 दिन, और उसके बाद में तब कहीं जाकर वीकेंड आता है, वो भी कुछ सेलेक्टेड फ्यू के लिए, क्योंकि बाकी लोग तो हमारी तरह आज भी काम पर है, नौकरी कर रहे हैं या फिर सुबह सुबह निकल रहे हैं। ऐसे में आपको भी शामिल कर रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सैटरडे ब्रेकफास्ट शो का मज़ा लेते रहिए। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस आवा पर ढेर सारी बातें और भी रहेंगी आपके साथ में। EPL में एक मैच बस शुरू होने वाला है, जहां पर मैनचेस्टर सिटी और साथ में पैलेस बस इसी घंटे पर खेलेंगे। इसके साथ में और भी कुछ जानकारियां आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि हम फेसबुक पेज पर मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बस टाइम और चेंज को लेकर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर एक वीडियो अपलोड किया है। यहाँ पर भी जाकर आप अपना जो प्यार है हमें दे सकते हैं। एंड वाइल यू आर देयर ऑन आवर हम फेसबुक पेज, आपको ये भी बता दूँ साथ साथ में कि जो फादर्स डे प्रमोशन है सोशल मीडिया का, ये भी बस वहीं पर उसी प्लेटफॉर्म पर है जिसमें आप भाग ले सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इस आवा की शुरुआत करते हैं विशाल मिश्रा के साथ में। मैं हूँ अभी, लेकर आया हूँ ढेर सारा प्यार आपके लिए, आपके साथ में बांटने को।

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
2: आप भी अपने कॉफी का मजा ले रहे हैं या फिर टी का मजा ले रहे हैं, ऐसे में आपका खास स्वागत करते हैं। जबकि 10 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर, इट्स अ वेरी लवली मॉर्निंग हियर इन सीबीडी। और ऐसे ही लवली मॉर्निंग को और हम वेलकम कर रहे हैं आपका साथ भी, और थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करेंगे कि क्या कुछ सीबीडी में, ओकलैंड में क्या कुछ हो रहा है जहां पर आप जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड यू कैन स्पेंड योर डे। ये सभी कुछ अब बस थोड़ी देर में कुछ ऐसे इवेंट्स को ढूंढ कर लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी खींच सकती है, आपके इंटरेस्ट को, आपको एक आपके इंटरेस्ट को लेकर आपको अट्रैक्ट कर सकती है। बस कीप हमिंग, थोड़ी देर में इसकी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे।

0: सरडे ब्रेकफास्ट शो का ये कारवा है आपके फेवरेट डाल हम पर, और मैं हूँ आपका साथी अवि। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जहाँ पर आपकी इंटरेस्ट भी आपको ले जा सकती है। तो अगर जो आपको स्केचिंग में इंटरेस्ट है, तो खास आपके लिए अगर जो एक नई स्किल या एक नई आर्ट आप सीखना चाहते हैं, सो दिस इज़ फॉर यू। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, जबकि एक ऐसी जगह है जहाँ पर आज आप जाकर सीख सकते हैं द जॉय ऑफ ड्राइंग। यहाँ पर इस वर्कशॉप में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप स्केच कर सकते हैं। कुछ लोगों की ऐसी स्किल होती है जो इनबिल्ट होती है, या फिर ये लेकर आते हैं कि इनको स्केचिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से आती है, और इनकी स्केचिंग को देखकर आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि मैं भी ऐसी स्केच बना सकता। तो ये वर्कशॉप खास आपके लिए है जहाँ पर आपको सिखाएंगे बेसिक स्केचिंग टेक्निक्स, इसके साथ में कैसे शेप्स को ऑब्जर्व करके आप उसे कागज़ पर उतार सकते हैं, लाइन्स एंड प्रोपोर्शंस कैसे बना सकते हैं, लाइट एंड शेडो फंडामेंटल्स, ये सभी कुछ आपको इसी वर्कशॉप में सिखाएंगे जहां पर जो बिगनर्स हैं, यानी कि अगर जो आप स्केचिंग बस करने की शुरुआत कर रहे हैं, या फिर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है काफ़ी, तो इस स्किल को और शार्प करने के लिए अगर जो आप 13 एंड ओवर है, यानी कि ओवर द एज ऑफ 13 ईयर्स है, तो खास आपके लिए ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है ब्लॉक हाउस बे लाइब्रेरी में। आज 578 ब्लॉक हाउस बे रोड ब्लॉक हाउस बे में आप जा सकते हैं टुडे फ्रॉम 10:30 ऑनवर्ड्स। यहाँ पर 10:30 AM से लेकर 12 बजे तक जो वर्कशॉप है बिल्कुल फ्री है आपके लिए, और यहाँ पर आप जाकर जो स्किल है इसे सीख सकते हैं। द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज कि ये आर्ट को लेकर है और बिल्कुल फ्री है, यानी कि मुफ्त में है। आप जाकर ऐसे स्किल को सीख सकते हैं, एक टेक्निक को नया सीख सकते हैं। ये सभी कुछ आपके साथ में शेयर करते रहते हैं ताकि आप भी अपने आप को ऑक्यूपाइड रखें और कुछ ना कुछ आपके पास में नया करने को रहे हर वीकेंड पर।
1: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं।
2: Playing Bollywood's biggest hits.
1: हम driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो।
4: ये गलत बोल दिया यार।
3: और पहनता भी नहीं है उसको।
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुजबे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया आप लोग।
4: अभी ब्रांड हो गया ना।
3: रुजबे के बाल लगे उस।
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
7: बिजी सुबह हो या शाम का जल्दी का खाना, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर बनाए। हर मील हेल्दी और डिलिशियस, हाई प्रोटीन, रिच इन फाइबर और स्वाद से भरपूर। ये है हर घर का बेस्ट चॉइस, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर। 100% ऑथेंटिक और माँ के प्यार जितना शुद्ध। आज ही करें ट्राई, आपके नजदीकी स्टोर में उपलब्ध है। स्वाद भी, सेहत भी।
8: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/where-it-goes पे। तमाकी तुरुकी, All Together Auckland.
9: Farmers has the best gifts for Dad with great grooming products, skincare and the latest fragrance, and casual styling from top to toe. There's coffee machines, cocktail makers and barbecue sets too, plus Lego sets for grown-ups. Farmers has the best gifts for Dad.

0: the wasps legit?
1: Hi, Kevin Eater here, Trade Staff. Is respect in your workplace and being treated like an adult important to you? Are you currently in work that feels like you're going nowhere? Life's too short for bad jobs. Let's have a chat. If you're looking for better pay, flexibility, or a new challenge, let us show you how. There's never been a better time than now. We're online, tradestaff.co.nz.
2: Tradestaff, industrial employment solution. Tradestaff.
3: So you've been looking at adding a modular home to your property.
4: Yeah, but nothing quite reaches my standard.
3: Well,
4: within my budget.
3: Zelo.
4: Zelo?
3: Zelo by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes from 1 to 4 bedrooms with 1 or 2 bathrooms, all packed with premium inclusions.
4: Price?
3: $139K for a fully complete 1-bedroom home and $215K for a 3-bedroom home.
4: Zelo. I like the sound of that.
3: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.
5: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Saturday Breakfast on Hum.
6: That's right, Saturday Breakfast Show है आपके साथ में और मैं हूँ आपका companion अवि. और आपको बता दूँ जबकि आज है 29th of August, ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव है आज से इसकी शुरुआत हो रही है. कई जगह है जहाँ पर इसे बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है. तो आपको बता दूँ जल्द से जल्द न्यूजीलैंड संगम आपके लिए जो कृष्ण जन्माष्टमी इसका उत्सव आज अभी से लेकर 4 सितंबर तक रहेगा एट डेको ऑफ एलिगेंस, जहाँ पर आप जा सकते हैं. 16 लेमी ड्राइव मैंने कहा. डेली प्रोग्राम कुछ 7:30 PM से शुरुआत होगी. कथा व्यास रहेंगे नलेश नायडू. इसके साथ में श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में, यहाँ पर आप जा सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के लिए जो सेलिब्रेट किया जा रहा है आज से लेकर फ्राइडे 4 सितंबर तक. और इसके अलावा आउतेरवा सनातन संगम संस्था ये लेकर आ रहे हैं आपके लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जहाँ पर कथाकार रहेंगे पंडित कृष्णील शेखर महाराज. इनका जो प्रोग्राम है 29th अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक रहेगा. 7 PM इवनिंग में इसकी शुरुआत होगी और आपको सिर्फ जाना होगा वुमन केयर ट्रस्ट बिल्डिंग जो सिचुएटेड है 2 Sutton Crescent पापटोए ओकलैंड न्यूजीलैंड में. इसके साथ में श्री हनुमान मंदिर नोट शो में है, जहां पर कृष्ण जन्म उत्सव सेलिब्रेशंस रहेंगे आज से लेकर 4 सितंबर तक. और यहां पर जो 4 सितंबर का जो प्रोग्राम है ये मध्य रात्रि से लेकर शुरू होगी. तो इस पर और भी जो जानकारी है आप तक पहुंचाते रहेंगे. इसके साथ साथ में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा माँ दुर्गा टेम्पल जो है 4 Bathri ओनसलो एवेन्यू पपटोए में 7 PM से लेकर 8:30 PM तक. और साथ में जो फ्राइडे 4 सितंबर का जो प्रोग्राम है सुबह 8:30 इवनिंग से लेकर 12 बजे रात तक ये रहेगा. तो ये सभी जगह है जहाँ पर आप जाकर कृष्ण जन्माष्टमी में भाग ले सकते हैं.

आप सुन रहे सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो अभी का साथ है और 8 पर आपके लिए आज का जो पहला न्यूज है ये रहेगा। इसके साथ में जो कल एक खबर आई है जहां पर कुछ 1200 लोगों की नौकरी खतरे में है, और ऐसे में सबसे बुरी न्यूज यही हो सकती है जब आपको कोई बताए कि आपके पास में शायद आगे चलकर काम या नौकरी नहीं रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं घर चलाने के लिए, फैमिली को सही सलामत रखने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, जिसके लिए नौकरी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हेल्थ न्यूजीलैंड ने डिसाइड किया है कि कुछ 3 ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको ये अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी, जिनमें शामिल है प्रेसबाइटेरियन सपोर्ट नॉर्दर्न, और इसके साथ में एनलिवन सर्विस, और विजन वेस्ट और लाइफ वाइज। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सामने आए हैं जहां पर इनको अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। और इनके जो अधिकारी हैं, इन्होंने कहा है इट वाज वेरी टेरिफाइंग और साथ में डिप्रेसिंग फॉर देम, जबकि इनको ये न्यूज़ अपने स्टाफ को डिलीवर करना पड़ा, जबकि उनके आंखों में देखकर बताना पड़ा कि शायद आपके पास में अब आगे चलकर नौकरी नहीं रहेगी। तो अगर जो इसमें से आप भी इम्पेक्ट हुए, All I can say is keep faith, विश्वास मत खोइए, और कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, क्योंकि जब एक दरवाज़ा बंद होता है ना तो दूसरा एक खुल ही जाता है।

0: ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: हम पर 20 मिनट बाकी है 8 बजने में और आपको बता दूं जबकि आज सैटरडे ब्रेकफास्ट शो है और हम आपका फेवरेट बॉलीवुड डाल है तो ऐसे में सुबह सुबह का जो फिस्ट बॉलीवुड कॉन्टेस्ट है आपके साथ में खेलना चाहते हैं। कभी हमने इस सेगमेंट में ऐसे समय पर कभी कोशिश नहीं की है लेकिन आज देख रहे हैं कि एक सवाल लेकर आते हैं बॉलीवुड की दुनिया से। आपको सिर्फ ये बताना होगा कि बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने एक ही फिल्म में एक शेफ का काम या रोल किया है, क्या आपको उस फिल्म का नाम मालूम है? तो हमारे पास में 5599 पर ज़रूर अपना आंसर भेजें। अमिताभ बच्चन ने अपने बॉलीवुड की करियर में एक ही फिल्म में एक शेफ का रोल किया है, इस फिल्म का नाम हमें चाहिए। 5599 पर अपने नाम के साथ में मैसेज करें।
0: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
3: Saturday breakfast on Hum.
4: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
0: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
4: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
0: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
4: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
5: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
6: Hi, Kevin Eder here, TradeStaff. Everyone knows that TradeStaff have lots of jobs working outdoors on roading contracts and building sites. But in winter, working outside can be cold and wet. We also have heaps of inside jobs. TradeStaff has work available now in warehouses, factories and workshops. So for work inside this winter, 0508 40 40 40 or tradestaff.co.nz.
7: TradeStaff, industrial employment solution. TradeStaff.
8: गोवा की गलियों में एक नया बच्चा जन्म ले रहा है। टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स, स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश, मयंक ताला, कियारा अडवाणी, तारा सुपारिया एंड हुमा कुरैशी।
9: हेलो डैडी।
8: टॉक्सिक नाउ शोइंग इन सिनेमास।
10: इट्स टाइम, आई एम कमिंग।
8: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC।
11: Score big at Rebel with deals for Dad on clothing, footwear, fan gear, equipment and more. Whatever he's into, make Father's Day a winner. Shop epic deals for Dad in store and online now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
12: Get it sorted with cheap ass deals. Add some colour to the garden with 10cm Elite Cyclamens, now only $4 each. And get a sweet deal on 10cm Zealandia strawberry plants, now just $3.50 each. Limited stock. End Sunday at Mitre 10.
13: Playing Bollywood's biggest hits.
14: Project Gandhi.
0: Toast, coffee or hum ka energy.
15: Subah ho gayi mamu.
0: Saturday breakfast on hum.
2: That's right, it's a beautiful Saturday morning, 29th of August, और मैं हूँ अभी आपके साथ में on हम, ये है Saturday Breakfast Show, और काजोल, good morning, जबकि हमने आपसे सवाल किया था कि बॉलीवुड के महानायक शहंशाह ने एक ही फिल्म में एक ऐसी फिल्म थी जहां पर इन्होंने एक ही बार एक शेफ का रोल प्ले किया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक ही फिल्म में एक शेफ का रोल प्ले किया है। आपको बस उस फिल्म का नाम हमारे पास में गेस कर लिखना है, टेक्स्ट करना है 5599 पर और देखते हैं कितने लोगों को मालूम है। इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मूवी और शायद इस वीकेंड आप इसे रिविजिट भी कर सकते हैं। और आपको क्या फिल्म का नाम मालूम है तो 5599 पर भेजे जहां पर बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन ने एक शेफ का रोल प्ले किया था।

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: हम पर अभी का साथ है और ये कारवा आपके साथ में 12 तक चलता रहेगा। और जबकि सवाल किया था कि बॉलीवुड के महानायक ने एक ही फिल्म में एक शेफ का रोल किया था, तो ऐसे में बख्तियार और साथ में काजोल आपका जवाब आया था। इसके साथ में सिंधु आपने भी मैसेज किया है और जो जवाब है अब मैं आपको गाने में बताता हूँ।

0: और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम You're listening to Avineet.
1: हम स्टूडियो से 8:02 हो रहे हैं. मैं हूं अवि, आपके साथ में लेकर आया हूं सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो ओनली ऑन 104.2 एफएम. साथ में रोवा पर आप हमारा साथ दे रहे हैं. वेलकम टू द शो. जबकि आज है 29th of August, और ऐसे में आपको बता दूं, जबकि साउथ आइलैंड में हैवी रेनफॉल और साथ में स्ट्रॉन्ग विंड्स ने काफी असर बनाए हुए थे पिछले दो दिनों से, तो ऐसे में वेदर फोरकास्ट किया गया है कि ये जो खराब मौसम है, बुरा मौसम है, ये कहीं ना कहीं अब नॉर्दर्न आइलैंड की ओर बढ़ रहा है. ऐसे में नॉर्थ आइलैंड पर भी इसका असर जो है पड़ने लगेगा वीकेंड में, और इसके चलते ये बताया जा रहा है, फोरकास्ट किया गया है कि ये लेकर आएगी जो एक सिस्टम है अपने साथ में हेवी डाउनपोर्स. तो इसके लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वीकेंड में बारिश ही बारिश होने वाली है.

पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, और जबकि मैं बाहर गया था स्टूडियो से और चाय बनाने के लिए, तो मैंने देखा खिड़की से बाहर काफ़ी क्लाउडी है, काले काले बादल छाए हुए हैं, और ऐसे में आप भी अपने चाय का मज़ा ले रहे हैं हमारी तरह। तो वेलकम टू द शो, आपको भी याद करते हैं 5599 हमारा नंबर है जहाँ पर आप टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं। आपको भी ऐसे मौसम में कुछ सुनना है, कुछ स्पेशल कोई नंबर है, तो इसकी भी आप रिक्वेस्ट हमारे पास में भेज सकते हैं। इसके साथ में हमने अपने हम FM के फेसबुक पेज पर आज सुबह सुबह आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया है जहाँ पर हमने बातें की हैं टाइम और चेंज को लेकर। एक कॉन्सेप्ट है ना टाइम और चेंज, इसको लेकर एक वीडियो अपलोड किया है, यहाँ पर भी जाकर आप अपना प्यार दिखा सकते हैं। उसके साथ में जबकि बातें हो रही है हम फेसबुक पेज के बारे में, तो यहाँ पर जो प्रमोशन है फादर्स डे सोशल मीडिया ये चल रहा है, डेट्स AI अपग्रेड, जहाँ पर हर एक डेट के अंदर एक क्वालिटी होती है सुपर हीरो वाली, बस वही क्वालिटी को आपको अपने डेट को ड्रेसअप करना है एक AI जनरेटेड सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में। और उसके साथ में जब आप हमारे इस प्रमोशन में कमेंट सेक्शन में इस पिक्चर को अपलोड करोगे, उसके साथ में अपने डेट को टेक करोगे और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को एनकरेज करोगे कि डेट के फोटो को लाइक करें और कंपटीशन पोस्ट को लाइक करें, तो आपके हाथ लग सकता है $300 कैश इनाम, जिसका ड्रॉ रहेगा Friday 4th September, यानी कि नेक्स्ट वीक फ्राइडे को ये ड्रॉ होने वाला है। Your date could walk away with $300 cash इनाम, जहाँ पर आप अपने फादर्स डे डिनर में इसे स्पेंड कर सकोगे, हु नोज। तो ये सभी कुछ आपके साथ में रहेगा, और इसके अलावा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितने भी लोग हैं फॉलो करें हम फेसबुक पेज को इस कॉम्पिटिशन के अंतर्गत, और कॉम्पिटिशन पोस्ट को भी लाइक करें। तो ये बातें हुई सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में, और इसके साथ साथ अगर जो आप भी कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं आज जबकि 29th August है, तो 5599 पर ज़रूर अपना बर्थडे मैसेज भेजें, या फिर वेडिंग एनिवर्सरी है आप शाउट आउट देना चाहते हैं, वॉट एवर इट इज़। मैं हूँ अभी आपके साथ में, बस यही सब करने के लिए मैं हूँ, और इसके अलावा कुछ बातें भी होती रहेंगी।

0: हम पर ब्यूटीफुल नंबर फॉर अ लेजी सैटरडे मॉर्निंग और ऐसे में 8:20 हो रहे हैं। आपको बता दूं कि 9 के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मस्ती मीटर। लेकिन ईपीएल में जो खेल मैनचेस्टर सिटी साथ में पैलेस के बीच में हो रही है, इसमें सिटी की जीत पैलेस के खिलाफ 3-1 से हो रही है।
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
2: कभी भी कहीं भी ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
5: That is very that is a very acceleration.
4: That's a very acceleration. Yeah.
5: Amazing acceleration.
4: This is my fancy English. That's a very.
5: अरे होता है यार, सब चलता है। आधी नींद में हूँ मैं।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: जी हाँ, ये सैटरडे ब्रेकफास्ट शो, मैं हूँ आपका साथी अभी ऑन हम। और अगर जो आप अभी मुझे सुन रहे हैं और रुके हुए एक ट्रैफिक लाइट इंटरसेक्शन पर, तो आपको खास शामिल कर रहा हूँ। यू कैन टेक्स्ट मी बैक। अगर जो आप एक ट्रैफिक लाइट पर रुके हैं और आप हमें सुन रहे हैं, तो बताइए कि आप ट्रैफिक लाइट पर हैं और आप हमें सुन रहे हैं 5599 पर, क्योंकि अगला जो इन्फॉर्मेशन है न्यूज़, ये आपसे ही जुड़ा है। आप अक्सर परेशान हो जाते हैं ना सुबह सुबह जब आप कहीं जाते हो और कहीं ना कहीं आप किसी ट्रैफिक लाइट पर जाकर फंस जाते हो, तो आपको हमारी तरह भी काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती ही है। और स्पेशली व्हेन यू आर रनिंग लाइट, तो आपको लगता है यार इस बार इससे पहले जो ग्रीन लाइट थी उसमें निकल जाना चाहिए था। लेकिन आपको बता दूँ, ट्रैफिक लाइट्स जो होते हैं, जो इंटरसेक्शंस को कंट्रोल करते हैं, तो तिवामुटु एक ऐसी शहर टाउन जहां पर 25 इयर्स बिना ट्रैफिक लाइट्स के इन्होंने बिताया है, और अब ट्रैफिक लाइट्स वापसी कर रही हैं इस टाउन में। जी हाँ, ट्रैफिक लाइट्स आर सेट टू रिटर्न टू वेकातो टाउन, जबकि 25 इयर्स से यहां पर कुछ कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं थी इस टाउन में। और रिसेंट एक डेवलपमेंट में यहां पर कुछ लैंड है जिसे रिजोन किया जाएगा तिवामुटु में, और इस डेवलपमेंट के कारण ट्रैफिक लाइट्स लगाए जाएंगे इंटरसेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि शायद तिवामुटु में ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। तो आपको ट्रैफिक लाइट्स को लेकर ये भी बताएं, ऐसे और कई टाउन्स हैं जहां पर ट्रैफिक लाइट्स नहीं है और पर्मनेंट जो ट्रैफिक लाइट्स होती है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, ऐसे कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। और किसी ने मैसेज किया है कि सिल्विया पार्क के पास में ट्रैफिक लाइट्स पर ये अटके हुए फंसे हुए हैं। 611, थैंक यू सो मच, आपने मैसेज किया है। तो ट्रैफिक लाइट्स कैन बी क्वाइट अमेजिंग, ये आपके पेशेंस लेवल को भी टेस्ट कर लेती है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। तो आप भी कहीं ट्रैफिक लाइट पर फंसे हुए तो टेक्स्ट कीजिए। और हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जबकि ट्रैफिक लाइट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी भी कुछ टाउन्स हैं जहाँ पर न्यूजीलैंड में ट्रैफिक लाइट्स, पर्मनेंट ट्रैफिक लाइट्स बिल्कुल नहीं है। क्या आपको पता है ऐसे कौन कौन से शहर है? 5599 पर ज़रूर मैसेज करें। और ट्रैफिक लाइट्स को लेकर अगर जो आपको परेशानी हो रही है, तो मैं ये सोच लेता हूँ, मान लेता हूँ कि इस पॉइंट में, इस वक्त मुझे बस यहीं पर रहना था, अगर जो आप ट्रैफिक लाइट में फंस गए तो। इससे आपको एक यू नो, यू कैन एक्सप्लेन योर सेल्फ और काम योर सेल्फ डाउन कि इस पॉइंट पर शायद मुझे यही रहना चाहिए था और मैं वहीं हूँ। तो यही मानकर अगर जो आप भी रेड लाइट पर अभी अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, बस हमके साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ में जुड़े रहिए और इन्जॉय द शो।

हम पर रवि का साथ है और जबकि बातें हो रही थी ट्रैफिक लाइट्स को लेकर, तो हमने आपसे पूछा था, सवाल किया था कि आपको पता है कि ऐसे कौन से टाउन्स हैं न्यूजीलैंड में जहां पर अभी तक ट्रैफिक लाइट्स शायद नहीं है। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, 5599 पर अपना जो जवाब है थोड़ा रिसर्च करके हमारे पास में भेजो, ताकि हमको भी पता लगे कि इंटरेक्टिव है ये सेशन हमारे साथ में और आप भी हमें सुन रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं। तो बताइए किस टाउन्स में अभी तक शायद ट्रैफिक लाइट्स नहीं इंस्टॉल हुए हैं।

0: हम पर रवि का साथ है और जब तक ये गाना चल रहा था हमारी बातें हुई हैं टिपू की द कीवी फ्रूट कैपिटल से, हरमिंदर से। इन्होंने फ़ोन किया और बताया कि टिपू की में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है जो कि तोरंगा के बिल्कुल आसपास है। और ये कह रहे थे हरमिंदर कि हम सुनते रहते हैं और रोवा पर साथ देते रहते हैं और आज भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे थे, इसीलिए आपको बताते हैं और वेलकम करते हैं आपका शो और थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। इसके साथ में ऑसम प्रोग्राम क्वीन लिख रही हैं और ब्लेनहम इज़ वन ऑफ द टाउन्स जहां पर आप कहती है कि ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। और मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया, ब्लेनहम वाज वन ऑफ द नेम्स जहां पर ट्रैफिक लाइट्स नहीं थी और या फिर यू कहे कि नहीं है। लेकिन मई 20th 2026 यानी कि कुछ ही महीने पहले यहाँ पर एक काउंसिल मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि पोर्ट मेलबर्न में इनका जो पहला ट्रैफिक लाइट है ये प्लान किया गया है फॉर लगून रोड, लेकिन ये अभी इंस्टॉल मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। तो एट द मोमेंट, एट दिस पॉइंट इन टाइम, ब्लेनहम में शायद अभी भी कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं हो। आपको भी मालूम है और कौन से ऐसे ऐसे टाउन से जहां पर ट्रैफिक लाइट्स है ही नहीं। मैं जहां रहता हूं ईस्ट ओकलैंड में, वहां पर कदम कदम पर ट्रैफिक लाइट्स है और वी हैव टू बी वेरी पेशेंट और उनके मुताबिक से ही चलना पड़ता है। लेकिन क्या आप ऐसे शहर में हो जहां पर ट्रैफिक लाइट्स बिल्कुल नहीं है? 5599 पर आप मैसेज करें हमारे पास में, या फिर कुछ सुनना भी चाहते हैं कुछ अलग और कुछ सतरंगी सुनना चाहते हैं ऐसे मौसम में, 5599 पर सेंड इन योर रिक्वेस्ट।
1: टोस्ट कॉफी और हम का एनर्जी
2: सुबह हो गई मामू,
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
3: We gotta go. Are you ready?
4: Come and take a trip with me.
5: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special Hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
6: Vacation. Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
7: Let's go.
6: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
8: Knock knock, it's me Dash, helping rugby fans get ready early for game day. Get your official Adidas All Blacks supporters gear on DoorDash and you could win an epic All Blacks watch party delivered by rugby legends. Adidas on DoorDash. Now that's a good call. T's and C's apply.
9: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
10: Want to be rewarded 5 times faster? Boost your offers in the Everyday Rewards app, spend with our partners and scan your card to enjoy more points. Download the Everyday Rewards app today and boost away. TCs and exclusions apply.
11: Say goodbye to winter.
12: Goodbye.
11: And hello to spring.
12: Hello.
11: This weekend at Risco's with new season savings store-wide and half-price Manchester and electrical deals. Say goodbye, winter.
12: Goodbye.
11: Hello, spring.
12: Hello.
11: With fresh savings at Risco's. See online for T's and C's.
13: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
14: Yeah, but there always seem to be hidden extras.
13: Zelo.
14: Zelo.
13: Zelo by Ashcroft Homes. A great range of modular homes packed with premium inclusions right from the start. Think stone bench tops and heat pumps to built-in cabinetry and storage, all included.
14: Really?
13: Yep. And they can deliver in as little as 8 weeks.
14: Zelo. I like the sound of that.
13: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.
15: Naya hybrid dhoond rahe ho? To Havel hi lo. Right now, Andrew Sims Marugao mein brand new Havel H6 hybrid drive away sirf 40,990 se. Plus on-road cost. No deposit finance lo. Apni trade-in ke liye zabardast price pao. Aur discover karo ki kyun zyada kiwis Havel choose kar rahe hain. Stylish, spacious aur technology se bhara hua. Wo bhi hybrid efficiency ke saath. Aaj hi visit karo Andrew Sims JWM Marugao. Havel hybrid. More for your money. Terms and conditions apply.
7: गोवा की गलियों में एक नया बादशाह जन्म ले रहा है टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश मयंक ताला कियारा अडवाणी तारा सुपारिया एंड हुमा कुरैशी
12: हेलो डैडी
7: टॉक्सिक नाउ शोइंग इन सिनेमास
16: इट्स टाइम आई एम कमिंग
7: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग टीबीसी
17: Oh hey! If you haven't received your enrollment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time.
18: Enroll, check, or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
19: The beat of Bollywood.
20: World's best, hamari good brands bhi hai.
19: Hum. Saturday breakfast on Hum.
0: हम पर रवि का साथ है और जबकि हम बोर्डिंग कॉल बिल्कुल एवरी वीक आपके लिए वीकडेज में चल रहा है ऐसे में बोर्डिंग कॉल इज़ नाउ ओपन और जो आपका ड्रीम आइलैंड एस्केप है इज़ जस्ट वन बोर्डिंग कॉल अवे जहां पर आप टू रिटर्न एयर टिकट जीत सकते हैं फॉर वनुआतु विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी ये सभी कुछ आपके पास में मौका है एंटर करने के लिए जबकि वीकडेज में सुबह 8 के करीब साथ में अराउंड 11 AM अराउंड 1 PM एंड देन अराउंड 5 PM इन द आफ्टरनून आपको बोर्डिंग कॉल सुनाई देगा जिसके बाद में 60 मिनट्स का समय है आपके पास में आपको सिर्फ रोबा पर जाना है रोबा ऐप पर जाइए और वहां पर सर्च कीजिए बोर्डिंग कॉल उसके बाद में सिर्फ बोर्ड नाउ लिखकर सबमिट करना है और अगर जो आपको कंपटीशन पेज लिंक चाहिए तो BC लिखकर 5599 पर भेजें ताकि आप इजिली से उस लिंक को फॉलो करते हुए उसी कंपटीशन पेज तक पहुंच जाए दैट्स इट यू विल बी इन द ड्रॉ टू विन इन अनफॉरगेटेबल वनुआतु गेटअवे और ऐसे में मिस मत करिए क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज है जहां पर आपको घूमने और साथ में फिरने के पैसे भी मिल रहे हैं एयरलाइन की तरफ से टिकट्स भी मिल रहे हैं Thanks to Solomon Airlines flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu. Aur information ke liye visit kare solomons.com. Aur haan, T's and C's do apply. Iska bhi khyal rakhiyega.

हम पर सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में अब आपको सुनवाते हैं इस आवा का फाइनल सॉन्ग, जिसे लेकर आ रहे कुमार शानू साथ में अलका याग्निक। इसके बाद में मस्ती मीठा आपके साथ में रहेगी 8:09।

0: Saturday Breakfast on Hum. Masti Meter on Hum.
1: Yo,
2: main hoon
1: chhota sa chhora.
0: You're listening to Avineet.
3: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में. जबकि सुबह के 9 बज रहे हो तो चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? तो जबकि वीकेंड है, ऐसे में आपके लिए लेकर आए हैं मस्ती मीठा यहाँ से. और बिल्कुल हंसते मुस्कुराते ये जो आवाज है कटेगा आपके साथ में. कुछ मस्ती भरे गाने भी रहेंगे, बीच बीच में मस्ती भरे कुछ कॉम्पिटिशन भी रहेंगे. ऑल ऑफ दिस इन मस्ती मीठा अभी से लेकर 10 तक. और ऐसे में साथ देते रहिए क्योंकि कॉन्टेस्ट बिल्कुल यूँ कहे हॉट एंड हैपनिंग होने वाला है. जबकि एक ऐसे कलाकार को लेकर आए हैं ये जो हैं कभी भी किसी भी क्लिप में कुछ भी कह सकते हैं, एकदम कैपेबल है कुछ भी कहने के लिए. तो इसको सुनते समय थोड़ा फिल्टर करना पड़ता है या फिर ध्यान से सुनना पड़ता है कि ये रेडियो पर बजाने लायक है या नहीं. लेकिन ऐसा ही कुछ एक साफ सुथरा इनका क्लिप हमें मिला है और इनके बारे में और भी बातें करेंगे, चर्चा करेंगे बस थोड़ी ही देर में.

0: हम पर यह है मस्ती मीठा, मैं हूँ आपका साथी अभी। और जबकि मस्ती मीठा में हमने कहा था आपको एक ऐसे कलाकार की आवाज़ क्लिप सुनाएंगे जो कि बिल्कुल ह्यूमरस है, लेकिन आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कौन कलाकार है, किसकी आवाज़ है। ये जो आर्टिस्ट है, ये इनकी जो कॉमेडी टाइमिंग है बिल्कुल इम्पेकेबल है, मक्खन की तरह ये बहते हैं, फ्लो करते हैं अपने कॉमेडी में। और इनको आपने कई बार कॉमेडी शोज़ में भी देखा होगा, इनकी एक अलग पहचान है, एक अलग अंदाज है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बातों बातों में क्या कह जाए नेक्स्ट, ये पता नहीं होता है। अक्सर काफ़ी इनके शॉर्ट रील्स आती है और डबल मीनिंग वाले कॉमेडी भी होते हैं, तो एक साफ सुथरा क्लिप आपके लिए लेकर आए हैं रेडियो पर प्ले करने के लिए खास। तो ये नकल कर रहे हैं नसीरुद्दीन शाह की, और ऐसे में आपको सुनवाते हैं इनकी ही अंदाज में, और आपको 5599 पर सुनकर यह पहचानना होगा कि ये कौन आर्टिस्ट है आखिर।
1: मेरी इतनी दहशत थी चूचा जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं डरा। और ऐसा नहीं, बच्चे डरते थे कि साला चिल्लाते चिल्लाते बुड्ढा मर ना जाए। डरता हूँ। वाह, यहां तक ही नहीं
2: जी,
1: कबूतर, यार कबूतरों में दहशत थी। एक कबूतर मेरी खिड़की पे बैठ गया, मैं क्लास ले रहा था, मेरे पास आके बैठ गया, मैं कहा यहां क्यों बैठा है। आप जानते हैं उस कबूतर ने मुझसे क्या कहा? कहता है
0: इनकी दहशत कबूतरों में भी है। और 5599 पर अंदाज़ा लगाया कि कौन कलाकार है, आर्टिस्ट कौन है, हमने आपको सुनवाया जिन्हें। और लेट्स सी कितने लोगों को मालूम है, अक्सर ये काफ़ी कॉमेडी शोज़ में आए हैं और इनकी एक अलग अंदाज़ है। और इफ़ यू नो इट, 5599 पर अपने जवाब ज़रूर भेजिए।

0: हम पर अभी का साथ है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो, और जबकि अभी का टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, 16 डिग्रीज तक बताया जा रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म बिल्कुल ठंडी पड़ गई है। जबकि किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया जो क्लिप हमने आपको सुनवाया था मस्ती मीठा में, चलो एक बार फिर आपको सुनवाते हैं ताकि आपको सुनने के बाद में कुछ ना कुछ अंदाजा मिल सके।
1: मेरी इतनी दहशत थी चुचा जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं डरा, और ऐसा नहीं बच्चे डरते थे कि साला चिल्लाते चिल्लाते बुड्ढा मरना जाए। यहाँ तक ही नहीं
2: जी,
1: कबूतर, यार कबूतरों में दहशत थी। एक कबूतर मेरी खिड़की पे बैठ गया, मैं क्लास ले रहा था, मेरे पास आके बैठ गया, मैं कहा यहाँ क्यों बैठा है। आप जानते हैं उस कबूतर ने मुझसे क्या कहा? कहता है
0: हाँ, तो ये किस कलाकार की आवाज़ थी आपको इतना ही बताना होगा। इन्होंने नकल की है नसीरुद्दीन शाह की, और काफ़ी फेमस है, इन्होंने काफ़ी कॉमेडी शोज़ में आपने इनको देखा है, और साथ ही साथ में अगर जब बात करें तो इन्होंने कपिल शर्मा में भी काफ़ी कैरेक्टर्स निभाए हैं। आजकल इनकी यूट्यूब पर ढेर सारी शॉर्ट्स बन रही हैं, डॉक्टर मासूम बनकर, व्हाट नॉनसेंस में, और इसके साथ में जो कलाकार, जो कैरेक्टर्स आपने इनको निभाते हुए देखा था कपिल शर्मा के शो में, उनमें शायद सेल्फी मौसी भी एक कैरेक्टर है। तो 5599 पर अगर जो आपको अंदाज़ा लगता है तो जवाब भेजिए। देखिए कितने लोगों को आखिर मालूम है कि ये जो कॉमेडी स्टार है टेलीविज़न की दुनिया में खासकर काफ़ी नाम बनाया है, रियल लाइफ लाइव शोज़ में भी काफ़ी अच्छा अभिनय करते हैं। आपको मालूम है कि ये कौन एक्टर है?
3: Playing Bollywood's biggest hits.
4: Put your hand to Gandhi.
3: March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
5: Rusbi, tickets book ho gaye.
6: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
5: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
6: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली दर्शन,
5: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
7: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
8: हेलो एवरीबॉडी।
3: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
9: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
3: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe only on Hum.

0: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
1: At Spot might save a massive 20 to 50% off store-wide, including Manchester Home Decor, Fabric Craft, Knitting Yarn, Party Curtains and Blinds. Yes, that's 20 to 50% off store-wide. Sale on now. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full-price products. Excludes clearance. See website for details.
2: Please use your imagination for the following ad.
3: If I won Powerball, I'd book my family a trip to... And I'd stay right here with my new...
4: Imagine winning $23 million this Saturday. Play in store or online.
5: Big Say's having a whiteware sellout today. We've got washing machines, dryers, fridges and dishwashers from just $2.98. Get a Samsung 6kg washer only $6.99 or a Panasonic 332-litre fridge only $9.60. Need it today? We have stock. Plus until Monday, get 30 months interest-free. TCs and credit criteria apply only at Big Save.
6: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
7: हाँ, अच्छा?
6: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह।
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
9: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
2: मेरी इतनी दहशत थी चूचा जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं डरा। और ऐसा नहीं, बच्चे डरते थे कि साला चिल्लाते चिल्लाते बुड्ढा मर ना जाए। यहाँ तक ही नहीं
3: जी,
2: कबूतर, यार कबूतरों में दहशत थी। एक कबूतर मेरी खिड़की पे बैठ गया, मैं क्लास ले रहा था, मेरे पास आके बैठ गया, मैं कहा यहाँ क्यों बैठा है? आप जानते हैं उस कबूतर ने मुझसे क्या कहा? कहता है
4: तो दो लोगों को पता लगा है, अपने सही अंदाजा लगाया है और इस क्लिप को आखिरी बार प्ले कर रहे हैं क्योंकि आगे भी बढ़ना है। तो अगर जो आपको जवाब पता लगता है तो 5599 पर ज़रूर भेजें कि किस आर्टिस्ट की ये आवाज़ थी, अंदाज थी, जहां पर ये नसीर उद्दीन शाह को नकल कर रहे थे। बस थोड़ी देर में एक गाना और सुनवाते हैं, उसके बाद में आपके साथ में शेयर करेंगे इस आर्टिस्ट के बारे में और डिटेल्स।

हम पर आप सुन रहे थे मस्ती का टाइटल मस्ती से इस गीत को, और साथ में आपको बता दें कि जो आवाज़ आप सुन रहे थे ये नन अदर देन सिद्धार्थ सागर की आवाज़ थी, और सही पहचाना है क्वीन ने इसके साथ में। अजय, आपने भी सही जवाब पहचान कर भेजा है हमारे पास में, थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। और जबकि सिद्धार्थ सागर के बारे में बात हो रही, तो 13 ईयर्स की उम्र में उन्होंने अपना जो डेब्यू है ये किया था ऑन द शो कॉमेडी सर्कस चिंच पोकली टू चाइना एपिसोड के साथ में, और एक लीड एक्टर के तौर में साब टीवी हॉरर कॉमेडी सीरीज में प्रीतम प्यारे और वो में आपने उसको देखा था। साथ में कपिल शर्मा शो में काफ़ी बार आपने उनको देखा है सेल्फी मौसी का कैरेक्टर निभाते हुए। और इसके साथ में 2018 में अगर जो इनकी ट्रिविया पर देखे तो ये मिसिंग हो गए थे काफ़ी दिन तक, जबकि बाद में ये फिर रीअपियर हुए, और जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने खुलकर बातें की कि कैसे वो अपने फैमिली डिस्प्यूट्स को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर और अपने लाइफ में ट्रॉमा को लेकर डील कर रहे थे, इसीलिए उनको गायब होना पड़ा था। इनका एक और एक ऐसा डार्क शेड या फेज है इनके लाइफ में, जहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि ये एडिक्शन सब्सटेंस अब्यूज़ के साथ में बैटल कर रहे थे, और इसीलिए इनको 12 बार कहीं इनको रिहेब में दाखिल भी होना पड़ा। और विद द हेल्प ऑफ हिज मदर इन्होंने काफ़ी बार ट्राई किया, कंटिन्यूसली ट्राई किया सिद्धार्थ को सपोर्ट करने के लिए, और तब कहीं जाकर ये इस फेज से भी बाहर निकल पाए हैं। तो अभी हाल ही में इनका एक यूट्यूब शो थे जहाँ पर व्हाट नॉनसेंस में ये अलग अलग एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स में नज़र आते हैं, और इसके साथ में आपने कपिल शर्मा शो में काफ़ी बार इनको देखा है। ये जो कपिल शर्मा, मुझे याद नहीं है खास कौन सा कैरेक्टर था, लेकिन एक कैरेक्टर था ये पोल से नीचे आते हैं, ऊपर की स्टोरी से जो पुराना सेट था कपिल का वहाँ पर ये पोल पर स्लाइड होते हुए नीचे आते हैं। एक टेरिफिक एक्टर, और सिद्धार्थ सागर की ही ये आवाज़ थी आपके साथ में मस्ती मीठा में आज के लिए।

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: That's right, ये है Saturday Breakfast Show on Hum और मैं हूँ आपका साथी अभी 12 तक ये साथ चलता रहेगा. आपको ये बता दूँ 10 बजे के बाद आपके लिए लेकर आएंगे Father's Day on air, जहाँ पर ये प्रमोशन चल रहा है जिसका ड्रो फ्राइडे 4 सितंबर को होगा, जहाँ पर आप $500 इनाम जीत सकेंगे. तो जीतने के लिए दाखिल तो होना पड़ेगा डेट्स रिवर्स ग्रिल कमिंग अप जस्ट आफ्टर 10. और लगे हाँ तो आपको ये भी बता दें कि जो प्रमोशंस रक्षाबंधन के अंतर्गत हो रहे थे जहाँ पर कल ड्रो हुए, तो सोशल मीडिया का जो प्राइज़ है ये कोमल के हाथ लगा है. इसके साथ में ओनिया ईशू और अश्विन ने जीता है. जो हमारे विनर्स हैं इनको हमारी टीम कॉन्टेक्ट करेगी आने वाले दिनों में ताकि इनके प्राइजेस इन तक पहुँचा जा सके. तो आपको भी जीतना है. $500 इज क्वाइट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी और ऐसे में आपके पास में मौका रहेगा 10 बजे के बाद, जबकि डेट्स जो हैं आप ध्यान से सुनते रहिए एंड मेक श्योर आपके बच्चे भी आपके साथ में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सवाल हम पूछेंगे आपसे यही आपके मदद कर पाएंगे आपको आंसर देने में.
0: लाइफ में थोड़ी मस्ती जरूरी है, मस्ती मीटर के साथ.
2: Ladies and gentlemen,
0: unfiltered with Sandy and Rusbe. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे.
0: Unfiltered with Sandy and Rusbe on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: Andy didn't think he needed a DVS system.
5: Nah, we're all right, aren't we?
4: But Andy forgot about his daughter who suffered from asthma and allergies.
6: Yeah, Dad.
4: So Andy got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work making their rooms drier, healthier and more comfortable. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.

0: मीटर।
1: That's right, ये है मस्ती मीठा। और मस्ती मीठा में आपको बता दूं एक मस्ती भरी न्यूज, जबकि इसी वीक मस्ती मस्ती में डोनाल्ड ट्रंप ने लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका कर दिया है, और इससे काफ़ी लोगों को परेशानी हुई है। यहाँ तक कि नॉट ओनली ऑन द कैनेडियन साइड लेकिन यूएस के साइड भी काफ़ी लोगों ने ऑब्जेक्ट किया है। और यहाँ पर बताया जाता है कि जो लेक ओंटारियो, जिसका नाम डिराइव हुआ था वेंडट लैंग्वेज में, और यहाँ तक काफ़ी सालों तक इनका नाम इसी तरह से ये नोन था एज लेक ओंटारियो। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ओडा के बारे में बताया, जहाँ पर अब उनको एज लेक अमेरिका रेफर किया जाएगा। ऐसा कुछ एक इंसिडेंट पहले भी हुआ था, जहाँ पर गल्फ ऑफ मेक्सिको को उन्होंने कह दिया था कि ये अब उनको गल्फ ऑफ अमेरिका बोलेंगे। लेकिन जितने भी हिस्टोरियंस हैं, साथ में जो लोग मैप्स बनाते हैं, आज भी उनको पुराने नाम से ही एड्रेस करते हैं। सो वन ऑफ दोज थिंग्स जहां पर आपके साथ में शेयर करते हैं, ताकि आपको भी पता रहे कि नाम कैसे बदले जाते हैं।

0: Culture on Hum.
1: हम पर आपके लिए कमिंग अप एट 10 न्यूज, उसके बाद में जुगाड़ जंक्शन, और जहां पर आपके साथ में खेलेंगे डेड्स रिवर्स ग्रिल।

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: Saturday Breakfast में हम आए हैं जुगाड़ जंक्शन पर.
2: Yo, मैं हूँ छोटा सा छोरा.
1: You're listening to Avineet.
3: That's right, मैं हूँ अवि आपके साथ में. सुबह के 10:02 हो रहे हैं. ऐसे में ये है जुगाड़ जंक्शन, जहाँ पर आपकी लाइफ और इजी बनाने के लिए कुछ ना कुछ टिप्स हम ढूंढ कर लेकर आते रहते हैं. लेकिन हमने वादा किया था कि इस आवा की शुरुआत करेंगे डेट्स रिवेस ग्रिल के साथ में, जहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा है फादर्स डे प्रमोशन ऑन एयर, जहाँ पर आप इस प्रमोशन में भाग लेकर $500 इनाम जीत सकते हैं. और आपको सिर्फ एक आसान से सवाल का जवाब देना होगा. जितने भी डेट्स आप सुन रहे हैं, अगर जो आपके बच्चे आपसे कहें डेड आई एम कुक्ड, डेड आई एम कुक्ड, तो इसका मतलब क्या होगा आपको 0800-004-866 पर बताना है. अगर जो आपके किड्स आपके साथ में हैं तो दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट. हाँ, एक ही एंट्री ले पाएंगे. और आपको जल्द से जल्द रिंग करना होगा, कॉल करना होगा हम पर 0800-004-866, क्योंकि हम पर अक्सर आप एक विनर ठहरते हो जब भी हमारे साथ में होते हो. जबकि रक्षाबंधन का जो प्रमोशन है ये अब एंड हो गया है, जहाँ पर ईशु साथ में अश्विन और कोमल ने अपने अपने हाथ जो प्राइजेस है ये लगे हैं इनके हाथ, जिसके बारे में हमारी टीम उनको अगले वीक में कॉन्टेक्ट करेगी. लेकिन अभी मौका है डेट्स रिवेस ग्रिल का, जहाँ पर हमने पूछा है आपसे कि अगर जो आपके बच्चे आपसे कहे डेड आई एम कुक्ड, तो इसका मतलब क्या है आपको 0800-004-866 पर कॉल करके बताना होगा. चलो जल्द से एक गाना सुनते हैं, उसके बाद में देखेंगे कोई एंट्रीज आती है या नहीं.

0: हम पर मैं हूँ अभी और ये है सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो, जबकि आज है 29th ऑफ अगस्त। तो कई जगहों पर जो कृष्ण जन्माष्टमी की उत्सव है इसे भी आज धूमधाम से मनाई जाएगी, पाठ भी होंगे, इसके बारे में हमने आपको कम्युनिटी न्यूज़ में बताया है। और टेलीफोन लाइंस पर देखते हैं कि हमने जो सवाल किया था आपसे। हेलो, आपका स्वागत है हम पर।
1: हेलो हेलो, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात।
0: सुप्रभात, किससे बातें हो रही है?
1: मेरा नाम ओमकार है।
0: जी ओमकार, कैसे हो आप?
1: मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो सर?
0: जी बिल्कुल ठीक हूँ, मजे में हूँ।
1: जी, तो आपने कुछ सवाल पूछा था मेरे ख्याल से।
0: जी हाँ, सवाल पूछा था $500 कैश इनाम के ड्रो में शामिल होने के लिए फॉर फादर्स डे। अगर जो आपके बच्चे आपसे कहें आई एम कुक्ड, इसका मतलब क्या हुआ?
1: का मतलब मेरे ख्याल से आई एम डन।
0: बिल्कुल सही, मैं आई एम डन यानी कि मैं बिल्कुल थक गया हूँ या थक गई हूँ।
1: हाँ करेक्ट, हो चुका है मेरे से, मतलब आई एम डन, आई एम कुक्ड।
0: कितने बार सुनने को मिलता है ये?
1: नहीं क्योंकि

0: वी आर जस्ट ट्राइंग व्हाटएवर बेस्ट वी कैन डू फॉर देम.
1: बिल्कुल, बस कोशिश ही कर सकते हैं. थैंक यू सो मच ओमकार. जाते जाते अपने बच्चों का नाम बता दे, ओनिया उनको याद कर ले.
0: मेरी बच्ची का नाम है आर्या.
1: नाइस नाइस आर्या. चलो आज आर्या को हमारी तरफ से, हम की पूरी टीम की ओर से आप प्यार देना, और साथ में आपके नाम को भी ड्रॉ में शामिल कर रहे हैं.
0: वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको सबको शुभकामनाएं.
1: थैंक यू सो मच ओमकार, हैव अ प्लेजेंट डे. तो ये थे ओमकार, हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल सही बताया, क्योंकि जब बच्चे कहते हैं आई एम कुक्ड, इसका मतलब अभी के ज़माने में आई एम डन. और एक और एक प्यारा सा मैसेज आया है 659802, व्हेन माय चाइल्ड सेज आई एम कुक्ड फॉर मी इट मींस ही इज़ डन, स्पेशली ड्यूरिंग हिज सोका मैच. और तो चलो आपके बच्चों को जो सोका खेल रहे हैं, हमारी ओर से बेस्ट विशेज, और बच्चों के पापा को भी कहे, जबकि जो हमारे डेट्स रिवर्स ग्रिल का प्रमोशन चल रहा है फादर्स डे के अंतर्गत, तो कन्विंस करो कि हमारे पास में कॉल किया करे, ताकि इनके नाम को भी हम ड्रॉ में शामिल कर सके. ये सभी कुछ हम के साथ में, और जब भी आप हमारे साथ में होते हो यू आर ऑलवेज अ विनर.

हाँ तो दिल का क्या, और मैं पूछता हूँ आपसे कि जुगाड़ जंक्शन में ब्रोकन जिप का क्या? कुछ ऐसे जिप्स होते हैं जो आपके ट्राउजर्स या फिर टॉप्स के होते हैं, जो कहीं ना कहीं यूं कहें फंक्शन करना बंद कर देते हैं, स्टक हो जाती है एक ही जगह पर। तो आपको भी ये प्रॉब्लम है तो जुगाड़ जंक्शन में आपको बता दें कि अगर जो आप कैंडल लेकर उस जिप के ट्रैक पर उसको आहिस्ते आहिस्ते रब करोगे तो कहीं ना कहीं उस ट्रैक को एक बार फिर वापस ये लुब्रिकेट कर देता है, जिससे जिप को मूव होने में आसानी हो जाती है। इसके साथ में ट्रैक भी चेक कीजिए, कभी कभी डर्ट या फिर जो थ्रेड्स होती हैं कपड़ों की, ये भी आकर उसको रोक देती है ट्रैक को। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी लोग हैं मैं जानता हूँ जो जिप ना चलने पर काफ़ी परेशानियों का सामना करते हैं, यहाँ तक कि फिर कपड़ों को डिस्कार्ड भी कर देते हैं। तो देयर इज एन ईजी वे टू फिक्स इट, जिसके बारे में हम आपके साथ में हम पर शेयर कर रहे थे।

यह है जुगाड़ जंक्शन अवि के साथ में, और बातें करेंगे आज इस सेगमेंट में कि कुछ लोग होते हैं जो DIY प्रोजेक्ट्स को काफ़ी आगे तक लेकर चले जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिस पर आपको प्रोफेशनल एडवाइस या सर्विस की ज़रूरत होती है, लेकिन आप अपने आपको ओवर कॉन्फिडेंटली लेकर उन प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक कर लेते हो। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में AI ने बताया है कि यू शुड लीव इट टू प्रोफेशनल्स, क्योंकि एक कहावत थी पहले ना, चलो आपसे पूछते, एक कहावत थी पहले कि जिसका काम उसको साजे दूसरा कोई करे तो क्या होता है। अगर जो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं 5599 पर भेजे, जिसका काम उसको साजे दूसरा कोई करे तो क्या होता है, 5599 पर मैसेज करें, और थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करेंगे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसे आपको खुद के लिए जुगाड़ में नहीं करना चाहिए क्योंकि इट कैन बिकम कॉस्टली फॉर यू। इस पर और भी बातें होंगी, बस थोड़ी देर में। कीप हमिंग।

0: NZ. Offer ends August 31st. When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling, and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800 862 342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
1: Say goodbye to winter.
2: Goodbye.
1: And hello to spring.
2: Hello.
1: This weekend at Briscoe's, with new season savings store-wide and half-price Manchester and electrical deals. Say goodbye, winter.
2: Goodbye.
1: Hello, spring.
2: Hello.
1: With fresh savings at Briscoe's. See online for T's and C's.
3: Oh, that tap's boring. Oh, that tap's happy because you paid with a Westpac card. There's over 200 grand of happy taps to be won. Just tap your Westpac debit or credit MasterCard. Search Westpac Happy Taps. Fees, exclusions and terms apply.
4: Playing Bollywood's biggest hits.
5: What's your hectic Gandhi?
6: Saturday breakfast me. Hum aaye hain Jugaad Junction par.
7: जुगाड़ जंक्शन में मैं अभी आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको आपको जुगाड़ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन कामों के लिए अकॉर्डिंग टू AI आपको प्रोफेशनल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि प्रोफेशनल सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर 11 बजे के बाद में देसी बिज शाउट आउट रहता है, जहां पर लोग अपने अपने बिजनेस डिटेल्स हमारे पास में टेक्स्ट करते हैं। ऐसा आप भी कर सकते हैं अगर जो आपकी कोई स्पेशलाइज बिजनेस है जिसके बारे में आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं, ताकि और लोग भी इसे सुनकर आप की सर्विसेज को यूज कर सके। तो AI ने बताया है कि कुछ ऐसे काम है जो घर पर आपको खुद नहीं करने चाहिए। इनमें शामिल है रीडूइंग बाथरूम प्लम्बिंग। अगर जो आपके प्लम्बिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आपको एक रजिस्टर्ड प्लम्बर को ही बुलाना चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि दे आर रिस्क एसोसिएटेड विद इट। इसके साथ में अगर जो आप घर बैठे सोच रहे हैं कि इस दीवार को मैं गिराने वाला हूं ताकि स्पेस और बढ़ जाए, तो इसके लिए आपको खुद नहीं डिसीजन बनाना है, क्योंकि आपको किसी एक्सपर्ट को बुलाना होगा जो आपको आपकी स्ट्रक्चर को स्टडी करेगा और आपको बताएगा कि वेदर ये दीवार गिराने से जो रूफ़ है ये कॉलेप्स तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी लोड बेरिंग वॉल्स भी होते हैं। तो इसीलिए आपको प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ में कुछ ड्रिल करना वॉल में विदाउट नोइंग इसके पीछे क्या हो सकता है, यानी कि कभी कभी वायर्स और पाइप्स होते हैं वॉल के पीछे जो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन देयर इज़ अ रिस्क। आप अगर जो ड्रिल करते हुए किसी वायर में आपने कॉन्टेक्ट कर दिया है तो आप खुद को इलेक्ट्रोक्यूट कर सकते हो। इसके साथ में अगर जो आपके रूफ़ में कोई डैमेजेस है तो इसके लिए भी आपको एक प्रोफेशनल को बुलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप जुगाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पर जैसे भी आप एक लेडर को इस्तेमाल करते हैं देन योर रिस्क एलिवेट्स। तो इन सभी कामों के लिए आपको प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे में हमने पूछा था आपसे कि एक पुरानी कहावत है, जिसका काम उसको साजे दूसरा कोई करे तो क्या होता है। बस यही आपको कंप्लीट कर 5599 पर भेजना है हमारे पास में।
6: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम

0: अंबर, मैं हूँ आपका साथी अभी और 12 तक हमारा और आपका कारोबार चलता रहेगा। आशीष ने मैसेज किया है, थैंक यू सो मच, आप सुन रहे हैं, आपने लिखा है, जिसका काम उसी को साजे, दूजा कोई करे तो ठेंगा बाजे। एक वेजन ये भी है आशीष, और एक और एक वेजन है, उसमें कुछ और बचता है, देखते हैं कितने लोगों को मालूम है। अगर जो आपको पता है 5599 पर हमारे पास में भेजे। इसकी बातें तब हो रही थी जब हमने कहा है कि जुगाड़ जंक्शन में कुछ ऐसे ऐसे काम होते हैं जिसको आप खुद नहीं करना चाहिए और प्रोफेशनल सर्विसेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे, दूसरा कोई करे तो क्या और बचता है, क्या और बाजे। 5599 पर आप अपना जो जवाब है भेज सकते हैं।
1: जुगाड़ जंक्शन ऑन सैटरडे ब्रेकफास्ट।

0: हम पर आप सुन रहे थे अभिजीत को और गुड मॉर्निंग अंतरप्रीत, आपका मैसेज हमको मिला। इसी तरह से साथ देते रहे, जबकि आपने भी बताया है जिसका काम उसी को साजे और करे तो, और दूजा कोई करे तो डंडा बाजे, ये भी एक वर्जन है। और फिजी में ज़्यादातर के लोग कहते थे ठेंगा बाजे, और एक और एक आपने बताया है डंडा बाजे, और इसका मतलब दोनों का यही होता है इंटरप्रिटेशन कि जिसका काम उसी को करना चाहिए, क्योंकि अगर जो आपने जुगाड़ के चक्कर में किया तो कहीं ना कहीं आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक और एक मैसेज आया है 44747, आपने लिखा है जिसका काम उसी को साजे और कोई करे तो बुद्धू बाजे, ये भी एक विजन हुआ, और इसको अलग अलग तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस थोड़ी देर में आपको बताएंगे जुगाड़ जंक्शन में कैसे आप वेरी ईजली अपने घर के लाइटिंग सिस्टम को, लाइट्स को एक स्मार्ट वे से कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि आप इसको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो, और साथ में इनकी एडवांटेजेस क्या है, बस थोड़ी देर में।
1: स्टार्ट योर सैटरडे फ्रेश विद द परफेक्ट मिक्स,
2: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हब।
3: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
3: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री, और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
3: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, BFSL प्रोवाइडिंग the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
4: Jen didn't think she needed a DVS system.
5: Oh, I've got insulation in that.
4: But Jen had forgotten about the mold on her walls and curtains.
5: Ah, yeah.
4: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mold and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
6: At Bunnings, you'll find gifts built for Dad. Put a smile on Dad's face with a gift from Bunnings.
7: When Dads come in here, it's like a kid in a toy shop.
8: Dads love to shop at Bunnings. You know, there really is something for every dad. The new water blaster, a new drill, a new barbecue, lawn mowers, edges.
7: Any type of dad. Landscaper dad, builder dad, worker dad. And if they've got projects that they want to work on around the house,
9: dads are always working on a project.
7: Bunnings is the best place to find a Father's Day present.
10: Bunnings Warehouse.
6: Lowest prices are just the beginning.
11: Please use your imagination for the following ad.
12: If I won Powerball, I'd book my family a trip to... And I'd stay right here with my new...
11: Imagine winning $23 million this Saturday. Play in store or online.
13: Hey, still house hunting next weekend?
14: No, hopefully not. Going to an auction tomorrow.
13: Whoa, how did you sort things so quickly?
14: My BNZ home loan partner, Jane, met her last Saturday, got her home loan sorted, and she's even calling tonight, so we're ready for the auction.
13: All that from one person.
15: Go direct to a BNZ home loan partner and deal with the decision maker from search to settlement. Bank of New Zealand. Let's find a way. All home loans are subject to BNZ lending criteria, minimum equity requirements and terms and conditions. Up to a $150 establishment fee and other fees may apply.
16: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
17: Farmers has the best gifts for Dad, with great grooming products, skincare and the latest fragrance, and casual styling from top to toe. There's coffee machines, cocktail makers and barbecue sets too, plus Lego sets for grown-ups. Farmers has the best gifts for Dad.
18: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes, Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड,
19: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स ब्रेकफास्ट में, हम आए हैं जुगाड़ जंक्शन पर।
0: जुगाड़ जंक्शन में कुछ 15 मिनट बाकी है 11 बजने में, और हमने कहा था आपसे बताएंगे कि कैसे काफ़ी ईजिली आप अपने एग्जिस्टिंग लाइट्स को घर पर कन्वर्ट कर सकते हैं टू स्मार्ट ऑप्शंस, जहां पर आप रिमोटली भी अपने घर पर लाइट्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो अभी मार्केट में कई जगहों पर स्मार्ट वॉल स्विचेस भी अवेलेबल है, जहाँ पर आप इसे खरीद कर इंस्टॉल करा सकते हैं किसी प्रोफेशनल स्पार्की से, इलेक्ट्रिशियन से, और ऐसा करने से आपके पास में ऑप्शंस हो जाता है कि आप घर से दूर हो, अगर जो घर पर कोई नहीं है तो आप अपने मन से जब चाहो किसी भी एक लाइट को स्विच ऑन कर सकते हो। इसका एक और एक एडवांटेज ये है कि आप जब घर से दूर हो तो सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कोई जब देखेगा बाहर से तो उनको लगेगा कि घर पर कोई ना कोई है, क्योंकि आप एक बार पर लिविंग रूम में लाइट स्विच ऑन कर सकते हो, थोड़ी देर में किसी और बेडरूम के लाइट आप ऑन कर सकते हो, उसके बाद में किसी और बेडरूम का लाइट स्विच ऑफ कर सकते हो, तो ऐसा ही लगेगा बाहर से कि घर में कोई ना कोई है। तो एक बेहतरीन आइडिया जहाँ पर आप स्मार्ट वॉल स्विचेस के साथ में काफ़ी ईजली और कन्वीनियंटली और साथ में विद इन मिनिमल एक्सपेंसेस आप ये जो चेंजेस है ये करवा सकते हो। तो ये सभी कुछ आपके साथ में शेयर करते रहते हैं।

0: Get ready.
1: Passengers, stand by. The next hump boarding call could be your ticket to paradise. Listen out and get ready for your chance to win 2 return air tickets to Vanuatu and $1,000 spending money.
2: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
3: Bollywood ka asli blockbuster.
4: Pure sheher pe kabza hoga, raj hoga.
3: Playing Bollywood's biggest hits. Hum.
5: आज के लिए जुगाड़ जंक्शन में बस इतना ही, और 11 बजे के बाद में आपके साथ में रहेगा देसी बिज शाउट आउट। आप भी अभी से अपने जो बिजनेस डिटेल्स है हमारे पास में 5599 पर टेक्स्ट कर सकते हैं, ताकि 11 बजे के बाद में आपको फ्री प्रमोशन का मौका मिले ओनेया, जहां पर आपके बिजनेस के बारे में और लोगों तक जो जानकारी है ये आपके लिए पहुँचाएंगे। तो 5599 पर ही आप मैसेज करें हमें, ताकि वी कैन गिव यू अ शाउट आउट।

0: listening to Avineet.
1: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में और जबकि this is the final hour of the show, तो अभी से लेकर 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा और इस मोड पर हम आ गए हैं जहाँ पर देसी बिज shoutout में आपको great shoutouts देते हैं ताकि और लोग भी आपके बारे में जान सके, आपके services के बारे में जान सके। टेक्स्ट प्लेटफॉर्म की ओर देखते हैं तो गुड मॉर्निंग, ग्रेट शो अभी भाई, थैंक यू सो मच, इसको ग्रेट आप ही बनाती हो या आप ही बनाते हो, जिस तरह से आप हमारा साथ देते रहते हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट, सुनते रहिए हमारा साथ देते रहिए। इसके साथ में एक और एक जो आया है देसी बीज शाउट आउट में मैसेज, SM पेंट प्रोफेशनल्स, हाँ ये बात तो सही है, जबकि पेंटिंग के लिए आप, जबकि दिवाली आने वाली है तो ऐसे में शायद आपको घर के लिए कोई ना कोई पेंटर या फिर पेंटिंग प्रोफेशनल्स की ज़रूरत हो तो आप SM पेंट प्रोफेशनल्स को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में अगर जो घर पर कोई छोटी मोटी रेनोवेशन या मेंटेनेंस वर्क भी करवाना चाहते हैं तो SM पेंट प्रोफेशनल्स के शिव को आप कॉल करें 02110690064 पर, तो शिव अवेलेबल है 02110690064 पर, जिसे आप कॉन्टेक्ट करके आप इनसे बात कर सकते हो ताकि आपके घर पर कोई रेनोवेशन वर्क है, मेंटेनेंस वर्क है या फिर आपको पेंटिंग की ज़रूरत है तो ऐसे में आप इनको बुलाइए या आकर आपके लिए एक कोटेशन दे जाएंगे जिससे आप इनके सर्विसेज को एंगेज कर सकते हैं। आप इनको फेसबुक पर भी ढूंढ सकते हैं, SM पेंट प्रोफेशनल्स के नाम से ये फेसबुक पर है। तो ये जो मैसेज है शिव की ओर से है ताकि आप भी अगर जो अपने घर को एक एलिगेंट लुक देना चाहते हैं, प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं, खासकर दिवाली के लिए, अपकमिंग दिवाली के लिए घर को तैयार करना चाहते हैं तो SM पेंट प्रोफेशनल्स इज़ द नंबर, इज़ द नेम एंड द नंबर इज़ 02110690064। इसके साथ में आप भी अपने बिजनेस को एक शाउट आउट देना चाहते हैं तो सिर्फ मैसेज करो 5599 पर, ताकि यहाँ से आपकी जो बिजनेस डिटेल्स है, प्रमोशंस है, एक शाउट आउट हम दे सके ऑन दिस गोल्डन आवर विद अवी।

हम पर रवि का साथ है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले फिजी विलेज के न्यूज वेबसाइट पर था, जहां पर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो लोग फिजी से यहां पर है आपके लिए। आप शायद इसे सुनकर ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि एक बटा है, एक फेमस बटा ब्रांड फिजी की, जिसे ब्रांडिंग के कारण मैं इसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन आपके नज़दीकी सुपरमार्केट में अब ये जल्द से जल्द अवेलेबल रहेगी। जबकि फिजी का ये एक ऐसा ब्रांड है जो बटा है, जिसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं। फिजी डेयरी लिमिटेड की ये प्रोडक्ट है।

पिछले 2 दिनों से काफ़ी एडवर्स वेदर थी, लेकिन लौट कर आते हैं देसी बीच शाउटआउट में, जहां पर आपको बता दें राज ऑटोमोटिव एंड टायर सेंटर लिमिटेड के बारे में, जो सिचुएटेड है 11K रायन प्लेस मैंने कहा ओकलैंड में। यहां पर अनिल को जाकर आप मिल सकते हैं, एक फैमिली ओन्ड ऑपरेटेड बिजनेस है और अपने क्लाइंट्स को एक फैमिली की तरह ही ये ट्रीट करते हैं। इसके साथ में सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, जनरल मैकेनिकल रिपेयर्स, लूब एंड फुल सर्विस, इलेक्ट्रिकल और साथ में एयर कंडीशनिंग, आपको टायर्स की भी तलाश है तो अनिल कुमार को 021-077-3357 पर आप कॉल करें। राज ऑटोमोटिव एंड टायर सेंटर लिमिटेड, जो आपके लिए वूफ भी करती है, तो यहाँ आप जा सकते हैं फॉर बेस्ट सर्विस एडवाइस। इसके साथ में आपको बता दें, जबकि बातें हो रही थी दिवाली को लेकर कि अभी से ही लोग घर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अगर जो अपने घर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं विद स्टनिंग ब्लाइंड्स इन कर्टन्स जो बिल्कुल कस्टम मेड है टू फिट योर स्टाइल, कंफर्ट और बजट, हाँ ये सही बात हुई ना, कस्टम मेड टू फिट योर स्टाइल, कंफर्ट एंड बजट, ये तो आप कॉल कर सकते हैं फॉर फ्री मेजरमेंट और कोट। आप सिर्फ कॉल करें, कॉन्टेक्ट करें 021-828-598 न्यू होम ब्लाइंड्स। जी अगर जो आपने नया घर खरीदने वाले हो और इसके लिए आपको ब्लाइंड्स की जरूरत है, तो न्यू होम ब्लाइंड्स को कॉल करें 021-828-598, ये आकर आपके लिए कोट दे जाएंगे। और इसके साथ में आपके पास में भी कोई बिजनेस है जिसके बारे में आप हमारे साथ में देसी बिज शाउट आउट में बताना चाहते हैं, तो बिल्कुल 5599 पर लिखिए हमारे पास में, ताकि आपके बिजनेस को भी ओनर प्रमोट कर सके। इसके साथ में अगर जो आपके पास में कोई फ्लैट है जिसके लिए आप टेनेंट्स ढूंढ रहे हैं, तो इसके डिटेल्स भी आप हमारे पास में भेज सकते हैं। बस थोड़ी देर में और भी जो देसी बिज शॉर्ट आउट्स में जो बिजनेस डिटेल्स है हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं।

0: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में यह है देसी बिज शाउट आउट. मैं हूँ अभी आपके साथ में टिल 12. और अगर जो आपको कोई एक प्रोजेक्ट का है आपके पास में जिसके लिए आपको मैकेनिकल पार्ट्स ढूंढने में मुश्किल हो रही है, तो स्टेन्स ऑटो पार्ट्स का नाम आप याद रखें. ये सभी तरह के जो मैकेनिकल और साथ में इलेक्ट्रिकल ऑटो पार्ट्स है इसको ये स्टॉक करते हैं. ये बेस्ड है साउथ ओकलैंड में और जो पार्ट्स है ये आपके लिए डिलीवर भी कर सकते हैं और साथ में आपके वर्कशॉप से जहां पर आपको पार्ट्स की कम समय में ज़रूरत होती है, यानी कि यू नीड इट एट द अर्लीस्ट एंड शॉर्टेस्ट नोटिस, तो आप रॉब्सन को कॉल करें 02247111421. याद रहे 02247111421 पर आप स्टेन्स ऑटो पार्ट्स के रॉब्सन को कॉल कर सकते हैं जो आपके लिए बिल्कुल पार्ट्स की अवेलेबिलिटी लेकर आपसे बातें कर सकते हैं. तो ऑल ऑफ दिस ऑन देसी बिज शाउट आउट. 5599 इज द नंबर. अगर जो आपके पास में भी कोई बिजनेस है जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं हमारे लिसनर्स के साथ में शेयर करना चाहते हैं.
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This
4: record,
3: is my fancy
4: say.
3: English. That's a very.
4: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.

0: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन-साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन-साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
1: Mike here from Novus Glass. Got squeaking wipers? There's nothing more frustrating, and it's not safe. Novus All-in-One Wiper Kits are now available online. These are the best wipers you will ever buy, and are quick and easy to install. There's no more of this, so you can focus on the road. So as soon as you notice it, Novus it. Visit novus.co.nz or drop into your local branch.
2: Ah, Novus.
3: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi, $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
4: When India comes to town, Ayodhya Rowa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Cricket Nation ke pre-sale mein shamil ho, nzc.nz pe aur apne tickets sabse pehle book karo, kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps versus India.
5: Skinny will do anything to keep prices low and customers happy. Switch to Skinny and get $30 credit on all four weekly plans, $27 and above. $30 credit available to new customers only. In September 4th, T's and C's apply.
6: Get the Skinny!

0: breakfast on Hum.
1: हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी और आपको जल्दी से बता दूँ जहाँ पर 100 years of resilience, migration और identity के बारे में बात हुई है जबकि एक युग है जो हमारे आसपास जो पंजाबी community है इनके contribution को हम undermine नहीं कर सकते फो आतेरेवा और यहाँ पर सेंडियो रुजबे ने बातें की हैं प्रेजेंटर रिसर्चर हरजोत सिंह के साथ में और गगन संधू के साथ में जो कि डायरेक्टर है वो एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है पंजाब टू आतेरेवा अगर जो आपने इसे चेकआउट नहीं किया है अभी तक इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब और यहाँ पर ढेर सारी कहानियाँ इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो शायद कहीं ना कहीं हिस्ट्री बुक्स में पीछे दब गई थी लेकिन अब समय हुआ कि उसको एक बार फिर रिविजिट किया जाए और अपने एपिसोड में उन्होंने डिस्कस किया है 100 ईयर हिस्ट्री ऑफ पंजाबी माइग्रेशन टू न्यूजीलैंड क्या क्या कंट्रीब्यूशंस थी क्या क्या मुसीबतों का सामना इनको करना पड़ा ये सभी कुछ सुनने के लिए आप ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजें और यहाँ से आपको लिंक मिलेगा और इसके साथ में आपको बता दें कि आपके पास में भी देसी बीस शाउट आउट को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप देना चाहते हैं तो 5599 इज़ द नंबर अगला गाना सुनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं जब ये गाना रिलीज़ हुआ था इसको इस तरह से मार्केट किया गया था कि इसको ब्रेथलेस होकर शंकर ने गाया है शंकर महादेवन ने लेकिन ऐसा एक्चुअली हुआ नहीं था इसको वेरी टेक्निकली एडिट करके और जोड़ जाड़ कर ऐसा प्रेजेंट किया कि इसको एक ही सांस में गाया गया है लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं था.

आप सुन रहे हैं हम पर मैं हूं आपका साथी अभी लेकर आया हूं देसी बिज शाउट आउट फॉर दिस आवर और ऐसे में मो जहीर जो इंस्टॉल करते हैं सर्विस करते हैं हीट पंप्स को अगर जो आपको भी इंस्टॉलेशन करवानी है या फिर सर्विसिंग करवानी है ओकलैंड ग्रेटर ओकलैंड में ये अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो मो को आप कॉल करें 02208018 पर 02208018 पर आप मो को कॉल कर सकते हैं फॉर ऑल योर हीट पंप्स रिक्वायरमेंट्स और इसके साथ में अगर जो आप भी घर से टेलरिंग सर्विस देते हो या फिर केटरिंग सर्विसेज करवाते हो या घर पर बच्चों को ट्यूशन देते हो इसके बारे में 5599 पर आप हमारे पास में लिखकर बता सकते हो।

देसी बिज शार्ट आउट है ये। आपको भी अपने बिजनेस के लिए कोई शार्ट आउट्स देनी है या फिर घर से कोई आप वेंचर कर रहे हो जहाँ पर आपने घर पर फ्लावर्स प्लांट किए हैं और आप फ्लावर्स बेच रहे हो, साथ में वेजिटेबल्स बेच रहे हो, तो इसके बारे में जानकारी जो है 5599 पर आप हमारे पास में टेक्स्ट करते रहें। इसके साथ में बीच बीच में बॉलीवुड का भी तड़का मसाला आपके लिए लेकर आते रहते हैं, जबकि लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये सामने आई है कि टॉक्सिक हैज़ गोन डाउन, जबकि रिलीज प्री रिलीज यहाँ पर काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थे, हाइप थी इस फिल्म को लेकर। पहले दिन पर 120 करोड़ की बिजनेस हुई है और साथ में दूसरे दिन पर कहीं ना कहीं 70% तक नोज डाइव किया है इसकी बिजनेस ने, और दूसरे दिन की जो कलेक्शंस है करीब 45 करोड़ के आसपास है। और रिलीज होने पर रिव्यूज़ काफ़ी नेगेटिव थे, लोगों ने काफ़ी नापसंद किया है इस फिल्म को। इसके साथ में अगर जो देखे फिल्म की बिजनेस की ओर तो 500 करोड़ के आसपास बनी हुई ये फिल्म। यहाँ पर जो इसके डिजिटल राइट्स थे ये मेकर्स ने नहीं बेचे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद में ये और भी ज़्यादा मांग कर सकते हैं, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। जबकि फिल्म को आने वाले दिनों में ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि द डाउनवर्ड ट्रेंड विल कंटिन्यू। तो अगर जो आपने यहाँ पर ये पिक्चर देखी है टॉक्सिक, तो आप बताइए 5599 पर आपको कैसी लगी। जैसा कि सबको बुरी लग रही है ऐसा आपको भी लगा, आपको लगा कि आपने अपने लाइफ के 3 घंटे बर्बाद कर दिए, तो 5599 पर मैसेज करें। और इसके अलावा देसी बिज शार्ट आउट के बारे में भी आप जो बिजनेस डिटेल्स है हमारे पास में भेजते रहें। बस 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा, और 2-3 बार हम नहीं यूँ कहें आगे चलकर एक बार और आपके बिजनेस के डिटेल्स को ऑन एयर हम पुश कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट।

0: Saturday breakfast on Hum.
1: शेल्विन का मैसेज आया है और हम पर, जबकि देसी बीज शाउट आउट का ये आवा है. ऐसे में इन्होंने बताया कि ये रिपेयर और रिनोवेशन साथ में मेंटेनेंस का काम करते हैं. आपको अगर जो ग्रेटर ऑकलैंड में इनकी सर्विसेज की ज़रूरत है तो 022-131-7620 पर आप इनको कॉल कर सकते हैं ताकि ये आकर आपके लिए जो काम है कर सके. इसके साथ में अगर जो आपको लोन मूविंग सर्विसेज की ज़रूरत है, आप क्रिश को कॉल करें ऑन 02-111-22617. क्रिश भी ग्रेटर ऑकलैंड में अपना काम करते हैं. क्रिश मूविंग सर्विसेज 02-111-22617 पर आप क्रिश को कॉल कर सकते हैं.

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही. जबकि 10 मिनट बाकी है 12 बजने में. 12 बजे के बाद में आपके लिए रहेगा रेडियो पब और मैं निकलता हूँ यहाँ से. आप खुद का ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. हमारी और आपकी मुलाकात एक बार फिर होगी कल 12 पर. लेकर आएंगे आपके लिए जस्ट चिल. इन द मीन टाइम डू टेक केयर. बाय. दिस इज मी अवि साइनिंग ऑफ.

0: कॉफी और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
2: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
3: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
2: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
3: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
2: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
4: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट।
5: At Spot might save a massive 20 to 50% off store-wide, including Manchester Home Decor, Fabric Craft, Knitting Yarn, Party Curtains and Blinds. Yes, that's 20 to 50% off store-wide. Sale on now. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full-price products. Excludes clearance. See website for details.
6: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex, and this is my guest, Sarah.
7: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
6: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
7: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो ज्यूसी।
6: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
7: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
8: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
0: Non-stop Bollywood.
9: Hum.
0: Playing Bollywood's biggest hits. Hum. Time check.
10: Good day, it's 12 o'clock.
0: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Good afternoon, I'm Torben with the latest at 12. Met Service says parts of the North Island could see flash flooding as intense downpours take hold. It's upgraded its heavy rain watches to warnings for Northland, Auckland, Coromandel and Bay of Plenty. Meteorologist Sam Kalo-Maguala says all four regions are at risk of flooding.
12: We have this low pressure system that is moving south and is resulting in some significant amount of accumulation.
11: One person has been airlifted to hospital after a crash in Southland. Emergency services were called to State Highway 93 near Gore just before 8 a.m. Hutuhone St John says one patient was airlifted to Dunedin Hospital in a serious condition. It's on the front line of the Iran war, yet the United Arab Emirates is proving a valuable trade partner. It's now a year since our trade deal with the UAE came into force, and $1.4 billion of our goods have been exported there since. Trade Minister Todd McClay says the figure was tracking higher before the Iran war started.
13: First 6 months, we saw an increase of about 34% in our exports. For a couple of months there, they shrank quite considerably, but we've seen a rebound.
11: To sport and rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com, All Blacks captain Ardie Savea says his side can't let the Springboks control the early part of